0: चार, या किसी समय को जब कैद कर लिया जाता है उस क्षण को,
1: जी
0: उसे एक हम तस्वीर कहते हैं। भाई
1: बिल्कुल
0: अगर कभी पूछ लिया किसी ने ये सवाल, तो हम कम से कम परिभाषा तो दे सकते हैं, है ना।
1: जी सही कहा दीपा आपने।
0: और फोटोग्राफी के रूपों का सम्मान करते हुए हर साल एक वैकल्पिक थीम के साथ इस दिन को मनाया जाता है। तो इस साल का जो थीम है वो है घर, यानी हमारा हाउस होम जो हम कहते हैं। तो ये थीम उस स्थान या उस एहसास को दर्शाती है जिसे हम अपना घर मानते हैं, जहाँ आप रहते हैं, या आपका कोई आपका गृह, आपका देश, या वो स्थान जिस जहाँ आपको अपना सा लगे, एक सुकून भरा महसूस हो।
1: जी
0: तो ये थीम है, तो आप घर को लेकर के तस्वीरें अलग अलग खींच सकते हैं और सोशल मीडिया पर अलग अलग जगह पर आज के दिन उस फोटोग्राफ को शेयर कर सकते
1: और
0: हैं।
1: देखो हमारे सुनने वाले लिख रहे हैं कि ये अद्भुत कला बीते हुए पलों को, भावनाओं को, यादों को हमेशा के लिए सहेज लेती है। अच्छी तस्वीर केवल एक दृश्य नहीं दिखाती, बल्कि अपने भीतर एक पूरी कहानी, एहसास और पूरा समय समेटे हुए रहती है। फोटोग्राफी ने दुनिया को देखने और समझने का नज़रिया भी बदला है। तस्वीरें समय को रोक नहीं सकती, लेकिन बीते हुए समय को हमारी यादों में हमेशा के लिए जीवित रख सकती हैं। और ये बहुत अच्छी बात लिखकर भेजी है।
0: बिल्कुल। और एक संदेश और आया है बड़ा प्यारा सा। ये संदेश में कहती है हमारी सखी कि सच कभी कभी हमारा ऐसे ही खींचा गया फोटो इतना अच्छा होता है कि उसके सामने बहुत ही बन ठन के खींचे गए फोटो बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। मतलब हम कभी कभी बिल्कुल तैयार होकर के खड़े होते हैं कि हाँ हमारा क्लिक करना चाहिए फोटो, लेकिन एक कैजुअल वाले भी जो पिक्चर हैं फोटो खींची हुई, वो बहुत सुंदर लगती है उसके
1: बिल्कुल।
0: सामने।
1: और एक संदेश में बात लिखी गई है कि तस्वीरें बीते हुए कल और इतिहास को सुरक्षित रखती हैं। तस्वीरों की कोई भाषा नहीं होती, ये बिना बोले सब कुछ कह देती हैं। ये बिना बोले सब कुछ कह देती हैं और अपने नए दिन और पुराने फोटोग्राफरों को अपनी कला दिखाने का मौका देती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश कहता है कि पहले के समय में हमारे देश में लोगों के पास कैमरे नहीं होते थे, कैमरा बहुत महंगा हुआ करता था,
1: हाँ
0: उसकी रील भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वाली होती थी और फोटो खिंचवाने के बाद धुलवाने के लिए स्टूडियो में जाना पड़ता था, जैसे अभी हम बात कर रहे थे,
1: जी
0: और तब जाकर के फोटो मिलते थे। अच्छी आई या बुरी वो तो बाद की बात थी, फिर
1: हाँ
0: कलर फोटो खिंचने लगी और पहले स्टूडियो में जाना पड़ता था फोटो खिंचवाने के लिए। आज के समय में मोबाइल से ही फोटो खींचे जा सकते हैं, किसी के पास भेज दो, कोई टाइम नहीं लगता। अब तो लोगों के पास मोबाइल है, कैमरे बहुत कम लोगों के पास लोग भी का बहुत कम रखने लगे
1: जी
0: हैं, और वो भी उन्हें जिन्हें कैमरे का शौक है, या
1: एक
0: वो जो कि इसको प्रोफेशनली इसको
1: हाँ
0: लेते हैं, वो लोगों के पास कैमरे होते हैं।
1: लेकिन उन कैमरों में भी आजकल ये एक सुविधा आने लगी है कि आप तुरंत उसको डेवलप करा सकते हैं। पहले जो कहते हैं कि इंतज़ार करना पड़ता था ना,
0: हाँ
1: वो
0: जी।
1: जो इंतज़ार की घड़ियां हैं वो लोगों की कम हो गई हैं। कई बार हम शादी में भी देखते हैं ना, फोटोग्राफर जब तस्वीर खींचते हैं तो चार पांच फोटो एक साथ में खींच लेते हैं और फिर आप से सेलेक्ट करवा लेते हैं कि किस फोटो को फाइनल करके रखा जाए।
0: बिल्कुल।
1: कई बार तो आंखें बंद हो गई, कहीं आप यहाँ वहाँ देख रहे होते हैं, तो वो फोटो पहले ऐसा ये सुविधा हमारे पास नहीं थी। अगर आपकी तस्वीर में आंखें आपने बंद कर ली, झपका दी, या आप कहीं इशारे से कुछ कह रहे हैं, आपका हाथ जहां का तहां है वहीं रह जाएगा।
0: हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। और आज के दिन क्या क्या होता है? तो आज के दिन के पे फोटोग्राफी की कला और शिल्प का सम्मान किया जाता है। चंचल दुनिया भर के फोटोग्राफर तरह तरह के प्रदर्शनियों में भाग लेकर के अपने काम को चित्रित करते हैं। फिर अलग अलग वर्कशॉप्स होती हैं, कई जगह पर ऐसा होता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं जिसमें फोटोग्राफी के बारे में जानकारी दी जाती है। फिर फोटो वॉक करने वाले और टूर फोटोग्राफी के शौकीन को पास आसपास के स्थानीय लोगों का पता लगाने और उन्हें कैमरे में कैद करने के लिए भी एक साथ ले जाया जाता है। तो ऐसा भी होता है कि आपको फोटोग्राफ खींचनी है तो आपको
1: हाँ
0: कोई ऐसे छोटे से गांव, कोई ऐसे जगह हो, ट्राइबल एरिया कोई हो,
1: हाँ
0: तो वहां पे लेके जाते हैं और उनको बोला जाता है कि ये विशेष समुदाय इनके इनका फोटोग्राफ खींचा जाए और फिर इन्हें अलग अलग जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है और साझा की जाती है वो सारी तस्वीरें।
1: हमारे एक श्रोता का संदेश है कि पहले तस्वीरें कैमरे में कैद होती थी, पर आजकल इसकी जगह मोबाइल ने ले ली है और डिजिटल रूप में ये होने लगी हैं। तस्वीर बहुत कुछ बयां कर देती हैं। तस्वीरों का होना हमारे अपनों को हमारे नज़दीक रखता है, यादों से जोड़े रखता है। तस्वीर हमारे लिए खास थी और हमेशा खास ही रहेंगी।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि तस्वीरें बीते हुए कल और इतिहास को सुरक्षित रखती हैं, तस्वीरों की कोई भाषा नहीं होती, बिना बोले सब कुछ कह देती हैं, और ये दिन नए और पुराने फोटोग्राफरों को अपनी कला दिखाने का मौका देता है।
1: हमारे एक संदेश में लिखा गया है कि एक समय था जब राजा रजवाड़े यह बहुत धनाढ्य परिवार

0: के लोग होते थे, उनके पास कैमरा होता था या फोटो का चलन उस समय ज्यादा था। फिर धीरे धीरे समय गुजरता गया, वैसे वैसे सुविधाएं भी सुलभ होती गईं, जैसे सामान्य मानवीय तक फोटोग्राफी का जमाना था, पर्यटन, धार्मिक स्थल और सभी जगह फोटोग्राफी होने लगी, और ये एक व्यवसाय था जब लोग अपनी तस्वीरों को घर पर पोस्ट के द्वारा भेजा करते थे। ऐसे वक्त ने लोगों के साथ कैमरों को भी रखा, और आज मोबाइल के माध्यम से जो चीज़ कभी दुर्लभ थी वो सहज हो गई है। तो चलिए अभी गीत सुन लें।
1: चलिए।

0: ही आना, और मैं भी तुम्हें बुला रही हूँ दीपा सखी, बस आना क्योंकि बहुत सारे संदेश हैं, इन्हें भी पढ़कर सुनाना। तो पहले एक संदेश मैं ही पढ़कर सुना देती हूँ।
1: चलिए सुनाइए।
0: और फोटोग्राफी की हम बात कर रहे थे ना, इस पर अपना एक किस्सा हमारे एक श्रोता ने लेकर भेजा है कि कॉलेज के दिनों की उन्होंने बात लिखी है। कॉलेज में उन्हें एक कार्ड बनवाना था, उन्हें फोटो की जरूरत थी, तो शहर के पास, आगे लिखते हैं कि शहर के पास ही हमारी दुकान थी, उसके पास में एक फोटो स्टूडियो था। उसमें दोनों पिता पुत्र काम किया करते थे, लेकिन उस दिन लड़के के पिता दुकान पर नहीं आए थे, और उसी दिन क्योंकि मुझे फोटो की जरूरत थी और उनके लड़के के साथ मेरी आपस में बनती नहीं थी, लेकिन वो लड़का बोला कि मैं तुम्हारी तस्वीर अच्छी बना दूंगा, लेकिन मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि शायद भूतकाल में उनके साथ ऐसी कुछ घटना हो चुकी थी उसके साथ में, लेकिन उस लड़के ने विश्वास दिलाया कि वो फोटो अच्छी लेगा। तो डरते डरते उसकी बात पर विश्वास करके वो तैयार हो गए फोटो खिंचवाने के लिए। और जब वो तस्वीर ले रहा था लड़का, तो मैं बहुत डरा हुआ था, घबराहट भी चेहरे पर थी, और मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, लेकिन कोई अनहोनी नहीं हुई। उसने तस्वीर मेरी बहुत अच्छी बनाकर दे दी। वो तस्वीर मेरे पास आज भी है, जब भी मैं उस तस्वीर को देखता हूँ तो उसमें मेरा चेहरा बहुत डरा हुआ।

0: हुआ और घबराया हुआ दिखाई देता है।
1: देखिए कितने मजेदार उनकी यादें हैं ना
0: जी
1: तस्वीरों को लेके। और 1962 की एक याद हमारे श्रोता भाई यहाँ पे साझा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया की शादी का फोटो एल्बम बनाने पहली बार फोटोग्राफर को बुलाया गया था साल 1962 में।
0: जी
1: उन दिनों ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, हर जगह हर एक फोटो खींचने के बाद फ्लैश का लैंप बदलना पड़ता था। और उन दिनों मेरा बचपना था, तो 11 साल की उम्र थी उनकी। मंडप के बीच भाई भाभी के फोटो खींचते वक्त मैं भी हर फोटो में बीच में खड़ा हो जाता था।
0: और पहले ऐसा अक्सर होता था कि छोटे बच्चों को बड़ा शौक होता था कि वो हर तस्वीर में नजर आए,
1: हाँ
0: और
1: बिल्कुल,
0: कहीं ना कहीं से वो झांकता हुआ चेहरा उनका नजर आ ही
1: नजर
0: जाता
1: आ
0: है।
1: ही जाता
0: पुराने एल्बम जब भी हम खोलते हैं ना, तो एक ना एक बच्चा ऐसा नजर
1: था।
0: आएगा जो हर फोटो में कहीं ऊपर से, कहीं नीचे से, अगल बगल से, या और जब तक फोटो उन्हें हटाया जाए वो फोटो क्लिक हो चुकी होती थी, वो एंड टाइम पर इस तरह से तस्वीर में घुस
1: और
0: जाते
1: ये
0: थे।
1: देखो एक और मजेदार संदेश आया है। हमारी सगी कह रही है कि फोटो में तो ऐसी ताकत है कि सिर्फ फोटो देखकर ही 18 साल पहले मेरी शादी हुई थी। वो कैसे? उधर से फोटो कागज में लपेट कर आई और इधर से हमने कागज में लपेट के दे दी फोटो, और
0: जी
1: बस हो गई शादी। क्या बात है भाई, ये जमाना कितना सुलभ और सुंदर और एकदम सादा सा था, है ना।
0: बातें आगे बढ़ाएंगे, पहले एक गीत सुन लेते
1: चलिए
0: हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं। विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली, और हमने बहुत सारी बातें फोटोग्राफी के बारे में की। और आज एक और दिवस हम मना रहे हैं, 19 अगस्त के दिन मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस, और ये उन लोगों की याद में मनाया जाता है दीपा, जिन्होंने विश्व स्तर पर मानवतावादी संकट जो भी आए हैं उनमें या तो अपनी जान गंवा दी या फिर मानवीय उद्देश्यों के कारण और अपने दूसरों की सहायता के कारण उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया।
1: जी, और इसके पीछे अगर इतिहास जाने तो वो ये था कि 19 अगस्त 2003 को संयुक्त राष्ट्र कार्यालय पर हमला हुआ, जिसमें करीब 22 मानवीय सहायता कर्मी मारे गए, और जिनमें संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि सर्जियो वियरा डिमेलो भी शामिल थे।
0: जी
1: तो साल 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस इसके रूप में नामित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, और फिर ये प्रस्ताव स्वीडन ने रखा था।
0: और जिस दुर्घटना की या जिस हादसे की आप बात कर रही हैं, ऐसा माना जाता है कि अब तक जितनी भी त्रासदी हुई उनमें ये बहुत खतरनाक थी, और करीब 4,000 से भी अधिक राहत कर्मी ने इन्हों इसमें जान गंवाई थी, उनको निशाना बनाया गया था। और कि जो जानलेवा हमले हुए थे इसमें न जाने कितने घायल हुए, कितनों ने अपनी जान दे दी, और कुछ गिरफ्तार भी हुए, कुछ का अपहरण भी हुआ। इस तरह की घटनाएं ना हो, मानवता लोगों में बनी रहे, इसीलिए ऐसे दिन मनाए जाते हैं, ताकि जो भी अशांति संघर्ष है उससे अलग किया जा सके खुद को और एक शांति की स्थापना की जा सके।
1: बिल्कुल सही कहा। और ये देखिए ना, ये विश्व भर में फैली अशांति और संघर्ष में लाखों लोग अपने सरजमी से भी अलग हो जाते हैं और किसी अन्य जगह पर उन्हें स्थापित किया जाता है, तो ऐसे लोगों की संख्या आज ये अनुमान किया जाता है कि 6.5 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों को एक जगह दे दी जाए, उनके भी एक ठिकाना

0: उनका हो जाए और उनका जो जीवन यापन है बराबर चलते जाए, तो ये भी एक उद्देश्य है मानवतावादी दिवस का।
1: और इस पर बहुत सारे संदेश भी हमें मिल रहे हैं। मानवता, जो हमने एक शब्द दिया था कि शब्द हमारा है, विचार हमारे श्रोताओं को लेकर भेजने हैं, तो मानवता के बारे में जो विचार उन्होंने लेकर भेजे हैं, मानवता जो मानव से जुड़ी उसकी क्रियाशीलता को दर्शाती है कि वो दूसरों के प्रति कैसा भाव रखता है। मानवता के मूल में क्षमा, सहिष्णुता, दया, प्रेम, ये सभी भाव हैं जो आदमी का आदमी के प्रति उसकी सोच को दिखाता है। जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ हमारे कुछ कर्तव्य हैं, उन सब में मानवता का भाव रखना सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी संवेदनाएं, हमारे परोपकार मानवता से जुड़े हुए विषय हैं, ये अलग नहीं है। दूसरों के प्रति दया भाव रखना, प्रेम रखना, अहंकार त्याग कर सरल ढंग से पेश आना, ये सब मानवता के ही स्तंभ हैं।
0: बिल्कुल। और एक और संदेश है, मनुष्य को जीवन में सत्य, प्रेम, करुणा, दया, सहयोग, सद्भावना, आपस में मेल मिलाप की राह पर चलना चाहिए, नहीं तो कैसे मानवता महकेगी और वसुधैव कुटुंब की भावना होगी कैसे। तो विश्व हमारा परिवार है, ऐसी मानवता की महक और सार्थकता की आज हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
1: बिल्कुल सही बात लिखी। इसी तरह से एक छोटा सा संदेश है लेकिन बहुत बड़ी बात कहता है कि मानवता कहने में कोई बात नहीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लाने, किसी का हाथ थामने और बिना किसी के स्वार्थ के जब मदद करने में है, वही मानवता है।
0: बिल्कुल
1: इंसानियत की सबसे खूबसूरत भाषा वही है जिसे बोलने के लिए शब्दों से ज़्यादा एक संवेदनशील दिल की ज़रूरत है।
0: और एक और संदेश आया है चंचल। ये कहते हैं कि मानवता शब्दों और विचारों का वो सेतु है जो करुणा, सहानुभूति और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को एक सूत्र में पिरोता है। ये किसी भी संकुचित दायरे या सीमा से परे जाकर मनुष्यता के वास्तविक स्वरूप को परिभाषित करता है।
1: बड़े अच्छे अच्छे संदेश हमें मानवता के ऊपर मिल रहे हैं। एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता द्वारा जो बात कही गई है वो मैं पढ़कर सुनाती हूँ आप सभी को। मानवता और इंसानियत, जिसका अर्थ होता है किसी दूसरे के प्रति दया, प्रेम और भलाई करना, सभी के प्रति प्यार की भावना रखना, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों का हित सोचना। और वाकई में ये चीज़ें अभी देखने को नहीं मिलती हैं। आगे लिखते हैं कि ये व्यक्तिगत व्यवहार से जुड़ा हुआ है, यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा बर्ताव, यही मानवता है।
0: बिल्कुल सही। और आज के समाज में देखो, मानवता को लेके बहुत उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। कभी कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कहीं दुर्घटना हो गई, किसी संकट के समय लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं। रक्तदान करना, गरीब बच्चों की शिक्षा में सहायता करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, पशु पक्षियों के प्रति दया रखना और पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी मानवता के रूप हैं।
1: बिल्कुल, आज जब विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को दीपा बहुत आसान बना दिया है, लेकिन जो कहते हैं ना कि मानवता, इसे तकनीक से हम जोड़ के देख ही नहीं सकते ना। कोई व्यक्ति कितना भी उसके पास धन है, लेकिन वो उसके धन का वो सिर्फ अपने लिए ही सहेज कर रखता है, किसी की सहायता नहीं करता। तो कहते हैं कि उसके धनी होने का भी कोई महत्व नहीं है। अगर आप किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, भले आपने बहुत सारा धन खर्च नहीं किया, आपने कोई छोटी सी ऐसी काम कर दी, छोटी सी ऐसी कोई बात कह दी जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। अगर मान लीजिए किसी दुखी को, दुखी दिल है उसको सहारा दे दिया, सांत्वना के दो शब्द कह दिए, तो ये भी मानवता का परिचय देता है। हमारे समाज में मानवता के बहुत सारे उदाहरण हैं दीपा, जिसमें प्राकृतिक आपदा के समय

0: और भाई एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होनी ही चाहिए। जब कोई उत्सव होते हैं ना, तो ये भावना हमारे देश में सब जगह देखने को मिलती है। सब मिलजुल कर उस त्यौहार को मनाते हैं, और महिलाओं में सावन के महीने का एक खास आकर्षण होता है। सब मिलकर सखियां साथ झूला झूलने जाती हैं,
1: बिल्कुल
0: और तीज के दिन खास तौर पर लहरिया पहना जाता है। अभी हाल ही में तीज का त्यौहार गया है, जिसे राजस्थान में बहुत धूमधाम से मनाया गया।
1: बिल्कुल
0: तो जो राजस्थान की हमारी सखियां ना, जो इस वक्त सखी सहेली कार्यक्रम सुन रही हैं, उससे जुड़ी हुई हैं, तो वो हमारे

0: बात से जरूर सरोकार रखती होंगी कि उन्होंने भी सहरिया पहना होगा, नहीं पहन पाई किसी कारणवश, तो मन में मलाल जरूर रह गया होगी लहरिया नहीं पहन पाई।
1: तो कोई बात नहीं, इस दफा आप लहरिया साड़ी ले आए, क्योंकि सावन अभी बाकी है, तो और उसे पहन के खूब सुंदर सजे धजें और ढेर सारे तस्वीरें खींचें, और फिर अब तो कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म से आप साझा कर सकती हैं।
0: और जब आपने सजने धजने की बात कही ना, तो साड़ियों के बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं। हर परिधान के साथ में एक अलग तरह का श्रृंगार किया जाता है। जो ज्वेलरी हम पहनते हैं ना, जो जेवरात हम पहनते हैं, तो हर परिधान के साथ अलग तरह के जेवर पहनते हैं। अगर आपने बनारसी साड़ी पहनी है तो जेवर अलग तरह के
1: अलग
0: होंगे।
1: होगा
0: आपने सूती कोई साड़ी पहनी है तो
1: जी।
0: अलग तरह के होंगे। जॉर्जेट की पहनी है, लहरिया पहना है, अब लहरिये में भी आपने भारी भरकम पहना है या हल्का फुल्का पहना है, तो आपके जो श्रृंगार की चीजें होती हैं वो उस तरह से हो जाती हैं। बहरहाल, हम बताते हैं कि लहरिया राजस्थान की एक पारंपरिक और बहुत खूबसूरत साड़ियों में से एक होती है, और इसकी खास पहचान होती है इसके जो लहरदार और तिरछे पैटर्न बने हुए होते
1: पैटर्न
0: हैं
1: जो
0: ना।
1: बने होते हैं जी।
0: और खास तौर पर राजस्थान की जो रंग बिरंगी संस्कृति उत्सव है, वहां की जो संस्कृति है उससे जुड़ी हुए ये परिधान होते हैं।
1: अब देखो ना चंचल, ये लहरिया, ये शब्द ही लहर से आया है।
0: हाँ
1: इसमें कपड़े को विशेष तरीके से मोड़ कर या बांध कर रंगाई की जाती है, जिससे कपड़े पर लगातार लहरों जैसी धारियां बन जाती हैं। और ये खास तौर पे टाई और डाई, यानी वो तकनीक, बंदेज या रंगाई, इसकी तकनीक का ही एक रूप है। और इस साड़ी के लहरदार धारियां इसकी खासियत के साथ इसकी सबसे प्रमुख पहचान भी है। लहरिया साड़ी ज्यादातर आप देखो तो एकदम चटक कलरों में होगी, है
0: हाँ
1: ना, पीली, गुलाबी, लाल, हरा, नीला, नारंगी, सारे जो चटक कलर होते हैं हमारे,
0: हाँ
1: वो इनमें, इन साड़ियों को आप देख सकते हो। हालांकि आजकल अब थोड़े से इंग्लिश कलर, इंग्लिश टोन्स भी लेने लगे हैं, लेकिन फिर भी
0: जो
1: जो
0: पारंपरिक चीजें हैं,
1: पारंपरिक कलर जो इस साड़ी के साथ जाता है ना, गुलाबी पहन लीजिए आप, हरा पहन लीजिए, आहा,
0: जैसे
1: और
0: आपने पहना
1: लाल कलर
0: जो
1: की सुर्ख साड़ी हो तो क्या बात है।
0: आपने पीले कलर का अगर बेस है तो उस पर कुछ नारंगी या हरे रंग की
1: हाँ
0: धारियां होंगी। अगर
1: बिल्कुल।
0: गुलाबी बेस है साड़ी का तो कुछ ज्यादा गहरे रानी रंग की या हरी सी कुछ धारियां, तो जो बीच में धारियों का रंग अलग होता है ना, वो इसे और खूबसूरत बना देता
1: बिल्कुल
0: है।
1: खूबसूरत बना देता है। और शादी ब्याह में तो आप देखिए थीम रखने लग जाते हैं आजकल तो, कि एक किसी फंक्शन पे हम ये वाली साड़ी या इसका लहंगा बना करके पहनेंगे। और फिर देखिए जब चटक कलर में पारंपरिक नृत्य होता है तो उसका तो जो नज़ारा ही कुछ एक अलग आनंद देता है।
0: हमारे बहुत सारे श्रोताओं के संदेश हमें मिल रहे हैं। एक संदेश में कहा गया है कि लहरदार यानी लहरिया साड़ी मूल रूप से राजस्थान, विशेषकर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, यहाँ की पारंपरिक पहचान है। अपने खूबसूरत लहरनुमा डिजाइन के कारण राजस्थान के अलावा अन्य जो राज्य हैं जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मुंबई, सभी जगह सावन, तीज और मेलों के अवसर पर ये बहुत पसंद की जाती है। राजस्थान की इस कला का ये मुख्य केंद्र है। यहाँ के स्थानीय त्योहारों में और रोजमर्रा के पहनावे में लहरिया का विशेष स्थान है। उत्तर भारत में सावन मास, हरियाली तीज, रक्षाबंधन के मौकों पर इन लहरिया साड़ियों का बहुत भारी क्रेज देखने को मिलता है। और गुजरात, महाराष्ट्र के पारंपरिक बाजारों में शादी ब्याह के उत्सव पर भी इनकी बहुत मांग रहती है। सावन और मानसून के मौसम में हरी, पीली, लाल और मल्टी कलर की लहरिया साड़ी पहनी जाती है, जो
1: अभी तो
0: जॉर्जेट,
1: बहुत
0: कॉटन,
1: फैशन में है ये मल्टी कलर वाली
0: जी, और
1: जी।
0: अलग अलग फैब्रिक में लोग इन्हें पसंद करते हैं।
1: और हम अगला संदेश सुनाएं चंचल, तब तक हम अपनी सखियों से भी पूछते हैं कि लहरिया साड़ी आपने इन दिनों में पहनी या नहीं पहनी, हमें जरूर बताइएगा। और सुनिए ये संदेश, ये भी यही बता रहा है संदेश कि ये टाई एंड डाई, ये वाले कला से इसको बनाया जाता है, जिसमें पानी की लहरों की तरह तिरछे और सुंदर धारियों वाले पैटर्न बनते हैं। और राजस्थान का ये पारंपरिक पहनावा है। साथ में कह रहे हैं कि इसमें कपड़े को तिरछा मोड़ कर धागे से बांधा जाता है, फिर चमकीले रंगों से रंगा जाता है। पचरंगा लहरिया जो है उसमें 5 रंगों वाली विशेष डिजाइन होती है। यहाँ की सबसे पुरानी और लोकप्रिय शान है ये वाली स्टाइल। और प्रमुख प्रकार और रंग है लाल, पीला, हरा, गुलाबी, बहुरंगी शेड सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। अगर कपड़े की बात करें तो ये संदेश कहता है कि जॉर्जेट, क्रेप, शिफॉन, सिल्क जैसे, इन जैसे हल्के और जो
0: हाँ
1: लहरदार, जो एकदम बिल्कुल आराम से जो जिसे पहना जा सके, ऐसे वाले फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं। गोटा पत्ती का वर्क होता है फिर तो, त्योहारों और शादियों के लिए इस तरह महीन गोटा पत्ती या जरदोसी का काम इस पर किया जाता है। राजस्थानी सावन और उत्सवों के माहौल में सजी खूबसूरत लहरिया साड़ियाँ, ये ताज़ा डिज़ाइन आजकल खूब वहाँ के मार्केट में आप देख सकते हैं।
0: सिर्फ साड़ियां ही नहीं, जो पुरुष हैं वो दुपट्टे डालते हैं लहरिया के, जो दुपट्टे बनने लगे हैं वो कुर्ता पायजामा पहनकर उस पर लहरिया पहनना, सिर्फ हम कहते हैं ना कि महिलाएं शौकीन होती हैं।

0: तो लहरिया के जो दुपट्टे हैं, जहाँ महिलाएं उनको शौक से पहनती हैं, तो पुरुष भी इसे बहुत चाव से अपने कुशल कुर्ते पजामे पर सजाते हैं।
1: और सिर्फ दुपट्टा ही नहीं, पुरुष तो उसके कुर्ते बनते हैं, शॉर्ट कुर्ता जीन्स के ऊपर आप पहनिए, देखिए क्या खूबसूरत लगता है,
0: इसके अलावा
1: यहाँ तक कि
0: पगड़ियां भी
1: बांधने।
0: पहनी जाती हैं,
1: जी जी
0: पगड़ियों में भी लहरिया होता है। जो पगड़ी जिस कपड़े की आप बांध कर पहनते हैं, उसमें भी लहरिया का इस्तेमाल किया जाता है। एक अन्य संदेश में कहा गया है कि लहरिया, इसके ब्राइट कलर कॉम्बिनेशन और लाइट वेट होना, ये हर उम्र की महिलाओं पर बहुत फबता है। हाथ से बनी असली लहरिया साड़ी रंग की शुरुआत, इसमें रंग जो है वो धुलाई में थोड़ा सा निकल सकता है, क्योंकि ये टाई डाई से बनाई जाती है।
1: और लहरिया को एक प्रकार, एक संदेश में हमारी सहेली ने लिख भेजा है, एक दली यानी इसमें केवल एक ही रंग की लहरदार धारियां होंगी और इसमें 5 अलग अलग रंगों का इस्तेमाल होगा जो बेहद शुभ माना जाता है, जैसे कि लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी। और एक होता है, एक और प्रकार है मोठड़ा। तो जब लहरिया की धारियां एक दूसरे को काटती हुई चेक्स वाला पैटर्न बनाती हैं, मतलब एक तरफ से और दूसरे तरफ से जब आती है, तो उसे मोठड़ा कहते हैं।
0: तो चलो वे गाना सुन लेते हैं, सुंदर साड़ियों की बात हो रही है, सुंदर गीत।

और देखो, जब हम तुम दोनों मिल जाते हैं ना, तो बहुत सारे संदेश लेकर आते हैं। और अब कुछ आगे संदेश की तरफ बढ़ते हैं, और हमने बात की थी ना कि कुछ झटपट बनने वाली जो चीजें होती हैं ना, उनकी बात की जाए, क्योंकि

0: कई बार हमारे पास समय की कमी होती है या अचानक से मेहमान आ जाते हैं, हमें कहीं जाना होता है और हम ऐसे ही किसी चीज़ की तलाश में रहते हैं कि झटपट ऐसी कोई चीज़ बना दी जाए जो स्वादिष्ट भी हो और जिसे आहार बना रहे पेट में। तो
1: बिल्कुल सही।
0: सूजी के अप्पे ऐसे होते हैं जिन्हें झटपट बनाया जा सकता है। इसके लिए सामग्री क्या चाहिए, हमारे श्रोता ने हमें लिखकर भेजी है। 1 कप सूजी में आधा कप दही और आधा कप पानी डालकर एक गाढ़ा घोल बना लीजिए। इसमें आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, घिसा हुआ गाजर मिलाएं, 2 हरी मिर्च और हरा धनिया भी काट कर डाल दें। अब ये जो सब्जियों की सामग्री बनाई गई है, इसमें आप जो चीज़ें नहीं खाते हैं उन्हें आप ना डालें, और कुछ स्वाद के लिए और चीज़ें डालना चाहते हैं तो उन्हें आप जोड़ भी सकते हैं। आगे इसे बनाने के लिए रेसिपी है कुछ इस तरह से है कि एक छोटे पैन में 1 चम्मच गर्म तेल करके डालें, राई, जीरा, नीम की छोटी पत्तियों का तड़का लगाकर इसमें एक गाढ़ा घोल तैयार कर दें। इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। अब आधा चम्मच इसमें कुछ भी आप या तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इस तरह का कुछ भी डाल सकते हैं और तुरंत अप्पे के सांचे में डालकर गर्मा गर्म फूले फूले अप्पे तैयार कर लीजिए। नारियल की चटनी या फिर हरे धनिया की चटनी के साथ में इसे परोस कर खाया जा सकता है।
1: बिल्कुल। और एक और ये रेसिपी भेजी हमारी सखी ने, भुट्टे की टिकिया बनाना बताया है कि कटोरी, 1 कटोरी उबले हुए भुट्टे आप ले लें, मिक्सी में पीस लें। 1 कटोरी उबला हुआ आधा आलू ले सकते हैं, आधा कटोरी पनीर, और इन सबको मिक्स कर लें। हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक वगैरह डाल लें और थोड़ा सा चाहें तो शिमला मिर्ची डाल लें। सब कुछ मिक्स करके अपने हिसाब से मसाले डाल लें, टिकिया बनाकर इसे सेक लें।
0: और अभी गाना सुन लेते हैं।
1: चलिए।

0: अच्छा, अगर झटपट से आपको बनाना है, कोई अचानक आ जाए, तो आप ऐसा करिए कि थोड़े से पोहे को पानी के में अंदर से धो के उसको निचो लीजिए, और फिर जो उबले हुए अगर आलू पड़े हैं फ्रिज में, तो उसको भी आप इसके साथ में मिक्स कर लीजिए, और फिर देखिएगा जब आप पोहा निचोड़ेंगे ना, तो अच्छे से वो फूल जाते हैं थोड़ी सी देर के बाद। इसमें उबले हुए आप आलू डालिए, भुनी हुई अगर मूंगफली घर में है तो उसको दरदरा पीस के वो भी डाल लीजिए, एक ब्रेड का टुकड़ा पानी में भिगो कर उसे भी निचोड़ कर मसल कर अच्छे से डाल दीजिए। अब बारीक कटे हुए प्याज डालकर आप अगर खाते हैं तो बारीक धनिया पत्ती प्याज अगर खाते हैं तो वो डाल लीजिए, हरी मिर्ची डाल लीजिए, और इसका एक थोड़ा सा डो जैसा, मतलब आटे जैसा तैयार
1: हाँ,
0: कर
1: मतलब
0: लीजिए।
1: ये एक साथ में इकट्ठा हो जाए।
0: हाँ, टिकिया का, टिकिया जैसा बनना है, और बस आप टिकिया का उसका शेप लेकर के झटपट इसे आप चाहें तो फ्राई कर लीजिए या शैलो फ्राई कीजिए, और देखिए बन गई आपकी बढ़िया सी टिकिया।
1: और बस हमारी सखियां ये टिकिया बनाकर खाएंगी, क्योंकि समय हो चला है पूरा। हम लेते हैं इजाजत, दीजिए चंचल वर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी को इजाजत, नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं डायरेक्टर, एक्टर और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना से विधि जैन की बातचीत।
1: हमारे सामने है एक बहुत बेहतरीन कलाकार जिनके हाथ में सब कुछ है, सारी रेखाएं हैं कला की, और उन्हीं रेखाओं में से रेखाएं चुनने की बारी आई तो हम भी थोड़ा परेशान हो गए, किस विषय पे बात की जाए। तो हम आपसे ही पूछ लेते हैं पंकज जी कि आप क्या ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आप एक एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, वॉइस ओवर डायरेक्टर भी हैं, और आपकी आवाज़ में भी बड़ा दम है जो अभी लोग सुनने वाले हैं। इसलिए विविध भारती में आपका स्वागत करते हैं बहुत हृदय से, बहुत प्यार से, और पहला प्रश्न हम आपसे पूछ चुके हैं, स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विविध भारती सारे दर्शकों को और विविध भारती से जुड़े हुए सारे लोगों को मैं मेरा आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया, याद किया और कहा कि हम कुछ विषयों पे चर्चा करेंगे।
1: जी,
2: और जैसे आपने कहा कि मैं एक्टर

0: सिंगर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, वॉइस ओवर डायरेक्टर, हाँ,
1: जी
0: एज ए डबिंग डायरेक्टर मैंने
1: जी
0: तकरीबन 18-20 फिल्में की हैं
1: जी
0: और अलग अलग विषय पे झुकी हैं। तो आपने मुझे पूछा कि आपको कौन सा वाला सब्जेक्ट इसमें से पसंद है, तो मुझे सारे ही पसंद हैं। जब जब जो मेरे पास सामने जो प्रोजेक्ट होता है,
1: जी
0: मैं उसको बहुत आनंद से, बहुत अंतरात्मा से करता हूँ,
1: जी
0: बहुत सिंसेरिटी से करता हूँ, ताकि इसमें मेरी जितनी भी कैपेबिलिटी, जो भी है,
1: जी
0: वट एवर आई एम कैपेबल ऑफ, मैं उसको अच्छी तरह से कोशिश करके बहुत अच्छी तरह उसको प्रस्तुत करूं।
1: तो चलिए हम इसको और सरल बना देते हैं पंकज जी। छोटे वाले पंकज ने जो बहुत छोटा सा था उम्र में, वहां पे उस पंकज ने सबसे पहले क्या किया था?
0: ये बात जाती है, बहुत पीछे जाती है, व्हेन आई वाज इन कश्मीर।
1: जी
0: असल में मैं कश्मीरी पंडित हूँ,
1: जी
0: पंकज रैना। रैना से नाम तो समझ ही आया होगा आपको कि हम कश्मीरी पंडित हैं।
1: जी
0: कश्मीर में रहते थे, जवाहर नगर हमारा अपना घर था, और हमारा जो घर था वो एक कल्चरल हब जैसा था।
1: अच्छा
0: ये पूरा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है,
1: जी
0: पंडित महेंद्र नाथ रैना, जो आत्मा से अंदर से बहुत अच्छे लेखक और शायर थे।
1: जी
0: वैसे वो J&K असेंबली में काम करते थे, कार्यरत थे, लेकिन उनके अंदर की जो आत्मा थी वो एक कवि की थी और लेखक की थी। तो
1: जी
0: उनकी वजह से जो मेरे जो बाकी भाई बहन थे वो भी कला क्षेत्र से जुड़ गए थे। पिताजी
1: अच्छा
0: वैसे बहुत सारे पेपर्स के भी एडिटर रहे हैं, जो हमारे J&K में हुआ करते थे। लेकिन हमारे घर में जैसे मेरे एक भाई, बड़े भाई थे भुवनेश, वो पेंटर स्कल्प्टर थे, पेंटिंग में स्कल्पचर का काम था उनका,
1: क्या बात है
0: उनको स्कल्पचर और पेंटिंग का शौक था। तो हमारा नीचे एक कमरा था, जो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर वाला डेडिकेटेड था, उसमें पत्थर पे भी स्कल्प्टर बनते थे, लकड़ी पे भी बनते थे, ऑयल पेंट भी होता था, ये सब चीज़। हम बहुत छोटे छोटे थे, तो
1: अच्छा
0: हमारे बड़े भाई थे, उनसे बड़े भाई थे जो फिजिक्स के डीन प्रोफेसर हुए हैं, वो मेरे पहले गुरु थे, जो प्रोफेसर तेज रायना, जिन्होंने कभी किसी संगीत सीखा नहीं, जिन्होंने उस तरह का कुछ किया नहीं, लेकिन मैं जब 10 साल की उम्र में था तो उन्होंने मुझे पहली एक गज़ल सिखाई थी, इसकी फैज़ अहमद फैज़ की। तो मैंने वो बच्चों के कंपटीशन में गा के मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। वहाँ से
1: आपको
0: मेरी यात्रा शुरू हुई। तो दूरदर्शन नया नया आया था
1: जी
0: 1972 में कश्मीर में, तो फिर वहाँ से मैं बच्चों के प्रोग्राम में मुझे बुलाया जाने
1: मैं
0: लगा।
1: आपको यहाँ रोक रही हूँ। आपको फैज़ अहमद फैज़ की एक गज़ल गाने पर फर्स्ट प्राइज़ मिला था, तो हमारा अधिकार बनता है कि वो गज़ल हम भी सुने जिस पे आपको प्रथम पुरस्कार मिला था, और वो हमारा हमारे श्रोताओं का अधिकार तो बनता है। तो अगर आप कुछ गुनगुना दें उसके कुछ हिस्से
0: वो तो
1: तो
0: मेरे, लेकिन बच्चों जैसी आवाज कैसे आएगी?
1: अब इस उम्र की उसी आवाज में सुना दीजिए, हम सुनना चाहते हैं।
0: दोनों जहान तेरी

0: क्या बात है।
1: दोनों जहान तेरे।
0: आ खूबसूरत आवाज है, इतना तो विश्वास है कि हमारे श्रोता तालियां जरूर बजा रहे होंगे सुनते सुनते। अब हम आगे बढ़ेंगे कि वो जो बच्चा है वो रेडियो पे जा रहा है ना गाने के लिए या।
1: टेलीविज़न पे और रेडियो पे। फिर टेलीविज़न में बच्चों का प्रोग्राम होता था
0: जी
1: 1972 में, तो मैं वहाँ जाने लगा। तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं छोटा सा था, तो मैं गाता भी था। उससे पहले भी मैंने एक, जो हमारे प्रोफेसर साहब थे, तो उनका एक एनुअल फंक्शन में मैंने ऑन द स्पॉट कहा था कि मैं भी गाऊंगा। उनका वो 15 अगस्त का प्रोग्राम था,
0: जी
1: तो मैंने वो बच्चों की आवाज़ में ही 8 साल की उम्र में ऐ मेरे वतन के लोगों गाया था। मैंने
0: आहा
1: कहा था मैं भी गाऊँ, जिद की मैंने।
0: जी जी
1: और चारों तरफ लोग खड़े थे, बहुत पुरानी बात है, इट इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 70 की
0: हाँ
1: बात कर रहा हूँ मैं। और लोग उस वक्त, उस तरह का स्टेडियम बना भी नहीं था, तो उस तरह के लोग आसपास खड़े थे, सब सबकी आंखों में आंसू थे। मैं, मेरी आवाज़ एकदम लता जी जैसी थी, बच्चों की आवाज़ थी, ऐ मेरे
0: हाँ
1: वतन के लोगों गा रहा था। तो यहाँ से एक तरह से, जैसे बोलते हैं ना, वो समझ आने लगा कि हाँ, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलने लगा।
0: जी
1: फिर वो होते होते फिर वो बच्चों का प्रोग्राम आ गया दूरदर्शन का, फिर रेडियो में सुनने लगे। आकाशवाणी और विविध भारती का मेरे
0: जी
1: जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बचपन से, जो कि तब तो टेलीविज़न था नहीं, नया नया आया था, घर में एक रेडियो होता था, चाहे मर्फी का या फिलिप्स का, लेकिन वो तार से जुड़ा होता था, इलेक्ट्रिसिटी, वो चलता था, और गीत और तरह तरह के प्रोग्राम आते रहते थे, हम सब सुनते थे।
0: जी
1: भाषा उच्चारण सीखने में तो काफ़ी योगदान रहा है विविध भारती का और आकाशवाणी का, तो हम इनके हमेशा से

0: शुक्रगुजार रहे हैं, आप अब भी रहते हैं। आज भी बहुत सौभाग्य है कि आकाशवाणी में आके हम कुछ चर्चा कर पा रहे हैं आकाशवाणी और विविध भारती के बारे में।
1: जी
0: तो इनका बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में, जबकि कहते हैं कि देखिए हर प्रांत हर राज्य का एक अलग भाषा होती है, हर राज्य के एक अलग डायलेक्ट होता है, हम जाते हैं तो वो दिखता है जब कोई बात करता है। लेकिन इन सब चीज़ों पे हमने जब वर्क किया तो हमें, क्योंकि अगर आप कश्मीरी नॉर्मल एक कश्मीरी से बात करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कश्मीर
1: कश्मीर का
0: का
1: है
0: रहने
1: जी,
0: वाला है
1: जी
0: या ये चेन्नई का रहने वाला है या ये कलकत्ता का रहने वाला है।
1: जी
0: हमने लेकिन भाषा और उच्चारण पे बहुत काम किया कि ताकि हमें एक नॉर्मल एक जनरलाइज्ड एक हमारी भाषा हो, ताकि हम एक जिसको देवनागरी हिंदी में जब बात करें तो लगे कि हिंदी बोल रहे हैं, कश्मीरी हिंदी नहीं बोल रहे हैं,
1: जी
0: बंगाली हिंदी नहीं बोल रहे हैं।
1: जी
0: तो इसमें हमारा आकाशवाणी और विविध भारती का बहुत बड़ा हमारे जीवन में योगदान रहा है, मैं हमेशा आभार व्यक्त करता हूँ।
1: विविध भारती के और आकाशवाणी के पुराने उद्घोषक जो रहे हैं उनकी बात बहुत निराली है और उनसे सीखकर हम भी
0: हमारे
1: बने हैं,
0: शिक्षक
1: और
0: रहे हैं,
1: जी
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल, तो उन सबको हम सविनय प्रणाम करते हैं और
0: बिल्कुल करते
1: धन्यवाद
0: हैं,
1: देते हैं कि ये बात सुनने को मिल रही है और हमें भी बहुत अच्छा लग
0: बिल्कुल
1: रहा है।
0: मैं हमेशा इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। और मैं आज भी आकाशवाणी और विविध भारती का एक मतलब ये श्रोता हूँ, मैं
1: जी
0: सुनता हूँ जब भी ड्राइव करते करते कहीं जाते हैं लंबे सफर में, तो आई विल ऑलवेज प्रेफर कि मैं 102.8
1: एट जी जी
0: सुनूँ
1: जी
0: या एक और है 107 पॉइंट, जो जैसे आकाश में
1: आप
0: गोल्ड
1: जहाँ
0: है।
1: जहाँ शहर
0: हाँ
1: बदलेंगे हमारे नंबर्स
0: जी
1: बदल
0: जी
1: जाते हैं,
0: नंबर्स
1: इसलिए
0: बदल
1: आपको
0: जाते
1: अलग
0: हैं,
1: अलग शहर में अलग अलग दिखाई
0: लेकिन
1: देता
0: मुझे
1: है।
0: इनके ही प्रोग्राम सुनना अच्छा लगता है, बिकॉज
1: जी
0: एक तो मर्यादा में बोलते हैं, भाषा रेस्पेक्टेबल भाषा में बात करते हैं
1: जी
0: और कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत ही सुंदर एकदम मतलब प्रसारण होता है।
1: जी
0: मैं माफ़ी चाहता हूँ उस बात के लिए, लेकिन मैं FM सुनता नहीं आजकल के, क्योंकि वहाँ ना उच्चारण है ना भाषा है ना कोई उसका अंदाज है। लेकिन आकाशवाणी ने और विविध भारती ने हमेशा से वो कंटिन्यू रखा है कि किस तरह से एक भाषा को एक रेस्पेक्टेबल वे में प्रस्तुत किया जाए।
1: जी हम हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता और हमारे इतिहास को संभालने का विविध भारती प्रयास कर रहा है, और आप सब लोगों जैसे लोगों का साथ रहता है तो
0: हम
1: अच्छा
0: हमेशा
1: चलता
0: साथ
1: जाता है।
0: हैं, हम
1: जी
0: हमेशा साथ,
1: तो अब हम वापस आपके
0: मेरे
1: जीवन
0: बचपन
1: पे
0: में
1: आ जाते
0: चलते थे। फिर
1: हैं।
0: मेरे एक ब्रदर है चंद्रशेखर,
1: जी
0: वो हमारे थिएटर भी हमारे यहाँ होता था, हमारे कश्मीर में एक हॉल होता था जहाँ एक ही हॉल था, टैगोर हॉल
1: जी
0: अब भी है वो, जहाँ
1: जी
0: पे प्लेज होते थे, म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते थे। तो हमारे घर में चूंकि इस तरह का वातावरण था ही, तो हम बच्चों छोटे थे हम भी फॉलो अप करते थे, तो इस तरह से ये क्रिएट हुआ।
1: जी
0: घर से हमारे उस वक्त चीज़ें ले जाते थे जो सेट डेकोरेशन
1: सेट
0: करने के
1: लगाने
0: लिए
1: के लिए जी
0: लगाने के लिए, और आकाशवाणी का भी विविध भारती का भी योगदान था, ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर का भी बहुत योगदान था। वो वक्त वक्त पे बड़े बड़े पंडित और उस्ताद लोगों को वहाँ, उनके प्रोग्राम्स होते थे जैसे शिव कुमार शर्मा जी का, उनके हरिप्रसाद जी का, और बहुत अच्छे अच्छे परवीन सुल्ताना, ये बड़े बड़े जितने भी दिग्गज संगीत के जो मार्तंड हुए हैं उन लोगों का प्रोग्राम आकाशवाणी प्रस्तुत करवाती थी, और कभी आकाशवाणी में होता था कभी हॉल में होता था, तो हम लोग देखते जाते थे क्योंकि हमें बड़ा शौक था, हम लोग इस तरफ इंक्लाइंड थे,
1: जी
0: झुकाव था हमारा,
1: जी
0: तो हमने वहाँ से ही शुरुआत की है, वहीं से शुरुआत हुई है, उस तरह के ही वहाँ से असर पड़ा है। तो फिर धीरे धीरे हम लोग, फिर मैं और मेरी बहन प्रेरणा, हम लोग ना म्यूजिक एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स था
1: हाँ
0: J&K एकेडमी का, वहाँ जाके हमने सारे गामा सीखना शुरू किया, छोटे
1: जी
0: छोटे थे
1: जी
0: तब, तो फिर हमें थिएटर में उतना मिलता नहीं था मौका,
1: जी
0: लेकिन गीत संगीत की तरफ पूरा ध्यान जाता था।
1: जी
0: फिर धीरे धीरे वहाँ थिएटर करना शुरू किया हमारे, क्योंकि घर में ही था, जितने भी अच्छे अच्छे कलाकार इतने बड़े बड़े जिन्होंने नाम किया बाद में, तो वो हमारे थिएटर ग्रुप में भी थे कश्मीर में, और उनकी वजह से हमें बड़ा आनंद होता था कि इन्होंने बॉम्बे जाकर और दिल्ली जाकर इतना नाम कमाया, इतनी ख्याति पाई। तो देखा जाए तो बचपन से ही इसकी नींव पड़ी थी जो आज तक चली जा रही है। नाउ आई एम ए सीनियर
1: बीच
0: सिटीजन, इट्स बीन लॉट ऑफ टाइम आई हैव बीन विद म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट ऑलवेज।
1: ये जो बीज सही पड़ा था, ये बीज आगे बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते एक होता है ना कि अभी तक तो आप सीख रहे हो या मजाक मस्ती में कर रहे हो या शौक के लिए कर रहे हो, प्रोफेशनली या कहा जाए जैसा शायद पूछा भी जाता है सामान्यतया, ये हालांकि मजाक का विषय लिया जाता है, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं गायक हूं तो उससे उसका होने वाला ससुर पूछता है पर खाने के लिए क्या खाता है। तो इसी विषय के नाते मैं आपसे पूछूंगी कि आपने इसको अपने दाना पानी का विषय यानी अपने प्रोफेशन का विषय कब बनाया और कैसे बनाया।
0: वो थोड़ा बाद में बनाना पड़ा, बिकॉज जब मैं बहुत ही अर्ली एज से, क्योंकि बच्चों के प्रोग्राम में जाता था, फिर हमारे रेडियो कश्मीर में युववाणी की स्थापना हुई,
1: जी
0: और युववाणी में जब हम टीनेजर

0: थे, 16 17 18 साल के थे, 16 17 साल, 15 16 17 साल के ही थे। तो तब हमें वहाँ पे हमें मौका मिला कि हम प्रसारण कैसे करें, उन्होंने थोड़ा बहुत समझाया सिखाया।
1: सिखाया।
0: तो फिर वो शामे गज़ल और आपकी फरमाइश, इस तरह के प्रोग्राम हम युवानी में प्रस्तुत करने लग गए।
1: अच्छा
0: फिर हमारे वहाँ ड्रामा प्रोड्यूसर थे प्राण किशोर कौल साहब,
1: जी
0: तो फिर उन्होंने बोला तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम आओ, तुम ड्रामा का भी ऑडिशन दो,
1: जी
0: मैं प्लेस करते रहता हूँ, रेडियो प्लेस
1: हाँ
0: जो
1: हाँ
0: होते थे। तो हमारा हमारा फिर ड्रामा के लिए ऑडिशन हुआ रेडियो का, तो उसमें हम अच्छी ग्रेड में हुए, तो फिर हम
1: पास हो
0: उसमें
1: गए
0: प्लेस करते थे। तो
1: जी
0: वहाँ से कुछ न कुछ, शुरू शुरू में कभी 15 रुपए का चेक मिलता था, फिर बाद में धीरे धीरे 50 रुपए का हुआ,
1: हाँ
0: ऐसी शुरुआत हुई। तो यहाँ से तो आना शुरू हुआ ही था एकदम, तो कोई ना
1: जी
0: कुछ। लेकिन पिताजी की वजह से हमें इस तरह का वो नहीं था, उनका हम आज भी धन्यवाद करते हैं, बहुत करते हैं, कि उन्होंने कभी हमें सप्रेस नहीं किया, दबाया नहीं,
1: जी
0: कि उन्होंने हमें खेलने दिया जैसे हम खेलना चाहते थे।
1: जी
0: तो उन्होंने हमेशा कहा कि बेटा, उन्होंने सिखाया कि हाँ, ये अब चेक मिला है तो कहाँ रखे, 15 रुपए का चेक मिला है, छोटे छोटे थे। तो पिताजी अपने साथ बैंक ले गए, उन्होंने बोला कि ये अकाउंट खुलवाया तो इसमें चेक डाल दो। फिर जब वो पैसे जमा होते थे तो हम कभी वो हमारे लिए कभी कभी शूज़ लेके आते थे,
1: हाँ
0: जाते थे, कभी वो लाते थे। तो उस तरह का उन्होंने सिखाया शुरू से बचपन से
1: जी
0: कि कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इकोनॉमिक जब से कुछ पैसे कमाए हैं तो उनको कैसा उपयोग होना चाहिए। फिर होते होते मैं घर से निकल पड़ा था एक्चुअली, सच बताएं तो मेरे
1: निकल
0: भाग्य
1: पड़े थे,
0: में
1: मतलब
0: ऐसा था कि
1: भाग पड़े
0: मैं,
1: थे या निकल पड़े थे?
0: नहीं, घर वालों की सहमति से ही आया था, ऐसा नहीं, भाग
1: अच्छा
0: के नहीं आया।
1: जी
0: तो मैं 1980 में दिल्ली आया, और दिल्ली में मैंने भारतीय कला केंद्र में एडमिशन लिया, और मैं थिएटर भी करता था, और मैं पंडित अमरनाथ जी से म्यूज़िक भी सीख रहा
1: संगीत भी
0: था।
1: सीखा।
0: और वो भारतीय कला केंद्र दिल्ली मंडी हाउस में बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है जो श्री राम लोगों का है। तो वहाँ हमने म्यूज़िक क्लास में मुझे एडमिशन मिला अमरनाथ जी के यहाँ, तो पीछे हॉस्टल में रहने की व्यवस्था भी थी, और बाकी टाइम सब हर वक्त क्लास नहीं होता था, लेकिन बाकी टाइम 1 2 घंटे निकाल के मैं और हम लोग, मेरे कुछ साथी थे, उनके साथ हम थिएटर वगैरह, प्लेज पढ़ना, प्लेज की
1: जी
0: रीडिंग करना और प्ले करना। तो वहाँ पे श्रीराम सेंटर, कमानी ऑडिटोरियम, फिक्की ऑडिटोरियम,
1: जी
0: बहुत सारे ऑडिटोरियम मंडी हाउस में थे। तो वहाँ हम कभी कभी फिर नाटक करते थे, और कभी कभी यहाँ, छोटे ही थे, आई वॉज आई थिंक ऑलमोस्ट वो टीनेज की एंड ही था मेरा कुछ ऐसा, जब मैं दिल्ली आ गया
1: एटीन
0: था।
1: ट्वेंटी ईयर्स का एज
0: हाँ,
1: होगा, अठारह
0: उन्नीस
1: बीस
0: बीस
1: साल।
0: साल की उम्र थी।
1: हाँ
0: तो वहाँ मैं 5 साल दिल्ली में रहा, वहाँ पे उस दौरान फिर मैंने कुछ वहाँ भी रेडियो में मैंने म्यूज़िक में ऑडिशन दिया, तो मैं मुझे पास हुआ था दिल्ली रेडियो से, मैं
1: जी
0: सिंगिंग में बी हाई ग्रेड में
1: मतलब
0: पास
1: रेडियो
0: हुआ
1: का साथ छोड़ा
0: रेडियो मेरे
1: नहीं
0: साथ में हमेशा रहा है।
1: जी
0: और मेरी बहन का तो ये था कि हमारे एग्जाम्स होते थे ना, तो
1: हाँ,
0: उसका रेडियो चलता रहता था, गीत भी चलते रहते थे, वो
1: और
0: प्रिपेयर भी
1: पढ़ते भी
0: करती
1: रहते थे।
0: रहती थी।
1: जी जी जी
0: मुझसे ऐसा नहीं होता था, उससे हो जाता
1: जी लड़कियां मल्टी टैलेंटेड होती
0: था
1: हैं
0: तो मेरी ट्रेनिंग ही इस तरह की रही है,
1: जी
0: लेकिन कभी उस तरह की वो रही नहीं डेस्परेशन की हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कहीं नौकरी करनी है, ऐसा नहीं रहा। लेकिन मुझे लगता है ट्रेनिंग ऐसी होती रही, उसके साथ में इंडलजेंस वैसी होती रही, जैसे कि जैसे म्यूजिक भी था, थिएटर भी था, और अपनी भाषा पे और उच्चारण पे तो शुरू से ही ध्यान देते थे, तो आवाज़ का भी कुछ एक समझ आया कि आवाज़ को कैसे इस्तेमाल करना है।
1: जी
0: कुछ वहाँ दिल्ली में प्रोग्राम करने का मौका मिलता, तो एंकरिंग करने का मौका मिला,
1: जी
0: तो इस तरह की सारी चीज़ें होती रही अपने आप ही, सच बताएं तो।
1: मतलब आपके लिए अपने आप ही सब हो रहा था, और उसी अपने आप में आपने ना आवाज़ की बात के बारे में कई बार बोला,
0: जी
1: उच्चारण के बारे में कई बार बोला, तो मैं आपके जीवन की जो परिधि पे हम चल रहे थे उस परिधि पे 1 मिनट के लिए रुक के एक बात पूछना चाहती हूँ। आप वॉइस ओवर डायरेक्टर हैं, हमारे श्रोताओं में कई सारे बच्चे हैं जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, शायद उनको मॉड्यूलेशन भी आता है खुद से अपने आप से, और वो ऐसा सोशल मीडिया पे कई चीज़ें करके भी डालते होंगे, पर वो चाहते हैं कि वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाएं, तो उसके लिए वो क्या करें? अगर आप थोड़ा सा बीच में कुछ सिखा दें फिर हम आपकी यात्रा पे वापस आ जाएंगे।
0: मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर कोई वॉइस ओवर या डबिंग करना चाहता हो या
1: जी
0: वॉइस एक्टर बनना चाहता हो,
1: जी
0: उसे सबसे पहले तो अपनी भाषा पे और उच्चारण, जो मैं बार बार कह रहा हूँ,
1: जी
0: क्योंकि ये आजकल सबसे ज़्यादा कमी अगर मुझे कहीं महसूस होती है, कहीं ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट और सुनने में, तो ये बहुत तकलीफ़ होती है
1: जी
0: कि लोग, उनका भी शायद कितना दोष है, उनके शिक्षक वैसे हैं क्या, ये मुझे
1: जी
0: मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, उच्चारण पे बहुत ध्यान देना चाहिए, वॉइस क्वालिटी पे देख, उनकी वॉइस, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी आवाज़ में बेस कैसे आएगा,
1: हाँ,
0: ऐसा नहीं
1: ये
0: हो। मेरे
1: प्रश्न
0: मुझे
1: है
0: कई लोग सवाल पूछते हैं कि हमारी आवाज़ ऐसे कैसी होगी,
1: जी
0: आपके जैसे हमारी आवाज़ कैसी होगी।
1: हाँ
0: लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर एक व्यक्ति की, हर एक

0: एक शख्स की एक आवाज, एक अपनी क्वालिटेटिव आवाज, वो नेचर से मिलती है।
1: जी
0: उसमें थोड़ा सा हम लोग एनहांसमेंट कर सकते हैं अगर हम उसका थोड़ा रियाज करें, जैसे हम खरज का रियाज करें मॉर्निंग में उठ के, वो संगीत
1: खरज का
0: की
1: रियाज
0: जैसे
1: कैसे कर सकते हैं थोड़ा सा?
0: वॉइस को थोड़ा सा नीचे के टोन, जैसे ऑक्टेव्स हैं, जैसे सप्तक है,
1: हाँ
0: मंद सप्तक है, मध्य सप्तक है और तार सप्तक है, तीनों ऑक्टेव्स जो हैं उसमें मध्य सप्तक से आपको मॉर्निंग में, चूंकि आप नींद से उठते हैं तो उसके बाद आपके पास थोड़ी सी बैठी होती है,
1: बेस
0: मतलब
1: काफी
0: बेस वहाँ
1: अच्छा
0: होती है,
1: होता
0: तो
1: है।
0: उसमें आप
1: हाँ
0: नीचे की तरफ
1: सा
0: सा
1: के बाद
0: नी हा
1: नी,
0: नीचे आए
1: जी।
0: आ आ नीचे की तरफ जितना जाएंगे,
1: जी
0: और कहते हैं कि जितना नीचे जाएंगे उतना ऊपर छू सकते हैं।
1: अच्छा
0: हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये कहा है कि वेन्यू आप जब खरज का रियाज करते हैं तो तार सप्तक में आपकी आवाज और भी आगे
1: खुलती
0: जब
1: है
0: खुलती है,
1: जी।
0: तो इस तरह का मुझे लगता है वॉइस क्वालिटी में अगर थोड़ा बदलाव लाना है तो थोड़ा आपको खरज का रियाज करना पड़ेगा, चाहे आप संगीत का करें या
1: जी
0: आ करके ही कर सकते हैं।
1: जी
0: लेकिन हर एक व्यक्ति की, हर एक शख्स की, हर एक स्त्री की अपनी अपनी एक वॉइस क्वालिटी है जो नेचुरली होती है, तो उसको ही कैसे अच्छा इस्तेमाल करना है वो आपको ढूंढना है। अगर आपका उच्चारण सही है, अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, तो आपको उच्चारण पे पढ़ के आपको पढ़ाई बहुत करनी है,
1: जी
0: किताबें बहुत पढ़नी चाहिए आपको, और थोड़ा सा लाउडली पढ़नी चाहिए। जैसे आप अकेले अगर हो तो किताबें पढ़ना चाहिए उसको,
1: किस तरह की किताबें पढ़नी
0: कोई भी,
1: चाहिए?
0: जैसे उपन्यास हो कोई भी हो,
1: अच्छा
0: जिसमें अगर आपको, क्योंकि भाव की भी जरूरत होती है,
1: जी
0: आवाज के साथ में उच्चारण के साथ में भाव भी चाहिए,
1: जी
0: तभी आप अच्छे आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट या वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं।
1: जी
0: जब आपको मालूम, क्योंकि मेरी संगीत के योगदान ने मुझे उसमें एक अलग तरह का, एक मेरे जीवन में योगदान किया है, कि क्योंकि मैंने बेसिकली थोड़ा म्यूजिक भी सीखा है, बहुत ज़्यादा मैं उस्तादी म्यूजिक नहीं सीखा, मैंने बेसिक
1: जी
0: म्यूजिक सीखा है, जो
1: जी
0: मैंने संगीत सीखा है उस वजह से मेरे डायलॉग डिलीवरी में, या मैं जब डबिंग करवाता हूँ किसी से, तो मैं उनको वो गाइड कर सकता हूँ कि इस सेंटेंस का भाव ऐसा है, और किस शब्द को आपको कितना पुश करना है, कितना सॉफ्ट करना है, और उसको कैसे साथ में लेके चलना है,
1: जी
0: तो वो मैं इसलिए बता पाता हूँ क्योंकि मेरा संगीत से मेरा जुड़ाव है, संगीत की मेरी सोल है,
1: जी
0: मेरी म्यूजिक की सोल, मुझे वो जो सुरों की जान पहचान की वजह से मुझे लगता है कि जो डायलॉग को हम किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं
1: जी
0: वाइल एक्टिंग, या रेडियो एक्टिंग, या फिल्म की एक्टिंग, या टेलीविजन की एक्टिंग करते हैं, तो वो भाव उसमें आना बहुत अनिवार्य होता है, आवश्यक है,
1: ठीक है
0: तभी तो आपके सेंटेंस में वो एक वो कन्वे होगा कि आप क्या कहना चाहते हैं।
1: जी
0: तो उसमें उच्चारण के साथ साथ, वॉइस के साथ साथ आपको भाव पे भी ध्यान देना पड़ेगा, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
1: जी
0: और जैसे आजकल तो बहुत सारे एपरेटस हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, उसमें रिकॉर्डर होता है, उसमें कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, दो एक छोटा पैसेज रिकॉर्ड कर लिया, फिर आपने उसको सुन लिया, तो अगर आप जेन्युइनली एनालिटिकली अपने उसको, जो आपने रिकॉर्ड किया उसको सुनेंगे और समझेंगे कि कहीं त्रुटि है, कहीं गलती तो नहीं हुई है, कहीं कुछ ऐसा हुआ तो नहीं, तो आप उसको दोबारा से कर
1: खुद
0: सकते
1: खुद
0: हैं
1: के गुरु भी बन सकते
0: खुद
1: हैं।
0: क्या। और वैसे भी बहुत सारी कुछ लोगों की क्लासेस चलती हैं जो वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस एक्टिंग, ये सब चीज़ें और ब्रॉडकास्टिंग के बारे में सिखाते हैं, काफ़ी लोग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो वहाँ पे भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा उसका मंत्र जो है कुछ करने के लिए, दीवानापन और दीवानगी होनी चाहिए। अगर
1: जी
0: आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है,
1: जी
0: इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
1: जी तो वो पागलपन चाहिए, अगर पागलपन है तो
0: हाँ,
1: आप
0: वो
1: वहाँ पहुँच
0: दीवानापन
1: सकते हैं।
0: चाहिए।
1: और कुछ शिक्षाएं तो इसमें दी गई हैं, तो आप उन शिक्षाओं का भी ध्यान
0: जी
1: रखें,
0: जी बिल्कुल, बिना
1: उच्चारण
0: गुरु के
1: और
0: ज्ञान तो मिलता
1: जी
0: नहीं है,
1: जी
0: और
1: जी
0: गुरु आपको बनाना पड़ेगा किसी को गुरु, कि हाँ ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं
1: हाँ
0: इनसे सीखूं,
1: जी
0: तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही।
1: जी
0: तो हम बचपन में गए ना वापस।
1: नहीं अभी बचपन में नहीं जाते हैं। एक काम करते हैं, हम वापस आते हैं,
0: हाँ
1: और वापस आके जब आपने इतनी अच्छी शिक्षा दी और आपने कहा कि संगीत ने आपका बहुत साथ दिया,
0: जी,
1: आपने बहुत अच्छे से दिल्ली में सीखा भी संगीत, तो अगर आप हमें एक कोई गीत गाकर सुना दें ताकि वही गीत हम हमारे श्रोताओं को सुना पाएं।
0: ठीक है, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, पता
1: जी
0: नहीं आपका दिल चाहे तो मतलब
1: नहीं स्वागत है, स्वीकार है। जी
0: मैं चूंकि संगीत से मेरा बहुत पुराना साथ है, मेरा इट
1: जी
0: हैज बीन माय फ्रेंड ऑलवेज, मेरा साथी हमेशा संगीत रहा है, अकेलेपन का भी बहुत साथी रहा है।
1: जी
0: बीच में तो काफ़ी साल मैं एक्टिंग करता रहा, 1987 में पहली बार मैंने बॉम्बे में सीरियल किया था, एक्टिंग करते करते करते मैं डबिंग करता रहा, वॉइसिंग करता रहा, फिर डबिंग डायरेक्टर बना करते करते, उसके बारे में बाद में तो बात करूंगा आपसे। तो उसके साथ साथ मैं अभी एक प्रोग्राम करने वाला हूँ,

0: एक ट्रिब्यूट दे रहा हूँ हमारे बहुत बड़े आइकॉन फिल्म इंडस्ट्री के रहे हैं धर्म जी, धर्मेंद्र,
1: जी
0: उनको ट्रिब्यूट देने का मेरा बड़ा दिल किया, तो मैं उनको एक ट्रिब्यूट दे रहा हूँ। प्यार ही प्यार बेशुमार
1: क्या
0: टाइटल
1: बात है,
0: रखा है मैंने प्रोग्राम का, और आई थिंक अगले अगस्त के फर्स्ट वीक के आसपास में सेंट एंड्रयूज ऑडिटोरियम में वो शो कर रहा हूँ। उसमें एक गीत मुझे बहुत पसंद है, धर्म जी को मैंने डेडिकेट किया। उसमें
1: जी
0: गाने तो बहुत सारे हैं, हमने तकरीबन बहुत सारी लिस्ट बनाई है। उसमें एक गाना है जो मुझे बहुत बेहद पसंद है, उसकी दो लाइनें आपको सुनाता हूँ,
1: जी
0: क्योंकि
1: स्वागत है।
0: आपने मुझे कहा है कि दो लाइनें सुना दीजिए।

0: बस कोई हिसाब नहीं, दुनिया ओ दुनिया।
1: कितना खूब गाया आपने, बेहतरीन। चलिए।

0: ये खूबसूरत गीत आपने गाया और हमने हमारे श्रोताओं को सुनाया, मतलब हमारे श्रोताओं की भूख बढ़ गई है कि अब जो भी गीत आप चुनेंगे उस गीत को आप गाकर सुनाएंगे और फिर हम आगे सुना देंगे।
1: वाह वाह, मेरा
0: ये
1: सौभाग्य,
0: है
1: मेरा
0: ना, ये
1: सौभाग्य।
0: होता रहेगा। पर अब आपने बताया कि 1987 में आप मुंबई आए थे और पहला
1: 1986 में आया था,
0: 1986 में।
1: इनफैक्ट जनवरी 20-40 साल हो गए तकरीबन बंबई में।
0: ऐसा बताने से उम्र पता चल जाती है
1: मुझे कोई गम नहीं है
0: तो पर
1: उसका।
0: आप 1986 में मुंबई आए और यहाँ पर आके आपने अपना एक नया कदम, एक नया पायदान चढ़ा, एक नई सीढ़ी चढ़ी यहाँ से
1: जी,
0: आपने। तो अब जरा उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें थोड़ा।
1: ऐसा सुनने में आया था कि बॉम्बे में बिना गॉडफादर के कुछ होता नहीं है,
0: अच्छा
1: तो ये बात एक तरह से

0: वाजिब भी है, अच्छी भी है, सही भी है, लेकिन अब जब मेरा कोई था ही नहीं बॉम्बे में, तो मुझे तो खुद ही अपनी पगडंडी बनानी थी, अपने रास्ते खुद बनाने थे। तो मैं उससे पहले भी कई बार, एक बार ऐसे छुट्टियां होती थी मेरे कॉलेज में, तो वो सब दिल्ली में भाग भाग के आता था, क्योंकि बम्बई अपनी तरफ खींचता था मुझे हमेशा शुरू से। फिर फाइनली मुझे बॉम्बे आना ही पड़ा। मुझे बहुत लोगों ने वहाँ दिल्ली में कहा कि आप दिल्ली में क्यों रहते हैं, आप बॉम्बे जाना चाहिए, आपको बॉम्बे में इतना अच्छा आपके टैलेंट का विकास होगा, आपको बहुत सारे अच्छे मौके मिलेंगे। तो मैं बॉम्बे आया, तो उसके बाद फिर मैंने इधर उधर कुछ, मैंने एक फोटो सेशन करवाया था। उस वक्त के बेस्ट फोटोग्राफर जो थे, स्टिल फोटोग्राफर, उनका नाम था गौतम राजाध्यक्ष,
1: जी जी
0: अब वो
1: जी
0: है
1: जी
0: नहीं,
1: जी जी
0: लेकिन मैंने बड़ी बहुत जद्दोजहद करी, बहुत मेहनत करी, तो मैंने उनका पता ढूंढा। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे फोटो सेशन कराना है तो सिर्फ आपसे करवाना है।
1: बड़े महंगे हुआ करते थे उस समय
0: लेकिन बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे
1: जी
0: थे
1: जी
0: वो, बहुत
1: बिल्कुल
0: ही अच्छे, एंड ही वॉज द बेस्ट पोर्ट्रेट फोटोग्राफर, बहुत बड़े
1: यस
0: बड़े लोगों का करते थे, एंड ही अग्रीड टू डू माई फोटो सेशन फॉर दैट टाइम। एंड तो फिर उनके घर पे उन्होंने मुझे, बाबुलनाथ मंदिर के पास में उनका घर था, ह्यूज रोड पे, तो वहाँ उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, बोला यू कम ऑन सैटरडे, वी विल शूट। तो उन्होंने खट खट खट खट मेरी तस्वीरें लेते गए वो, और कुछ फोटोग्राफ्स उन्होंने दी। तो फिर मेरे पास जब वो उस ज़माना वो था, तो कुछ फोटोग्राफ्स तो दी थी, तो मैंने बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में मैंने
1: अप्लाई
0: वो
1: कर दिया।
0: दिया उनका अपना पीछे। अच्छा, उस वक्त ऐसा ज़माना था कि फ़ोन भी नहीं होता था सबके पास में, सबके मतलब केयर ऑफ नंबर होते थे। मेरे भी एक अंकल रहते थे बांद्रा में, तो पीछे उनका केयर ऑफ नंबर देके हम लोग रखते थे नाम और केयर ऑफ नंबर। कभी कभी वो फ़ोन करते भी थे और मैसेज मिस भी हो जाते थे। और
1: हाँ
0: मेरी आंटी घर पर रहती थी, तो बोलती थी अरे बेटा किसी का फोन आया था, वो कोई अच्छा सा था, नाम भी अच्छा सा था, कुछ क्या कुछ बताती नहीं, कोई कुछ
1: भूल
0: मैसेज मिलता नहीं
1: गई
0: था,
1: भूल गई।
0: लेकिन हाँ वो भूल जाती थी। तो इस तरह का भी वक्त देखा है। तो फिर बहुत सारे लोगों से मिलना होता था। उस वक्त मुझे एक एड फिल्म मिली थी ब्रूक बॉन्ड की, 3 रोज़ेस चाय,
1: अच्छा
0: आई थिंक दैट वॉज फॉर कुछ साउथ के लिए था।
1: हाँ
0: उसमें एक मॉडल थी राधा, और मुझे उन्होंने लिया था, ज्योति ठाकुर डायरेक्टर थे उस एड के,
1: जी
0: बहुत
1: ठाकुर
0: बड़े
1: जी जी जी
0: एड फिल्म मेकर थे ज्योति
1: जी
0: ठाकुर।
1: जी
0: तो उस एड में मुझे काम करने का मौका मिला था, ब्रूक बॉन्ड की 3 रोज़ेस चाय। फिर मैंने जिंगल गाया, एक बन फूल आयुर्वेदिक तेल का जिंगल मुझे गाने का मौका मिला। मैं बहुत मतलब मैं जितनी मुझसे कोशिश खुद से हो सकती थी मैं करता था, क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर था नहीं, मुझे कोई लॉन्च करने वाला था नहीं, तो आई हैड टू डू माई ओन थिंग्स। तो आई यूज टू बी इन टच, मैं पृथ्वी थिएटर में अक्सर जाता था, वहाँ लोगों से मिलना होता था, वहाँ बहुत लोग मिलते थे। कुछ मैंने उस पहले आके इप्टा के साथ में भी एक उनके साथ फंक्शन किया था इप्टा डे का, तभी वो बहुत अच्छे अच्छे लोग हुआ करते थे, इकबाल कुरैशी साहब म्यूजिक डायरेक्टर थे, कुलदीप सिंह जी थे, तो एम एस सत्यू साहब, ये लोग बहुत पुराने इप्टा के
1: बड़े
0: लोग थे।
1: लोग थे
0: तो
1: जी।
0: इन लोगों के साथ में भी इप्टा डे में भी मैंने गाया भी था, एक्टिंग भी किया था। तो इस तरह से मुझे जितने जितने मुझे जो भी मौका मिलता था मैं कर लेता था। आई
1: जी
0: थिंक आई यूज टू, मुझे लगता है अपने आपको मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ, शायद रिफाइन कर रहा हूँ। तो इनिशियली वैसे ही काम चलता रहा।
1: जी
0: फिर ये 1987 में दूरदर्शन में एक सीरियल आता था अधिकार, उसमें मेरा उसमें हुआ था, तो
1: जी
0: मैंने उसमें एक्टिंग की। फिर उनका ही नेटवर्क 7 का ही मंजू सिंह, जोत सिंह का एक कहानी, उसमें मैंने एक्टिंग की। फिर उसके बाद तरह तरह के करता रहा। फिर मेरे साथ एक किस्सा हुआ था, मैं आपको बताऊं,
1: जी
0: मैं जो मैंने शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं है, मैंने प्यार किया फिल्म की कास्टिंग हो रही थी,
1: हाँ
0: तो मैंने प्यार किया कास्टिंग के लिए मुझे किसी ने मुझे मुझे भेजा था, बोला उनको ज़रूरत थी उस वक्त एक्टर्स की, तो उन्होंने शायद सलमान खान और भाग्यश्री का सिलेक्शन हो चुका था,
1: जी
0: उसमें किरदार था जीवन का,
1: जी
0: उसके लिए मुझे उन्होंने स्क्रीन टेस्ट किया, सूरज जी से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया था। और उस स्क्रीन टेस्ट में सलमान खान भी मौजूद थे और भाग्यश्री भी। वो एक प्रॉपर सीन शूट हुआ राजश्री प्रोडक्शंस की सीढ़ियों में, जहाँ पे वो लिफ्ट है, और वहाँ सीढ़ियों से उतरते मैं एकदम सूटेड बूटेड आता हूँ, और नीचे आके सलमान और भाग्यश्री खड़े हैं, उनके साथ मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था उस फिल्म के लिए। वो एक डायलॉग था, वाह सुमन वाह, पराए अजनबी घर में पराए लोगों से इतना दोस्ताना, ये सब डायलॉग्स थे। तो सलमान आके मेरा कॉलर पकड़ते हैं, सूट पकड़ते हैं, तो मैं ऐसे, फिर वो डायलॉग बाजी थी, वो मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था उसमें। और हमारे दो लोगों का, मेरा हुआ था और एक और लड़का था, मेरा सिलेक्शन मुझे मालूम पड़ा हुआ था, लेकिन फिर वो फाइनली दैट रोल वेंट टू अप टू टू मोहनीश बहल। तो वहाँ से थोड़ा मेरा लगा था कि हाँ सचमुच जो लोग कहते हैं कि गॉडफादर होता है तो गॉडफादर होना चाहिए, लेकिन मेरी कोशिशें एकदम बरकरार थी, चालू थी, मैं हमेशा कोशिशें करता रहा, करते करते करते फिर टेलीविज़न में करते रहे, बहुत सारे सीरियल्स मैंने किए, महाराणा प्रताप मेरा एक तरह से लास्ट सीरियल, उसके बाद

0: मैंने फिर टेलीविजन नहीं किया।
1: जी
0: महाराणा प्रताप था, अदालत, बहुत सारी सीरियल्स मैंने किए, कागज की कश्ती, तो
1: जी
0: अब तो नाम भी याद नहीं रहते कितने उस
1: इतने
0: जमाने में,
1: सारे
0: एटीज।
1: सीरियल्स कर
0: हाँ
1: लिए, गाने तो याद रहते हैं ना। अब आपने अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि जिंदगी में जो कुछ आता जा रहा है वैसे ही चलता जा रहा है,
0: जी
1: तो एक गाना अगर आप हमारे श्रोताओं को कुछ सुना दें और उनको एक डेडिकेट कर दें तो बड़ी खुशी होगी श्रोताओं को भी और हमको भी।
0: लेकिन मैं दो ही लाइनें गाऊंगा, उसके बाद आप ओरिजिनल गाना चला
1: जी
0: लीजिएगा।
1: ओरिजिनल जो गाए हैं वो गा देंगे। आप दो पंक्तियां।
0: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर

0: जिंदगी का साथ निभाता चला
1: क्या
0: गया।
1: बात है, मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत बहुत खूबसूरती से आपने गाया, और अब सुनते हैं यही गीत।
0: मैं जिंदगी

0: तो ये गाना तो आपने सुना दिया और आप सोच रहे होंगे कि हाँ हमसे बात करने के लिए बुलाया है या गाना गाने के लिए। तो विविध भारती की एक बात है कि यहाँ पर अगर कोई हुनरबाज आता है तो हम सारे हुनर का आनंद उठाते हैं और सब में बांटते हैं। तो ये
1: नहीं,
0: प्रेम
1: मुझे
0: का
1: भी
0: बात है
1: खुशी है
0: आपका।
1: बिल्कुल आपके साथ जिस तरह हम जो वार्ता कर रहे हैं, जो भी एक चर्चा कर रहे हैं,
0: जी
1: मेरे बारे में चर्चा हो रही है, मेरे सफर के बारे में चर्चा हो रही है, उसमें मेरा साथी तो आकाशवाणी विविध भारती है ही, और विविध
0: जी
1: भारती के श्रोताओं को
0: जी
1: खासकर, उनको भी तो गीतों का आनंद मिलना चाहिए, उनको भी हमारी बातों
0: जी
1: का आनंद आना चाहिए।
0: जी बिल्कुल। तो अब जब बातों का आनंद चल रहा है तो अभी तक तो आप मुंबई आए, फिर से दूरदर्शन यानी प्रसार भारती ने आपका हाथ पकड़ लिया, आपको बहुत सारे नाटकों का, धारावाहिकों का हिस्सा बनने का मौका मिल
1: जी
0: गया।
1: जी
0: अब आपने धारावाहिक कर लिए, उन्हें छोड़ दिया, लेकिन साथ साथ में कुछ फिल्में भी आपके हाथ में आ रही हैं और आप उन फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, एक
1: जी
0: एज ए एक्टर काम कर रहे हैं। तो वो जमाना क्या?

0: ऐसा था, आप काम करते थे तो कैसा लगता था, और आपने किन-किन जगहों पर क्या-क्या किरदार किए, ये बड़े प्यारे से प्रश्न है जिनका उत्तर हम जानना चाहते हैं।
1: असल में शुरुआती दौर में बेसिकली मेरे जहन में ऐसा बैठा था कि एज मैटर्स अ लॉट। जैसे मैं 20s में था,

0: करके अपनी डिसीजंस लेता था।
1: जी
0: जैसे मुझे मैंने प्यार किया नहीं मिली तो मेरा दिल थोड़ा सा दुख
1: टूटा
0: गया था।
1: होगा।
0: तो
1: हाँ
0: देवानंद साहब से मैं बहुत मुतासिर था, बहुत उनसे प्रभावित था। तो उनसे मुझे मेरे मित्र ने मिलवाया था देव साहब से, वो उनके असिस्टेंट चीफ असिस्टेंट थे। तो देव साहब बहुत प्यार करते थे, मुझे कश्मीरी करके बुलाते थे, ए
1: जी
0: कश्मीरी कम हेयर, कम कम व्हेन हैव यू कम, उस तरह से बहुत स्टाइल से बात
1: आप
0: करते
1: थोड़ा और इसको क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात करते
0: थे
1: समय देव साहब यहाँ पर आए थे, तो देवानंद को सुनना हम चाहते हैं, अगर थोड़ा और सुना
0: मैं
1: दे।
0: उनके अंदाज में बताऊंगा जो उन्होंने मुझे जवाब दिया
1: जी जी
0: था,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि एक फिल्म बन रही थी उस वक्त अव्वल नंबर।
1: जी
0: देव साहब का ऑफिस खीरा नगर सेंटरकुज में भी था,
1: जी
0: जहां मैं कई बार उनसे मिला भी था।
1: जी
0: उनका आनंद डबिंग भी था,
1: जी
0: और महबूब स्टूडियो में वहाँ भी एक उनका कमरा था जहाँ पे वो अक्सर बैठते थे बैंड्रा में। मुझे उन्होंने सूचना मिली तो मुझे उन्होंने वहाँ बुलाया था। वो शायद उसके बाद वो कहीं लंदन जाने वाले थे, लेकिन
1: जी
0: उससे पहले उन्होंने अव्वल नंबर फिल्म की उन्होंने बातचीत चल रही थी, तो मुझे भी उन्होंने वहाँ मिलने के लिए बुलाया। तो मैं वहाँ गया था, तो मुझे उन्होंने एक रोल ऑफर किया जो एक पुलिस वाले का रोल था।
1: अच्छा
0: तो वो मैंने उनसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहा, मैंने कहा देव साहब मुझे पुलिस वाले का रोल नहीं करना है, इट्स द बिगिनिंग ऑफ माय करियर, तो मैं एक पुलिस वाले का रोल करके मतलब
1: उसी
0: इट इज
1: लूप
0: नॉट
1: में
0: मुझे
1: फंस
0: मुझे हाँ ऐसा लग रहा था। उस
1: जाएंगे।
0: फिल्म में आमिर खान साहब कास्ट हुए थे, और उन्होंने मुझे कहा रायना आई एम रोल रियली सॉरी आई कान गिव यू दैट। मैंने उनको कहा था कि वो जो सेकेंड लीड रोल है जो नेगेटिव रोल था, तो मैंने कहा था वो मुझे आप दे दीजिए ना इस फिल्म के लिए, तो मुझे वो पुलिस वाला रोल नहीं करना है। कहता आई एम सो सॉरी रायना, आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस आदित्य अबाउट दैट रोल एंड आई हैव टू गिव इट टू हिम, आई कैन नॉट गो बैक ऑन माई प्रॉमिस, सो वी विल यू बेटर डू दैट वन, दैट्स अ गुड रोल ऑफ अ पुलिसमैन। तो
1: जी
0: मैं बहुत उनका फैन था, बहुत ज़बरदस्त फैन रहा हूँ उनकी फिल्मों का भी। तो इस तरह से उन्होंने मुझे जवाब दिया, तो
1: जी
0: मैं फिर थोड़ा सा मेरा मैंने कहा ये पुलिस वाला रोल मुझे नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं देव साहब, मैं आपके साथ में नेक्स्ट फिल्म में ही काम करूंगा। इस
1: ओह
0: फिल्म में पता नहीं ये क्या था मुझे मालूम नहीं, ये
1: जी
0: मेरी अब मैं अगर को कहूँ गलतियाँ थी, लेकिन उस वक्त मुझे सही लगता था। मुझे लगता था कि मेरा करियर का बिगिनिंग है, मेरा कोई है नहीं, मुझे वन ऑफ द लीडिंग रोल करना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव रोल में। नेगेटिव के लिए मेरा बहुत अच्छा एक
1: जी
0: शौक था कि मैं नेगेटिव रोल्स करूँ, मेरी
1: जी
0: आवाज़ और मेरी पर्सनालिटी और मेरी आंखों की वजह से मुझे ऐसा लगता था कि नेगेटिव
1: कर
0: रोल विल
1: सकते
0: सूट
1: हैं।
0: मी। तो उन्होंने जब वो कहा कि मुझे आदित्य को प्रॉमिस किया है, तो मेरा फिर दिल थोड़ा सा वो हो गया,
1: फिर से टूट
0: फिर थोड़ा सा वो हो गया कि
1: गया
0: हाँ मतलब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हाँ आपका कोई होना चाहिए,
1: जी।
0: देर हैज़ टू बी सम सपोर्ट। जैसे आप तो जानती हैं, इतिहास भी जानती हैं कि बहुत सारे लोगों को लॉन्च उनके घर वालों ने ही किया हुआ है, मैं किसी
1: जी
0: का नाम नहीं ले रहा,
1: जी
0: लेकिन किया तो है ना हमारा, मेरा
1: जी
0: ऐसा कोई था नहीं। कुछ लोगों को लेकिन भाग्य के अंतर्गत मिला भी है, जिनका कोई
1: जी
0: गॉडफादर नहीं था उनको भी मिला है,
1: जी
0: लेकिन मेरे साथ में ऐसा हुआ। फिर उसके बाद देव साहब से अक्सर मिलना होता था, मुझे कश्मीरी बुलाते थे, ए कश्मीरी, जो कि म्यूज़िक से भी मेरा रिलेशन था, तो इसलिए मैं म्यूज़िक के प्रोग्राम भी करता रहता था,
1: जी
0: मैं शोज़ भी करता रहता था,
1: अच्छा
0: जैसा आपने अंदाज़ा लगा एक्टिंग। और किशोर कुमार साहब हमारे वन ऑफ द गुरुज हैं,
1: जी
0: तो इसलिए जैसे वो एक्टिंग और सिंगिंग दोनों
1: सिंगिंग
0: करते
1: दोनों
0: थे, तो ऐसा ही हमारा भी
1: करते
0: कुछ वैसा ही था।
1: जी
0: लेकिन अब अच्छी अच्छी फिल्में कुछ मैंने वीर ज़ारा, मुझे
1: जी
0: यश चोपड़ा जी के साथ में काम करने का मौका मिला, और उस कव्वाली में उन्होंने अपने किसी मित्र से कहा था कि मुझे एक ऐसा एक्टर चाहिए जो जिसको म्यूज़िक का नॉलेज हो। तो मेरे साथ में यश जी के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स की गई फिल्म सिटी में, तो वहाँ उन्होंने मुझे आई वॉज कॉल्ड 10 बजे, मुझे उन्होंने फिल्म सिटी बुलाया था, तो मैं वहाँ ड्राइव करके आया, तो वो भी आए मेरे साथ में। तो यश जी से उन्होंने मुलाकात करवाई, तो उन्होंने मुझे पूछा अच्छा कश्मीर के हो, अच्छा, म्यूज़िक आता है वो ये, तो फिर उन्होंने मुझे वो उस वीर ज़ारा में उन्होंने मुझे कास्ट किया।
1: जी
0: उस कव्वाली है बहुत अच्छी, अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की गाई हुई, आया तेरे दर पे दीवाना, ये सुना
1: वो
0: सकती हैं
1: थोड़ा
0: आप
1: सा आप
0: श्रोताओं
1: गा
0: को।
1: के, नहीं आप थोड़ा, वही मैं कहने आई थी, आप थोड़ा गा के सुना दें तो आगे वो कव्वाली हम हमारे श्रोताओं तक पहुंचा देंगे।
0: जो बन

0: तो इस पे मैंने एक्टिंग की है, तो मुझे खुशी तो इस बात की थी कि यश चोपड़ा जी मेरा नाम लेके मुझे एड्रेस करते थे, रहना चलो अब तुम्हारा शॉर्ट्स ऑन है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। सरोज जी वहां से कोरियोग्राफ कर रही थी, तो हाँ पंकज जी रहना जी चलिए अब आपकी शॉर्ट्स लेने, तो इस तरह से नहीं ये लोग जब मुझे एड्रेस करते थे आई यूज टू फील रियली गुड अबाउट इट। एंड तो वो कवाली हुई उसमें, उस पर मैंने एक्टिंग की। उसके बाद कई और फिल्में, अभी मेरी एक फिल्म आने वाली है आमिर खान प्रोडक्शंस की, बंटवारा 1947, जिसका
1: अच्छा
0: नाम पहले लाहौर 1947 था,
1: अच्छा
0: अब उसमें सनी देओल और शबाना जी हैं, राजकुमार संतोषी डायरेक्टर हैं,
1: जी
0: आमिर खान प्रोड्यूसर है, मेरा भी बहुत अच्छा है उसमें किरदार है,
1: जी
0: सनी के साथ बहुत सारे अच्छे हमारे साथ के रोल्स हैं। वो 14 अगस्त को रिलीज़ हो रही है, वो देखिएगा। और एक मेरी वेब सीरीज़ ऑन एयर है जियो हॉट स्टार पे, लुटेरे,
1: अच्छा
0: और तनाव भी एक वेब सीरीज जो सुधीर मिश्रा ने की है, वो हंसल मेहता की प्रोडक्शन है।
1: जी
0: तो इस तरह की इस गेटअप में मेरे कुछ चीज़ें
1: आपको
0: हैं
1: आने
0: अवेलेबल।
1: वाली फिल्म और सीरीज के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई।
0: बहुत बहुत
1: और
0: शुक्रिया।
1: जी अभी है ना, हमारे बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और आपके जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, गढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हमारे सामने जो इतना बड़ा आर्टिस्ट बैठा है, जिसके पास में संगीत का भी ज्ञान है, आवाज का भी ज्ञान है, जिनके पास दिग्दर्शन का भी ज्ञान है तो निर्देशन का भी ज्ञान है,
0: जी
1: जिनको पता है कि किस तरह से किस अभिनय को करना है, जो नेगेटिव किरदार भी कर सकते हैं, जो मस्ती भरे माहौल में भी जी सकते हैं। इस सब का निचोड़ एक कुछ ऐसा हमारे श्रोताओं के लिए मिल जाए आपकी बातों से, आपके जज्बात से, ताकि हमारे जो श्रोता हैं जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं वो आपकी उन बातों का सहारा लेकर आगे बढ़ सकें। तो एक कोई संदेश, एक कोई बात, एक कोई सीख हमारे आगामी पीढ़ी के लिए, या जो श्रोता भी इस राह में संघर्षरत हैं वो भी ये काम कर सके।
0: मैंने जैसे पहले भी आपसे जिक्र किया कि ये जो कला क्षेत्र है, इसमें ये तो एक तपस्या की तरह है।
1: जी
0: कला क्षेत्र में जब तक इंसान तपस्या भाव से इस फील्ड में नहीं आता, तो वो भाग्य के द्वारा हो भी सकता है, बन भी सकता है, लेकिन है तो तपस्या।
1: जी
0: आपकी चीज़ों का सराहा तभी जाएगा जब

0: आप उस तरह का एक्ट करेंगे, उस तरह का गाएंगे, उस तरह का संगीत निर्देशन करेंगे,
1: जी
0: और उन सब चीज़ों के लिए तो स्टडी और दीवानगी की ज़रूरत तो होती है आपको,
1: बिल्कुल
0: मीडियम का कितना ज्ञान।

नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, हमारी दूसरी सभा अब आरंभ होती है। इसमें आप सभी श्रोताओं का स्वागत है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आज सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को और मजबूत बनाने की जरूरत बताई है। न्यायालय ने सुरक्षित परीक्षा केंद्र, बेहतर साइबर सुरक्षा, विशेषज्ञों की स्थायी व्यवस्था और मजबूत बुनियादी ढांचा विकसित करने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज मैहर जिले में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक बहनों के खातों में 2,148 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत 6-8% की विकास दर से आगे बढ़ रहा है। मछुआ कल्याण विभाग राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने प्रदेश में मत्स्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज मंत्रालय में मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति 2026 के अंतर्गत निवेशकों के साथ बैठक ली और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के जिलों के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को टाइम ऑफ डे टैरिफ व्यवस्था के तहत सोलर आवर्स यानी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली की खपत पर 20% तक की विशेष छूट का लाभ दिया जा रहा है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब युवा श्रोता सुने अपना कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की है।

दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आयुष सक्सेना और आप सुन रहे हैं युववाणी। दोस्तों, आज की शुरुआत मैं आपसे एक छोटे से सवाल से करना चाहता हूं। आपके फ़ोन में आखिरी बार कौन सी तस्वीर खींची गई थी? शायद दोस्तों के साथ कोई तस्वीर, शायद किसी खूबसूरत जगह की, शायद कोई सेल्फी, या फिर कोई ऐसी तस्वीर जिसे आपने बिना किसी खास वजह के बस इसलिए खींच लिया क्योंकि उस पल में कुछ ऐसा था जो आप अपने पास रखना चाहते थे। हमारी ज़िंदगी में तस्वीरों की जगह शायद हम खुद भी नहीं समझ पाते। कभी कोई पुरानी तस्वीर अचानक सामने आ जाती है और हम कुछ सेकंड के लिए वहीं रुक जाते हैं। चेहरा वही होता है, जगह शायद बदल चुकी होती है, लोग शायद बदल चुके होते हैं, लेकिन वह तस्वीर हमें उस पल में वापस ले जाती है। और शायद इसी वजह से आज का दिन थोड़ा खास है। आज 19 अगस्त है, यानी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। इस खास दिन पर फोटोग्राफी से जुड़े सभी लोगों, फोटोग्राफर्स, क्रिएटर्स और उन तमाम लोगों को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं जिन्होंने अपने तस्वीरों के जरिए हमें दुनिया को एक नए नज़रिए से देखना सिखाया। तो आज ज़रा रुककर सोचते हैं, आखिर एक तस्वीर में ऐसा क्या होता है कि वह कभी कभी हज़ारों शब्दों से ज़्यादा कह जाती हैं। दोस्तों, तस्वीर लेना आज हमारे लिए शायद दुनिया के सबसे आसान कामों में से एक है। जेब से फ़ोन निकाला, कैमरा खोला, क्लिक किया और तस्वीर तैयार। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब एक तस्वीर लेने की प्रक्रिया अपने आप में एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि हुआ करती थी। 19 अगस्त 1839 को फ्रांस में डेग्योरोटाइप फोटोग्राफिक प्रोसेस के बारे में सार्वजनिक रूप से जानकारी दी गई थी। इसी ऐतिहासिक घटना की याद में आज 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। यानी जिस चीज़ को आज हम सेकंडों का काम समझते हैं, उसके पीछे कई सालों की मेहनत, प्रयोग और तकनीकी विस्तार छुपा हुआ है। और तस्वीर खींचने की यही यात्रा अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है। पहले तस्वीर खींचना मुश्किल था, फिर कैमराज आए, फिर फिल्म कैमराज आए, फिर डिजिटल कैमराज और आज स्मार्टफोन कैमराज। तकनीकें बदलती गईं, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, इंसान की किसी पल को अपने पास रखने की इच्छा। हम तस्वीरें सिर्फ किसी चीज़ को याद रखने के लिए नहीं लेते, बल्कि उन पलों को अपने साथ हमेशा महसूस करते रहने के लिए लेते हैं। किसी दोस्त के साथ बिताई शाम, परिवार के साथ कोई त्यौहार, कॉलेज का पहला दिन, किसी सफ़र का आखिरी सनसेट, या फिर किसी ऐसे इंसान की तस्वीर जिसे देखकर आज भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तस्वीर समय को रोक तो नहीं सकती, लेकिन वह हमें उस रुके हुए पल में वापस ज़रूर ले जा सकती है। और इसी खूबसूरत एहसास के साथ चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। हम

तस्वीरों की बात आगे बढ़ाते हुए एक सवाल मन में आता है, क्या अच्छी तस्वीर लेने के लिए महंगा कैमरा ज़रूरी है? शायद नहीं, क्योंकि कैमरा वही देखता है जो उसके सामने होता है, लेकिन फोटोग्राफर वह देखता है जो शायद बाकी लोग भी नहीं देख पाते। एक ही सड़क पर 10 लोग चल रहे हों तो 10ों की नज़र एक जैसी नहीं होती। किसी को सड़क पर पड़ती हुई सूरज की किरणें दिखाई देती हैं, किसी को वहां से गुजरता हुआ कोई बुजुर्ग, किसी को बच्चों की हंसी और किसी को उस सड़क की खामोशी। यानी फोटोग्राफी सिर्फ कैप्चर करने का नाम नहीं है, यह उन्हें देखने का एक तरीका है। और शायद इसी वजह से आज फोटोग्राफी युवाओं के बीच इतनी लोकप्रिय है। आज लगभग हर हाथ में कैमरा है, लेकिन इसी के साथ एक नया बदलाव भी आया है। हम तस्वीरें सिर्फ यादों के लिए नहीं लेते, हम उन्हें शेयर भी करते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर स्टोरीज, रील्स और सोशल मीडिया की पूरी दुनिया। अब एक तस्वीर सिर्फ हमारी नहीं रहती, कुछ सेकंडों में वह सैकड़ों लोगों तक पहुंच सकती है। यह अपने आप में एक बेहद प्रभावशाली बात है। एक युवा अपनी फोटोग्राफी को दुनिया के सामने रख सकता है, अपना काम दिखा सकता है, अपनी रचनात्मकता के माध्यम से दर्शकों को आकर्षित कर सकता है, और यहाँ तक कि इसे अपने पेशे में भी बदल सकता है।

फोटोग्राफी आज फैशन से लेकर जर्नलिज्म तक, एडवर्टाइजिंग से लेकर फिल्म मेकिंग तक, ट्रैवल से लेकर कंटेंट क्रिएशन तक हर जगह दिखाई देती है। कभी-कभी हम किसी खूबसूरत जगह पर जाते हैं और वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले सोचते हैं, यहाँ मैं किस किस तरह की तस्वीरें ले सकता हूँ। पर शायद कभी-कभी हमें ये भी सोचना चाहिए, ये पल मुझे कैसा महसूस करा रहा है, क्योंकि हर खूबसूरत पल को पोस्ट करना ज़रूरी नहीं होता। कुछ पल सिर्फ हमारे लिए भी हो सकते हैं, और शायद फोटोग्राफी की सबसे खूबसूरत तस्वीर भी वही होती है जिसे देखकर हमें लाइक्स की संख्या नहीं याद आती, बल्कि उस पल की याद आती है, क्योंकि आखिरकार तस्वीर का मूल्य उसके लाइक्स में नहीं, उसकी याद में छुपा होता है।

दोस्तों, टेक्नोलॉजी ने हमारी तस्वीरों को बहुत बदल दिया है। आज हम सिर्फ तस्वीरें लेते नहीं हैं, उसे एडिट करते हैं, लाइट बदलते हैं, बैकग्राउंड बदलते हैं, कभी आसमान

मन बदल देते हैं, कभी अनचाही चीज़ें हटा देते हैं, और यहीं से टेक्नोलॉजी की कहानी एक कदम आगे बढ़ती है। क्योंकि अगर कोई टेक्नोलॉजी तस्वीर को बेहतर बना सकती है, तो क्या वह हमारे लिए एक पूरी नई तस्वीर भी बना सकती है? आज इसका जवाब है हाँ। और सिर्फ तस्वीर ही क्यों, आज टेक्नोलॉजी सवालों का जवाब दे सकती है, हमारे लिए लिख सकती है, कोड बना सकती है, आवाज़ को पहचान सकती है, वीडियो जनरेट कर सकती है, और कई ऐसे काम कर सकती है जो कुछ सालों पहले तक सिर्फ साइंस फिक्शन में देखते थे। इसी बदलाव का सबसे बड़ा हिस्सा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शायद आपने भी इसका इस्तेमाल किया होगा किसी कंसेप्ट को समझने के लिए, असाइनमेंट में मदद के लिए, कोडिंग सीखने के लिए, आइडियाज़ जनरेट करने के लिए, या सिर्फ जिज्ञासा में ये देखने के लिए कि आखिर ये क्या क्या कर सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, जब मशीन हमारे लिए इतना कुछ कर सकती है, तो हमारी ज़रूरत क्या रह जाएगी? क्या AI हमारी जॉब ले लेगी? क्या आने वाले समय में मशीन इंसानों से ज़्यादा सक्षम हो जाएंगी? या फिर क्या हम टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर पहले से ज़्यादा कुशल बन सकते हैं? शायद इन सब सवालों का जवाब डरने में नहीं, बल्कि समझने में छिपा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से बचकर हम भविष्य में नहीं जा सकते, हमें उसके साथ चलना ही होगा। सवाल सिर्फ इतना है, हम उसके साथ चलेंगे या वह हमें चलाएगी? आज का युवा इस बदलाव के बिल्कुल बीच में खड़ा है। एक तरफ AI हमारे लिए अवसरों के नए दरवाजे खोल रही है, और दूसरी तरफ कुछ पुराने तरीके और जॉब्स को बदलने की चुनौतियाँ भी सामने हैं। लेकिन शायद हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि AI मेरी जॉब लेगी या नहीं, हमें पूछना चाहिए AI के दौर में मुझे कौन कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी का इतिहास हमें एक बात सिखाता है, जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ काम ज़रूर बदलते हैं, लेकिन साथ ही नए काम और नई संभावनाएं भी पैदा होती हैं। आज एक छात्र AI की मदद से किसी कठिन कंसेप्ट को आसान भाषा में समझ सकता है, एक प्रोग्रामर कोडिंग में AI का इस्तेमाल कर सकता है, एक कंटेंट क्रिएटर अपने विचारों और कल्पनाओं को बढ़ाने के लिए इसकी मदद ले सकता है, एक फोटोग्राफर इसके इस्तेमाल से फ़ोटो एडिटिंग और रचनात्मक प्रयोगों में भी कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क है, AI हमारी मदद कर सकती है लेकिन हमारी जगह सोच नहीं सकती, कम से कम उस अर्थ में नहीं जिस तरह इंसान सोचता है। क्योंकि इंसान के पास अनुभव है, भावनाएं हैं, कल्पना है, और सबसे बड़ी बात अपना नज़रिया है। यही चीज़ हमें अलग बनाती है। AI आपको हजारों शब्द लिख के दे सकती है, लेकिन उन शब्दों में आपकी ज़िंदगी का अनुभव नहीं होगा। AI एक सुंदर तस्वीर बना सकती है, लेकिन वह तस्वीर से जुड़ी आपकी यादें नहीं बना सकती। AI आपको कोई विचार दे सकती है, लेकिन उस विचार को सार्थक बनाने के लिए आपकी सोच ज़रूरी है। इसलिए शायद आने वाले समय में सबसे ज़रूरी स्किल सिर्फ ये नहीं होगी कि AI को कैसे इस्तेमाल करें, बल्कि यह भी होगी कि AI के जवाब पर कब भरोसा करना है और कब सवाल पूछना है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग, और इसी के साथ क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लगातार सीखते रहने की आदत। क्योंकि टेक्नोलॉजी हर कुछ साल में बदल सकती है, लेकिन अगर हमने सीखना सीख लिया तो हम बदलाव के साथ खुद को बदल सकते हैं, और यही आज के युवा की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। AI को अपना प्रतिद्वंदी अपना सोच को दूसरों पर निर्भर मत होने दीजिए। क्योंकि कोई मशीन कितनी भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो जाए, एक बेहतर सवाल पूछने वाला इंसान हमेशा आगे निकल सकता है।

तो दोस्तों, आज की इस मुलाकात में हमने एक ऐसी चीज़ के बारे में बात की जो हमारे बीते हुए पलों को संभाल कर रखती है, और फिर उस टेक्नोलॉजी की बात की जो हमारे आने वाले कल को बदल रही है। एक तरफ तस्वीरें हैं जो हमें पीछे मुड़कर देखने का मौका देती हैं, और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हमें आगे देखने के लिए मजबूर कर रही हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ के बीच में एक चीज़ कॉमन है, इंसान। कैमरा हमारे हाथ में है, एआई हमारे सामने है, लेकिन इन दोनों का इस्तेमाल किस तरह करना है ये फैसला हमारा है। इसलिए अगली बार जब कैमरा उठाएं तो सिर्फ ये मत सोचिए कि तस्वीर कितनी सुंदर आएगी, एक बार ये भी सोचिए कि इस तस्वीर के पीछे कहानी क्या है। और अगली बार जब एआई का इस्तेमाल करें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि वह आपके लिए क्या कर सकती है, यह सोचिए आप उसके साथ मिलकर क्या क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी को आसान बना सकती है, लेकिन उसे मीनिंगफुल बनाना अभी भी हमारे हाथ में है, और शायद यही आज की हमारी

अरे छोटी सी बातचीत का सबसे बड़ा संदेश है, अपनी तस्वीरों में अपने पलों को बचाकर रखें और अपने सोच में भविष्य को बनाते रहिए। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के खास दिन पर आप सभी को एक बार फिर ढेरों शुभकामनाएं। खुश रहिए, सीखते रहिए, नए अनुभव लेते रहिए और ज़िंदगी के खूबसूरत पलों को सिर्फ कैमरे में नहीं अपने दिलों में भी ज़रूर कैद कीजिए। इसी खूबसूरत विचार के साथ आज के युववाणी कार्यक्रम से मुझे इजाज़त दीजिए। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
1: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: मीडियम वेव 374.5 मीटर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। फिल्म संगीत कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए समीर का लिखा गीत जतिन ललित के संगीत निर्देशन में, आवाज रेमो फर्नांडिस और जसविंदर नरूला की है और फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मन्नापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
3: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मन्नापुरम फाइनेंस, जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
2: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मन्नापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
3: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मन्नापुरम फाइनेंस, जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
2: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मन्नापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
3: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मन्नापुरम फाइनेंस, जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
2: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल।
4: मैंने प्यार किया।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मन्नापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
3: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मन्नापुरम फाइनेंस, जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
2: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल।
4: आकाशवाणी जबलपुर से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए जावेद अख्तर जावेद अख्तर का लिखा गीत, जतिन ललित के संगीत निर्देशन में, आवाज़ अभिजीत की है और फिल्म का नाम है दिल लगी।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए रब्बी की आवाज़ में गुलजार का लिखा गीत। संगीत दिया है AR रहमान ने और फिल्म का नाम है जब तक है जान।

अभी आप फिल्मी नगमे सुन रहे थे मीडियम वेव पर, ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है हमारे आज और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। आज रात 9:15 पर स्पॉटलाइट और चर्चा का विषय है रात 9:30 पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। अब से कुछ देर बाद यानी शाम 6 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, 6:30 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हमारे कलाकार हैं विनोद कुमार सेन। सुगम संगीत 6:45 पर कलाकार हैं दिलीप कोरी। शाम 7:21 पर किसान भाइयों का नियमित कार्यक्रम होगा कृषि जगत। इसके अंतर्गत अमरूद के बागों की देखभाल, इस विषय पर जानकारी देंगे श्री बी के वर्मा। सुर्खियों में रात 8 बजे इसे हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे। रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग किरवानी। और फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मनभावन रात 10:30 पर। ये थे हमारे आज के कार्यक्रम और अब कल के कार्यक्रमों का विवरण।

0: कल प्रातः 10:10 पर विश्व दर्पण और स्पॉटलाइट रात 9:15 पर यह कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रातः 8:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, किसान वाणी शाम 7:30 पर और सुर्खियों में रात 8:00, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना 6:05 पर, 6:30 पर चिंतन और श्री रामचरितमानस का 6:35 पर, 6:45 पर कृषि समेकी के अंतर्गत सोयाबीन फसल में कीट नियंत्रण, प्रातः 7:20 पर गुड मॉर्निंग जबलपुर। लोक संगीत के कार्यक्रम लोक रसधार में कल हमारे कलाकार हैं डॉक्टर सिया शरण जोशी और अर्जुन सिंह ध्रुवे कल प्रातः 9:00। 10:05 पर वंदे मातरम गौरव गान की 1:30 और दिन में 11:00 से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। दिन में 1:30 पर लोक संगीत और सुगम संगीत 1:45 पर और कार्यक्रम युववाणी शाम 5:00। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान है। ये थी हमारी आज और कल प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
2: नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आज सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को और मजबूत बनाने की जरूरत बताई है। न्यायालय ने सुरक्षित परीक्षा केंद्र, बेहतर साइबर सुरक्षा, विशेषज्ञों की स्थायी व्यवस्था और मजबूत बुनियादी ढांचा विकसित करने पर जोर दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने इस बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मैहर जिले में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक बहनों के खातों में 2,148 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत 6-8% की विकास दर से आगे बढ़ रहा है और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के जिलों के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को टाइम ऑफ डे टैरिफ व्यवस्था के तहत सोलर आवर्स में सुबह 9:00 से शाम 5:00 तक बिजली की खपत पर 20% तक की विशेष छूट का लाभ दिया जा रहा है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सबदंग। सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
3: वाह क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
3: वाह ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई, योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीमबाई मानिकपुरी।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
2: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
3: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
2: जी।
3: अगला संदेश हमें मिला है राजाजी नगर बेंगलोर से एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
2: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
3: श्रोताओं इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
2: जी।
3: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं।
2: आज
3: हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
2: जी।
3: तो विमलेश जी आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था
2: जी। अजीत जी मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
3: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने
2: जी।
3: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही
2: जी।
3: शाम ढलने लगी थी तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
2: श्रोताओ यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
3: श्रोताओ इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
2: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
3: अरे वाह ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
2: अजीत जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
3: क्यों?
2: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं, तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता।
3: जी विमलेश जी, श्रोताओं एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
2: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है
3: जी।
2: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए
3: जी। तो श्रोताओ ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
3: श्रोताओं आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीआरटी को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
2: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
3: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
4: संध्या को हम खेलने जाते,
3: मित्रों संग आनंद मनाते,
4: मित्रों संग आनंद मनाते,
3: कभी दौड़ना और उछलना,
4: कभी दौड़ना और उछलना,
3: कभी गेंद के खेल खेलना,
4: कभी गेंद के खेल खेलना,
3: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
4: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
3: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
4: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
3: गिल्ली डंडा सबको भाता,
4: गिल्ली डंडा सबको भाता,
3: सतोलिया भी मजा दिलाता,
4: सतोलिया भी मजा दिलाता,
3: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
4: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
3: या हंस हंस के बातें करना,
4: या हंस हंस के बातें करना,
3: जब अंधेरा होने लगता,
4: जब अंधेरा होने लगता,
3: सबको कुछ डर लगने लगता,
4: सबको कुछ डर लगने लगता,
3: तब हम घर को वापस आते,
4: तब हम घर को वापस आते,
3: कल खेलेंगे यह कह जाते,
4: कल खेलेंगे यह कह जाते।
3: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

0: कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ। और जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए। उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।
1: ऐसा ही एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता ये है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वो निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।

0: कंगारू इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
1: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया वो देखने में कैसे लगते हैं।
0: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
1: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
0: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है, बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
1: हाँ ये तो है, आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
0: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है, ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
1: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है, यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
0: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोस लेते हैं, और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
1: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
0: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
1: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
0: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
1: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया।

0: कॉलोनियां। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहां के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
1: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
0: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
1: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
0: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटू नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटू पार्क की फिल्म बनाने आए हैं, और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
3: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
4: लेकिन मिस्टर नीजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया, और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
2: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
3: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
4: कैसे चित्र?
3: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
2: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
3: क्यों नहीं, अभी चलिए।
2: चलिए।
3: आई
2: देखो वेलिंडा, ये अजगर का चित्र।
4: अरे, इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
2: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
4: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो, आदिवासी का ये चित्र।
2: मिस्टर नीर जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
3: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
2: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें। गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए।
2: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
3: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है इल्किर।
2: अच्छा अच्छा।
3: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
4: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
3: जी।
2: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई, और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
4: वाकई कमाल है।
3: अभ्यास से गलतियां नहीं होती, हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
2: सचमुच?
4: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
2: हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
3: लीजिए, ये आपका हुआ।
2: इसकी कीमत?
3: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
4: सच?

0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
1: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं, वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते, और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं। एक तरह से अच्छा भी है। आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
2: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। लोक संगीत। हमारे आज के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं विनोद कुमार सेन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आज हमारे कलाकार हैं विनोद कुमार सेन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी जबलपुर से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत और इसमें आज हमारे कलाकार हैं विनोद कुमार सेन। कार्यक्रम के अंत में सुनिए इन्हीं के स्वर में ये विवाह गीत।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। इसमें आज हमारे कलाकार थे विनोद कुमार सेन। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत। कलाकार हैं दिलीप कोरी। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए ये भजन।

आकाशवाणी जबलपुर से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत और हमारे कलाकार हैं दिलीप कोरी। कार्यक्रम के अंत में सुनिए सूरदास का ये भजन।

0: इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं, थोड़ी देर में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4-लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
2: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोक नीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। राष्ट्रपति ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नागरिकों को सूचित करने और उनसे जुड़ने के लिए करें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। इससे पहले उपराष्ट्रपति आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिससे ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णनगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक पेश की जाए। गृहमंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। कोलंबिया में 7.4

0: and said that both the sides have identified key follow-ups to be taken forward in the future. Iran's Armed Forces Chief of Staff, Major General Ali Abdullahi, has warned that countries on the southern shores of the Persian Gulf should not assist or facilitate U.S. military forces. The Armed Forces Chief said Tehran is closely monitoring military activity at regional bases. His warning comes as the U.S.-Iran conflict enters its fourth month, while the Pentagon evaluates its military footprint in West Asia with a view to reducing its presence. And in FIH Men's Hockey World Cup, crucial Pool D encounter between India and arch rivals Pakistan is underway in Amstelveen, the Netherlands. India is leading 2-0 when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मैहर से लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी की। नीट यूजी 2026 मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को मजबूत करने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन में डिंडौरी जिला देश में पहले स्थान पर रहा और प्रदेश में वर्ग 3 के 1040 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मैहर जिले में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक बहनों के खातों में 2,148 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। हर बहन के खाते में रक्षाबंधन के 250 रुपए के शगुन सहित कुल 1,750 रुपए पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आम सभा को संबोधित किया।
1: श्री राम वन गमन पथ और 3,000 करोड़ से ज्यादा के काम चित्रकूट पे भी हमने मंजूर किए हैं और माता मैहर के लोक का भी पहले फेज का भूमि पूजन आज यहाँ हुआ है। कैबिनेट की बैठक में ये लाडली बहना चुनाव तो 2028 में है, लेकिन हमने फिर 5 साल आगे तक देने के लिए कल निर्णय किया है। बहनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। अभी तक 65,000 करोड़ रुपए की राशि आप तक पहुंचाई।
0: इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इससे पहले उन्होंने मां शारदा देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की और स्वसहायता समूहों की बहनों के उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोक नीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात के दौरान ये बात कही। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को अपने निर्णयों में विवेकपूर्ण, अपने आचरण में करुणामय और सत्यनिष्ठा के प्रति अडिग रहने की सलाह दी। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी के साथ ही जनता की निष्पक्षता, विनम्रता और समर्पण के साथ सेवा करने का गहरा दायित्व भी आता है। नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आज सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को और मजबूत बनाने की जरूरत बताई है। न्यायालय ने सुरक्षित परीक्षा केंद्र, बेहतर साइबर सुरक्षा, विशेषज्ञों की स्थायी व्यवस्था और मजबूत बुनियादी ढांचा विकसित करने पर जोर दिया। न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव से हलफनामा दाखिल कर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देने को कहा है। इसके साथ ही नंदन नीलकणी समिति के सुझाए बदलावों को भी इसमें शामिल करने के निर्देश दिए हैं। सिंहस्थ महापर्व 2028 की तैयारियों के तहत आज उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण और विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने नानाखेड़ा शांति पैलेस, शांतिनगर नीलगंगा और शांतिनगर मंछामन इंदौर रोड का निरीक्षण किया। संभागायुक्त ने सड़क का लेवल एक समान रखने और निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा निर्धारित समय में काम पूरा करने के निर्देश दिए।

0: साथ ही सड़क से मिट्टी हटाने, गड्ढों का भराव तथा नाले के पानी की उचित निकासी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत 6-8% की विकास दर से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है और भारत हर साल करीब 130 अरब अमेरिकी डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में अधोसंरचना के क्षेत्र में किए गए कार्यों के बारे में बातचीत की।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जो देश के लिए बुनियादी ढांचा है, देश के लिए एक फाउंडेशन है, वो प्रोजेक्ट्स 62 रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, 38 हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, 12 मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं। ये सारे के सारे स्ट्रेट अवे हमारे मिडिल क्लासेस और यूथ को बेनिफिट करने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। इससे नई अपॉर्चुनिटीज बनेंगी।
0: प्रदेश के डिंडौरी जिले ने प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में देश में पहला स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जुलाई महीने में देश के 100 चयनित जिलों में डिंडौरी को नंबर 1 रैंक मिली है। जिले में कोदो कुटकी, प्राकृतिक खेती और जैविक प्रमाणीकरण को बढ़ावा देकर किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए 1040 पदों पर भर्ती का सुनहरा मौका है। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने वर्ग 3 के तहत सब इंजीनियर, ड्राफ्टमैन, प्रयोगशाला तकनीशियन सहित कई पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इच्छुक उम्मीदवार 18 अगस्त से 1 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती परीक्षाएं 6 अक्टूबर से शुरू होंगी। मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग के राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने आज भोपाल में मत्स्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों के साथ बैठक की। मंत्रालय में हुई बैठक में मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति 2026 और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न जलाशयों में मत्स्य निवेश, जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और निवेशकों की समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ। राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार मत्स्य क्षेत्र को केवल उत्पादन तक सीमित न रखकर इसे उद्योग और रोजगार का मजबूत माध्यम बनाने के लिए काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने निवेशकों को हर संभव सहयोग देने की बात कही। वहीं लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा है कि नवाचार तभी तक सार्थक हैं जब वे प्रयोगशाला से निकलकर निर्माण स्थल तक पहुंचें और उसके अच्छे परिणाम मिले। उन्होंने ये बात आज भोपाल में सतत अधोसंरचना कार्यशाला के दौरान कही। मंत्री ने नई तकनीकों को पहले परीक्षण और पायलट परियोजनाओं में आजमाने के बाद बड़े स्तर पर अपनाने पर जोर दिया। कार्यशाला में टिकाऊ सड़क निर्माण, नई निर्माण सामग्री, कचरे के उपयोग और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों पर विशेषज्ञों ने चर्चा की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच के दशहरा मैदान स्थित टाउन हॉल में युवाओं को एकजुट करने और मार्गदर्शन देने के उद्देश्य युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्योपुर जिला कलेक्टर सभागार में सांसद शिवमंगल सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में सांसद ने मुख्य सड़क के अप्रोच रोड की सुविधा से वंचित गांवों के लिए जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। अशोकनगर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में मलेरिया व डेंगू की रोकथाम के लिए घर घर लार्वा सर्वे, जांच और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अनूपपुर में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जन्म जयंती पर उनके सामाजिक न्याय व मानवता के संदेश के प्रसार के लिए समरसता संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। बड़वानी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उल्लास अभियान के तहत ADR भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। झाबुआ में आकांक्षी विकासखंडों में विकास कार्यों की समीक्षा व बेहतर मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों को डिजिटल टूल किट का 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। बैतूल में कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवड़े ने कुकरू हिल्स स्टेशन पर कॉफी प्लांटेशन को बढ़ावा देने और जल संरचनाओं के एकीकृत प्लान के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। सीहोर में इछावर तहसील के मोगरा रोड पर बारिश के पानी से भरे गड्ढे में नहाने उतरे 3 बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें 2 सगे भाई थे। और खंडवा जिले में संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर समरसता संकल्प अभियान और समरसता यात्रा का आयोजन कल 20 अगस्त से 10 सितंबर तक किया जाएगा। और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के जिलों के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को टाइम ऑफ डे टैरिफ व्यवस्था के तहत सोलर आवर्स सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बिजली की खपत पर 20% तक की विशेष छूट का लाभ दिया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मैहर से लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी की। नीट यूजी 2026 मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन में डिंडौरी जिला देश में पहले स्थान पर रहा और प्रदेश में वर्ग 3 के 1040 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूँ धान का खेती करता हूँ। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो 1 साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। DBT के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: मीडियम वेव 374.5 मीटर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। किसान भाई अब सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनबे बारे सभी किसान भैया बहनन को जानकी भौजी की दोई हाथ जोड़ के राम राम। भज्जा रो देखो तो जमाने भर में जांगन तांगन इतनो बसकारो बरसो है ये टेम पे के का बतजे के उते को हर ही आदमी ऐसो हलाकान होगा और अपने ना देखो। भज्जा रो बसकारी की बाट हेरा थेरत अपने ना के किसानन की तो हालत खराब हो गई। उते इतनो बरसो के उते आदमी हलाकान होगा इतने अपनो बिल्कुल सूकड़ रोतो सो अपने तक की हालत खराब हो रही थी। अब जाके तना सावन की जा झिर झमकाइन से तनक अपने किसानन की सांस में सांस आ जा है। कैसे कि जिन किसान भज्जहरन ने तन कैसे झलन हो माए उबेरा उ टेम के पेलों पेल झरा जो ने एक गिरे थे उन झलन हो देख के झट से जोन अपने खेतन में धान के रोपा लगा दे थे। बे तो बिल्कुल ऐसो मौसम को जो मिजाज अभी जोन चल रहा हो तो कसू रोज पहलाऊँ उ मिजाज हों देख के मौसम के रो धरे थे किसान भज्जहरे कि अब नैया ने का होने हमारी धान को और हमारे खेतन को और हमारी जोन फसलें दूसरी बोई उनको कैसे धान के रोपन को और उनको ज़्यादा दुख हा तो इसे के भी रोपा सूखन लगी थे धरती अगल बगल से पटन लगी थी इसे के पानी बिल्कुल नहीं गिर रहा तो हाँ जी के पानी को सुबी दो हाथों से ना उन्हें तो बाने थी चिंता अगिन जो को ऊ परिवार के भरोसे तो को तो प्राण बिल्कुल गरे में अटक गए थे ऐसी दशा हो गई थी अब। सो हम तो कहते भज्जहरो कि कतनन्य के देर है अंधे नन्य भगवान सब पे अपनी नज़र धरे रहते अकेले जय हो अपने भोले भंडारी की सावन में उनने अपनी कृपा कांवरियों के ऐसो लगा जैसे गंगा जल से कर दई हो गए कांवरिया भज्जा ने देखो कैसे दते हैं पूरे सावन के महीना में हर सोमवार हो ऐसो जल चढ़ा रहे हैं जहाँ देखो जहाँ जाई खबर मिला। सो भोले बाबा कहतुनिया तुम्हारे तो इतना चढ़ावे लगे हो चलो कछु हाँ।

सुई तो मैं लौट के दाए दी। सो भोले भंडारी ने ऐसी कृपा करी भज्जा के, देखो अब ऐसे उम्दा किसानन के अपने भज्जा हरन के खेत भरन लगे हैं, अच्छे बढ़िया उम्दा भर गए हैं। और देखो जो भी रोपा लगे थे सो भी अच्छे खिल उठे हैं। अब सभी किसान हो या सो लगन लगो, जैसे भज्जा हरन हो जीवन दान सो में लगा हो किसानी के संगे संगे। और देखो मेड़ पे ठाड़े हो कि जब चार तरफी नजर घुमाओ अपनी, अरे ऐसी फसलें लाख उठी हैं कि राम दही भज्जा हरो फसलें देख के आत्मा और आंखें दो ही ऐसी जुड़ा सी जाती के का बता जी। और अब देखो सोने पे सोहागा जो के भज्जा हरो सावन को महीना चला ही रहो है। सो कहूँ देखो गांव भरे में अपने कोनों के कजरी गाई जा रही तो कोनों के भोले बाबा के भजन गाए जा रहे, मने अब खुशियाँ भी दो ही प्रकार से मनाई जा रही। कछु अपनी फसल खेती हो देख के खुशी मना रहे, कछु सावन को महीना है सो अपने वो महीना को अच्छो आनंद उठा रहे भजन पूजन और गा बजा के। सो हमारे ना सोई अबे का भाव तो एक दिन हम भी आए थे आराम अवतार भज्जा अपने हमारे ऊपरा बारे सुबह सो उनके तैसे हमारे थे बुलग गाओ तो कहने लगे कि जान की भौजी आज तना का आज जो हमारे थे आज सोमवार है सो सोमवार के दिन आ गए थे हम उतना सो सोमवार को उनके तहत तो भजन सो ते हम चले गए गावे बजावे को हम की हमें तनों का आनंद ले लीजिए अपने ईसा उनको घर है तो कछु कर नहीं पाती है। अब ये ढोर बछेरू घर किसानी खेती में लगे रहो भज्जा के संगे सो कौन टाइम मिला था अलग से करवे को स्वामी की चलो भज्जा के ना हो रहा सो चले दीजिए सो तई हम अपनों भी अपनों आनंद ले ले भी सावन के महीना को और भजन गावे बजावे को। सोते हम गए अच्छो बढ़िया आनंद आओ भज्जा रहो सो कौन तो अच्छो भोले बाबा के भजन गा बजा रहो तो कौन भोले बाबा के भजनों पर अच्छो खूब झूम रहो तो है। और कछु जने गावे बजावे वारन की फोटो उतारवे में लगे थे, का है आजकल भज्जा भी सावरन के लेंगे मोबाइल रथ हैं सुबह कौन फोटो उतारन लगा था तन कहीं में कौन अपने वीडियो से बनाऊ लगा आज कछु गाद मन हो कहा ही को ज्यादा शौक चल रहा हूँ सुबह यही में लगे रहा तो उन्हें नन्या के जो भजन चल रहा हो कार चलो भी तो अपनी भी अपनी मस्ती में रह सुमत ले। हमने जो देखो कि सब अपने अपनी मस्ती में मस्त थे बढ़िया अपनों सब आनंद ले रहे थे। सो भज्जा रो इतना ही में कहा हो कि राम अवतार भज्जा अपने जमाने की कोनो अच्छी बड़ी उमदा उमदा सी फोटो निकाल के घर से ले आए भीतरे से भौजी से मांग के। सो वे दिखाऊँ लगे सब रन को सबरे पूछन लगे कि अरे भज्जा का ले आए का अरे फोटूंगा तना पुराने हमारे जमाने की हाँ तीन सुबह ले आए तना देखो काहे ऐसो तो बोलो बेटा भे को कबू टेम नहीं मिलत को हो आज तना टेम लो समझे चलो सबको बता दीजिए। सो फोटूंगा देने दिखा हुए ले आए हैं हम सुबिन्ना साहब ने फोटो देखी भज्जा हरो सो सबरे बड़े प्रसन्न भाई कहने लगे कि अरे भज्जा कितना उम्दा है वो जमाने में ऐसी फोटो उतरती हैं देखो बरन बरन की देखो कितने अच्छे लग रहे भज्जा हैं। सो फोटो कैसे उतरती सो जा सबरे पूछन लगे। सो वही फोटूंगन में एक वो कैमरा वाली फोटो निकल आई जोन से फोटो उतराती कैमरा से सो ऊह देख के तो सबरे बहुत प्रसन्न भाई कह रे ऐसे उतराती फोटो ईसे उतराती जा हती पहलों की मशीन दी से फोटो उतराती। अब आजकल तो ऐसा कहानू को ऊँ ज़्यादा ऊँसो नहीं लगा देख के अचरज कैसे सबके हाथन में मोबाइल रहा सुन में फोटो उतरन लगी आजकल। सो सबरे भज्जा उनको कैमरा की फोटो देख के भारी प्रसन्न भाई कि ऐसे होते। अब राम अवतार भज्जा की बरन बरन की फोटो देख के सबको जोई समझ में आओ कि अपनी पुराने जमाने की परिवारन की अपने हंसी खुशी के अवसरन की फोटो बना के उन्हें अपनी यादों के रूप में सजा के धर सकत हैं सबको और आज अपने जोन भी मोबाइल है उनसे देख सकत। और जब कबूं मन होए सो उन फोटोगन हो देख के अपने जमाने की अच्छी भज्जा सबरे ताजी कर लो यादें और जो ही तो करत हैं अपने नन्हे हल्के हल्के की कौन दिखाऊ थे कब देखा थे सो कैसा छोलन लगा जिया सुलत जैसे वही जमाने में पहुँच गए हुए उतना ही हल्के अपन हो गए हुए वही जमाने की उम्र के हो गए हुए सो कितना अच्छा लगा। सो जो है भज्जारों के फोटो अच्छी जो ना अपनी पुरानी धनी रहती हैं सो जमानों को तो कछु देख भी सीख भी खूब मिलता ही है उन फोटोगन से कहो तो भज्जा बहुत कछु जानू और समझो जा सका थे कि पहले का हो तो कैसो चलत तो कैसे लगाते सब कैसो का दिखा तो सो जे सब यादों के रूप में बन जाती। अब भज्जा रो तुम और सोचो कि भौजी भजन गाउत बजाऊत फोटोगन पे तुम कहाँ से आ गई। सो काय भज्जा रो का आज जरूरी नहीं है फोटोगन की और ऊ के जमाने की चर्चा करवो। सो सुनो तुम्हारा हो न हो पता सो हम बताए देते हैं कि आज विश्व छायांकन दिवस सूर्य है तो बताओ काय ने कर भी फोटोगन की चर्चा हम तुम्हारा से सही करी कि नहीं करी है। अकेले अब तुम लोग देखो ज़्यादा नाराज नहीं हो जो हमारे ऊपर अब का है भजन तो चला ही रहो भज्जा के ना हम सोई अपने देवी सिंधाई जब भज्जा हम लोवा ले आए हैं अपने संग बेसोई गए हैं थे आज एक भजन सो न हो भज्जा रो नाराज हम कहते हैं भज्जा तना हो जा शुरू इन्होंने तुम सोई एक अच्छो उमदा सो भोले बाबा को भजन सुना दो।

0: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
1: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
0: क्या, कैसे?
1: अरे

0: मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
1: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
0: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: कहा बात है भज्जा हरो, कितनों उम्दा भोले बाबा को अपना जो भजन सुनाओ अपने देवी सिंह दाहिया भज्जा ने। भोले बाबा की भक्ति देख के और उनकी भक्ति करके आज भज्जरो सभी को धन्य हो वो चाहत है। जैसे राम की, प्रभु राम की भक्ति करके अपने तुलसी बाबा राम बोला से गोस्वामी तुलसीदास बने थे। अकेले तुलसीदास बनने के पीछे भज्जरो ऐसा ही नहीं हती कि बे बस उन्हें उनकी भक्ति करी और तुलसीदास जी से मतलब राम बोला से तुलसीदास बन गए। उनके पीछे उनको बहुत त्याग और तप हतु और अपने आराध्य प्रभु राम के प्रति ऐसी भक्ति कि पूरी दुनिया में चर्चित रामायण जैसो महाकाव्य और तुलसी हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने लिख दो। सोचो और भी उनने बिना पत्रिका हैं और कुल के उनने वे ग्रंथ अपने लिखे चार पांच जो उन जगत प्रसिद्ध हैं। और रामायण तो ऐसी के जी घर में नहीं हुए तो कह के वो घर घर नहीं कहा होती है। हनुमान चालीसा तो ऐसा है कि भज्जा आज हर को की जुबान पे बिल्कुल धरो जरत हनुमान की चर्चा करी और चालीसा आदमी को शुरू हो जात। ऐसी चालीसा और ऐसी रामायण भी लिख गए कि उसे सबको सीखें भी मिल रही हैं और आदमी अपनी भक्ति भाव में भी बिल्कुल मगन हो जात उनके नाव पे। आज भज्जा उनकी जो ग्रंथ है और हनुमान चालीसा है ये कलयुग में हर घर की समझ लो के आन बान शान और प्राण बन गए। और आज गांव होवे भज्जा चाहे शहर होवे को के ना कोनो शुभ कारज होवे चाहे कछु भी छोटो बड्डो काम होवे सबसे पहला सबको अपने सुविधा के हिसाब से काकरत है। जाए कल लगत पहलू तो सुनने लगते कई सत्यनारायण की कथा कलू आवाज कल कथा कम अखंड पाठ ज़्यादा हो तो कई अखंड रामायण करवा लो ना फिर कोनू न कोनू छोटे रूप में अपने हिसाब से टेम और सुविधा के हिसाब से आदमी सुंदर कांड तो करा ही ले कैसो। तो देखो उन्हीं के मतलब इतने बड़े साहित्य और इतने बड़े ग्रंथ लिखवे के बाद घर घर में आज हूँ ऐसा पूछो जा रहा हो कि हर आदमी अपने हर अच्छे और शुभ काम में पहलो उन्हों सुमरों वो चाहत है ई के बहाने अपने भगवान प्रभु श्री रामचंद्र को सबको याद कर ले थे। उनने भज्जरो महान ग्रंथ में काका नहीं लिख दो कौन कौन के लाने नहीं सीख दे दिया है। परिवार हो समाज हो चाहे देश दुनिया हो सब जगह से लेकर जीवन के हर क्षेत्र की बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी हर प्रकार की उम्दा सीख उनने अपने काव्य के माध्यम से रामायण के माध्यम से सबको दे दी अपन सब के लाने। और जो को ऊ के हिसाब से चल रहे सो देखो को तो कल्याण ही हो रहा समझ लो। तुलसी बाबा ने बड़ी सहजता और सरलता से जीवन जीवे की कला हो रामायण के हर पन्नों पे ऐसे उकेरे हुए ऐसे चुन चुन के मोतियां घाई लिख दाओ है के पढ़वे बारे भी सोच के रह जात के बाबा ने कैसे लिखू जे जो इतने करीने से इतने सजा के इतनों सोच के और इतनी मतलब सच्चाई खो हर चीज की जो भी ऐसा नंजू में एक शब्द एक अक्षर कहूँ कि ऐसे मनगढ़ंत लिख दाऊगा हो बे सोच सोच के बिल्कुल प्रभु की जैसा लगा जैसे अपनी मन की आँखन से देखो तो लगा कि हर पन्नों पे जैसे कछु ने भगवान ही को नाम ही नाम लिख दा हो बे लिख कछु और लिखवे की जागा। सो भज्जारो उनके ये महान ग्रंथ के लाने हम सब तो उनके कर्जदार हैं उनके ऋणी हैं। तुलसी बाबा की माई सोई ऐसे ही कछु कह रही हैं अपने बेटा तुलसी के लाने के माता तुलसी कह तुलसी से तुमने बड़ा उपकार किया रामायण के हर पन्ने पे लिख दिया तुमने राम सिया। तो भैया रो तुलसी बाबा की एक एक लिखी और कही हर सीख हो जीने समझ लो उ तो तरई जात है और उको तो भलो कल्याण हो जाने। इसे हम सोई जोई चाहत है कि सबई को

तुलसी बाबा की दाई जा सीख जोन है सबको जानत है, सबको अपने मुँह पे जब धरे रहते बात, अकेले बात जा है कि को समझत है कोनो नहीं समझत, कोनो बोलत है कोनो भीत नहीं रखे रहते। तो उनने जैसी बाबा ने कही नहीं कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए और सीता राम सीता राम।

0: और देखो हमारे संगे जी आ गए सुकल दाऊ, अब भी हमारे पीछुआ परे हैं के जानकी तना हमें कछु की जानकारी पूछने दी तुमसे तो बताओ। सो मैंने ऐसे तना पूछ लगी कि चलो कक्का से दाऊ से क्या सो छुटकारा। मैंने की का पूछने दाऊ तुम्हें, कल लगे के कायदा जानकी भी के बगीचन की देख रेख कैसे करने पर। सो हमने कही काय दाऊ जब जानकारी हमें नहीं है पता, जो सब ई के लाने तुम्हें जानकारी जानू तो जो सब बताबे हो हमारे संगे जी बैठे हैं श्री भी के वर्मा भैया। सो इतई सो उनसे पूछे थे कि भी के बगीचन की देख रेख कैसे करने पड़त। सो भज्जा ऐसो है हम आपसे कह रहे कि आप तनक हमारे सुकल दाऊ से खो मतलब ही की जानकारी तो दे दो कि अपने भी के बगीचन की देख रेख कैसे करने।
1: किसान भैया बहनों, जैसे कि हम और आप खेती किसानी को काम काज तो करती हैं, मानो कछु किसान भैया बहने ऐसे होते हैं तो वे अपने खेतों की मेड़ों में विभिन्न तरह के फल वृक्षों को चुनाव करके लगा सकते हैं और ज़्यादा आर्थिक लाभ ले सकते हैं। ऐसे ही एक फल है अमरूद, साल में 1 से 2 बार फल देते हैं, फल तो खा ही सकते हैं, साथ ही इको व्यवसाय के रूप में भी अपना सकते हैं। ये के विषय में आज जानकारी के लाने हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित करो है वी के वर्मा साहब को। श्री वी के वर्मा साहब, आपको हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
2: नमस्कार। अमरूद के पेड़ों में 3 से 4 वर्ष पश्चात ही फल लगना प्रारंभ हो जाता है। फल खट्टे मीठे सुगंधित और त्रिदोष नाशक शीतल प्रकृति के होते हैं। भोजन के पश्चात फल लेने खाने से पेट साफ करता है। अमरूद में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है और अमरूद का सर्वाधिक लोकप्रिय संरक्षित पदार्थ जेली है। इससे और जैम, नेक्टर और चीज भी तैयार किए जाते हैं। अमरूद के बागों को प्रथम 2 वर्षों तक नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। ग्रीष्म ऋतु में 7 से 10 दिन के अंतर पर पानी देना चाहिए और शीत ऋतु में 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना आवश्यक होता है।
1: मानो कि आप हमारे किसान भाई बहनों को जब बात बता रहे हैं कि सिंचाई कैसे करने।
2: तीसरे और चौथे वर्ष जब पौधे कुछ बड़े हो जाते हैं तो 1 माह के अंतर से सिंचाई करना चाहिए शीत ऋतु में, और ग्रीष्म ऋतु में 15 दिन के अंतर से भूमि की जल धारण क्षमता कैसी है उसके अनुसार सिंचाई करें। इसके पश्चात अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी माह में सिंचाई अवश्य करना चाहिए। 4 या 10 वर्ष के पश्चात समान रूप से कम सिंचाई में ही पेड़ जो है वो फलता फूलता रहता है, परंतु किसी भी उम्र में फूल आने के समय सिंचाई करना चाहिए, उससे फूल झड़ते नहीं है और फल अधिक बनते हैं।
1: अब उम्र खाद और उर्वरक की मात्रा कितनी रखने हैं और कैसे लेने हैं ये के बारे में बताएं।
2: अमरूद के पौधों की उम्र के अनुसार खाद और सिंचाई की उर्वरक की मात्रा अलग अलग होती है। अच्छी जमीन की अच्छी उर्वरा शक्ति वाली भूमि में अगर पौधे लगाए हैं तो उसमें खाद उर्वरक जो है अपन पहले वर्ष गोबर की खाद जो है 10 किलो प्रति पौधा दें, उसके पश्चात जो है 10-10 किलो हर वर्ष उसमें बढ़ाते जाएं, जैसे दूसरे वर्ष में 20 किलो, तीसरे वर्ष में 30 किलो, चौथे वर्ष में 40 किलो और 5वें वर्ष से उसके या उसके बाद अपन 50 किलो गोबर की खाद प्रतिवर्ष देनी चाहिए हर पेड़ में। इसी प्रकार नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो प्रथम वर्ष में 50 ग्राम प्रति पौधे, द्वितीय वर्ष में 100 ग्राम, तीसरे वर्ष में 150 ग्राम, चौथे वर्ष में 200 ग्राम और 5वें वर्ष या उसके बाद के वर्षों में 300 ग्राम नाइट्रोजन प्रति पौधा देना चाहिए। इस पर प्रथम वर्ष में और द्वितीय वर्ष में 100-100 ग्राम दें, तीसरे वर्ष में 150 ग्राम दें, चौथे वर्ष में 200 ग्राम दें और 5वें वर्ष या उसके बाद अपन 250 ग्राम इस फुर प्रति पौधा दें। पोटास भी इसी प्रकार द्वितीय वर्ष में जो है पौधे को 150 ग्राम पोटास दें, तीसरे वर्ष में 300 ग्राम पोटास दें, चौथे वर्ष में 450 ग्राम पोटास दें और 5वें वर्ष या उसके बाद 600 ग्राम पोटास प्रति पौधा देना चाहिए। गोबर की खाद इस फुर और पोटास की संपूर्ण मात्रा वर्षा ऋतु के आरंभ में दे दें और नाइट्रोजन की मात्रा को 2 समान भागों में बांटकर पहला भाग जो है वर्षा ऋतु में तथा दूसरा भाग जो है फूल आने के समय देना अधिक लाभप्रद रहता है। खाद या उर्वरक जो है उसको तने से दूर वृक्ष के फैलाव में परिधि में गोल में डाल के और फिर गुड़ाई करके सिंचाई कर देना चाहिए।
1: अब बात आती है कि कटाई और छटाई भी जरूरी हो जाते हैं, कैसे कि जब तना सूख जाते हैं तो उनको ध्यान नहीं देते अपन, तो इस बारे में बताएं हमारे किसान भाई बहनों को।
2: अमरूद के पेड़ों को स्वाभाविक आकार में ही बढ़ने देना चाहिए। भूमि से कम 1 मीटर की ऊंचाई तक जो शाखाएं निकलती रहती है उनको

0: काट देना चाहिए। उससे ये फायदा होगा कि जो अपन उसमें शुरुआत में अंतरासस्य से इंटरक्रॉपिंग फसलें लेते हैं तो वो फसलें लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और जो कृषि कार्य करने में दूसरी और परेशानियां नहीं होती। तो नीचे से सिंगल तने वाला रहेगा पौधा और फिर उसके बाद 1 मीटर के बाद ऊपर से फिर उसमें शाखाएं निकलेंगी तो उनको बढ़ने देना चाहिए। और फलते हुए वृक्षों को कभी काटना नहीं चाहिए, जब फल तोड़ लें उसके बाद उनकी कटाई करना चाहिए, क्योंकि फल जो है वो नई शाखाएं निकलती हैं उसी पे फूल आते हैं। तो फल लेने के बाद ही पौधे की कटाई करना चाहिए और ऊपर से भी काट देना चाहिए जिससे बहुत लंबा पेड़ ना हो जाए, जिससे फल तोड़ने में अपने को दिक्कत हो। तो ये बातें ध्यान रखना चाहिए।
1: शीत ऋतु में भी अमरूद के पौधा फल दें तो इके लाने उन्हें टक्कर हो चाहिए।
0: अमरूद के पेड़ों में वर्ष में 2 बार फूल लगते हैं। पहली बार मार्च अप्रैल में फूल लगता है, उसको अमिया बहार कहते हैं। उससे जो फसल है वो वर्षा ऋतु में मिलती है, तो जो वर्षा ऋतु की फसल रहती है वो उसके फल स्वादिष्ट नहीं होते, पनीले स्वाद रहते हैं और फलद भी जो रहती है वो अच्छी नहीं होती। और दूसरी बार जो है फल उसमें फूल जुलाई अगस्त में लगते हैं और उसके जो फल हैं वो शीत ऋतु में अपने को मिलते हैं। तो अपने को शीत ऋतु की जो फसल जो रहती है वो अधिक भी पैदा होती है। तो शीत ऋतु की फसल लेने के लिए अपने को अप्रैल मई के महीनों में उद्यानों में हल से जुताई कर देना चाहिए और उसके बाद उसको खुला छोड़ दें, पानी नहीं दें। तो उससे जो फूल आएंगे मार्च अप्रैल में वो झड़ जाएंगे या छोटी जो बम्बी ही बन भी गई हैं तो वो गिर जाएंगी सूख के। तो उससे फिर ये होगा कि जो अपने फूल आते हैं जुलाई अगस्त में वो ज़्यादा आएंगे और शरद ऋतु में अपने अच्छी फसल होगी।
1: वर्मा साहब, जैसे कि हम कहूँ कहूँ देखा थे, अपन अमरुद काट के देखो तो के अंदर कीड़ा रहते हैं, कोनों वृक्षों की पत्तियों में कीड़ा लग जाते हैं, तो उनको नियंत्रण हमारे किसान भाई बहने कैसे कर सकते हैं?
0: अमरूद के वृक्षों पर 2 तरह के कीट लगते हैं। एक तो जो है छिलका खाने वाली इल्ली का प्रकोप होता है। इल्ली जो है तने की शाखाओं में छाल को खाती जाती है और पहचान यह है कि तने देखेंगे तो तने के ऊपर ऐसे उसका जो मल रहता है वो भूरे रंग का और माला के रूप में दिखाई देगा। तो इसकी रोकथाम के लिए अपन को रुई में पेट्रोल से गीला कर लें उसको, या रुई पेट्रोल ना हो तो केरोसिन मिट्टी का तेल या क्लोरोफाम या कार्बन डाइसल्फाइड में भिगो लें और जो तने में छेद बने हैं इल्ली के उसमें अंदर भर दें और उसके बाद ऊपर से गीली मिट्टी से उसको पूरी तरह से ढक दें।
1: इसे अपने अमृत के वृक्षों को कोई नुकसान तो नहीं
0: नहीं,
1: हो?
0: अमरूद के वृक्षों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। और फिर दूसरा जो कीट है वो फल मक्खी है, जो कि फलों में अंडे देती है और फलों को अंदर से गुदा खाती है। उससे फल गिर जाता है और फल काटने पर आपको उसमें अंदर कीड़े मिलेंगे। तो इसके नियंत्रण के लिए वो जो इकट्ठे गिरे हुए फल रहेंगे पेड़ के नीचे उनको इकट्ठा करके जला दें और जहरीले प्रपंच का प्रयोग करें। इसमें क्या करते हैं कि 250 ग्राम गुड़ को 1 लीटर पानी में घोल लेते हैं, उसमें 10 मिलीलीटर सिरका भी उसमें मिला लें और ऐसा मिला के पूरा घोल बना के इसको मिट्टी के डब्लों में भर के पेड़ के ऊपर टांग दें। फल मक्खी है वो आकर्षित होकर उसमें गिरती जाएगी और मरती जाएगी, उससे भी इसका प्रकोप कम हो जाएगा।
1: वर्मा साहब, जैसे कि हमारे बहुत से किसान भाई बहन हैं जिनने अभी तक अपने फल वृक्षों को उत्पादन नहीं करो हुए या उनको चुनाव नहीं कर पाए कि हम कौन से फलों को अपने खेतों में लगाएं, तो उनके लाने आप कौन से सुझाव देना चाहते हो?
0: फल वृक्ष में आप अमरूद भी लगा सकते हैं, फिर आम के वृक्ष भी लगा सकते हैं, कटहल लगा सकते हैं, इस प्रकार से थोड़े थोड़े नींबू के वृक्ष भी लगा सकते हैं। तो थोड़े थोड़े पौधे लगा लें जो कि जितनी जगह है उसकी आवश्यकता के अनुसार, जमीन के अनुसार मेड़ों पे लगा दें। उनसे अतिरिक्त आय मिलती रहेगी किसानों को और इसमें कोई ज़्यादा विशेष खर्च भी नहीं पड़ता है और ज़्यादा ही ना तो उसमें अपने को अतिरिक्त समय या उसकी धन की आवश्यकता पड़ती है।
1: बीके वर्मा साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारे किसान भाई बहनों को अमरूद के बागों के लाने सुझाव दें, इके लाने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम।

0: फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: तो हमारे सुकल दाऊ के संगे संगे सबरी भैया बिनु हरन ने जा उमदासी चर्चा सुनी और अब हम सुकल दाऊ हों जो सोई बतावो चाहत हैं कि दाऊ अपने तुलसी बाबा ने जासुई कही है कि तुलसी साथी विपद के विद्या बिना विवेक और साहस सुकृत सत्य व्रत राम भरोसे एक। मने दाऊ जे को सीधो साँचो होत है नहीं और हिम्मत वारो हो वे संगे उके अच्छे कर्म भी हो जरूरी है, उके अच्छे कर्म भी होवे और दूसरन के सुख दुख में उकी मदद उ करे तो उके जे गुण तो उकी विपत में सहायक होता ही है, कबू न कबू भगवान उकी सुनता ही है और देखो कितनो अच्छो धर्म पुण्य को काम करत है कि ईश्वर की भी कृपा उ पे बेहिसाब बरसत है। और जब को अपने इन गुणन कर्मों से दूसरे की आफत विपत में संग दे थे तो जान लो कि उ में सच्ची मानवता सच्ची इंसानियत कहानी। और जेको में जो है को दुख दर्द देखो अरे कहा करने हमें हुज्जे अरे हटाओ यहाँ से तो कुल नहीं अगल बगल में, अरे ऐसा तो मचो ही रहत, अरे ऐसा तो होता ही रहत, अरे ऐसा तो सुना ही परत, अरे ऐसा तो देखता ही रहत। तो ऐसी विचार और ऐसी सोच नहीं भाव चज्जे अरे कोनों को दुख सुख देख के तनक भीतरे अपनी इंसानियत तो जगाओ, तनक अपनी मानवता तो जगाओ, हैं तनक वे गुण तो जगाओ जिनमें आदमी पशु नहीं कहाऊ थे इंसान कहाऊ थे मानव कहाऊ थे, तो बेगुण जगा के कोनू की तरह मदद कर दो भज्जा। तो जो तुम्हारे जो कुकरत है उसे पूछो कितनी आत्मा को सच्ची शांति और सच्ची वह मिलत है कि अरे हमने जो काम करो समझ लो आज हमने अच्छी पूजा कर ली, आज हमने भगवान प्रसन्न कर दो, ऐसे भाव आउते हैं भीतरे से। सो भज्जा रो तनक को दुख सुख देख के तनक पिघलेंगे तनक दया करेंगे उके ऊपर। और जी के भीतर भज्जा का है इंसानियत है तो जान लो के भज्जारो ऊ के भीतर दया और प्रेम कहानू। और जी में इंसानियत नन्या कठोर से तना कड़क सो लगा थे देखत में उनकी बतकाए से तो समझ लो में प्रेम कम ऊ में तना अहंकार होत है और ना फिर जोरत के अपनो अपनो बारो हाल कि हमें तो अपनो देखने हुज्जे ऐसे तो कुल लगोरत जे हाल। तो भज्जारो सबके भीतर दया और प्रेम जी के होत है तो ऊ में इंसानियत होत है जा समझ में तो आऊ तो कम से कम देखे वारो जो को मदद करत है। और ऐसी बात नहीं है भज्जारो के मने अब मानवता इंसानियत बची नहीं है, बची है कहूँ ऐसी नहीं है, ऐसी कोनो बात नहीं है कि हमने एक दो चार हो देखो कि अरे उन्हें नहीं करी सो हमने सोचा ले अब सब ऐसे सज्जा है ऐसी ऐसो सोई नहीं है हाल। जी के भीतर मानवता है सो ऊ तो अपने तन मन धन से हर को की सहायता जहाँ जैसी स्थिति में मिले सो कराई दे और पहुँच जात कर भी। अब जैसे देखो भज्जारो आजकल देख रहे हो देश दुनिया में कोनो कुदरती आपदा आ रही होवे चाहे युद्धों की आपदा होवे तो कछु जने अकेले ना फिर गुट बना के अपने संग साथियन हो ले के कोनो बड़ी संस्थाओं के सहारे से विपत में फंसे जनों की सहायता कर भी पहुँच जात और पहुँच रहे हैं। सो ऐसे संकटों में फंसे इंसानों की मदद कर बे बारन को हम सब को मान सम्मान सोई करो चेजे जो नहीं गए अरे अब उनको काम हाथों से चले गए अरे उनके भीतने हाथों उनके मन में हाथों से चले गए अरे मन में कहे तुम्हारे हाथों तुमने अपना फर्ज नहीं निभाओ अपने फर्ज निभा लो कैसे ऊपर जाने हैं उतने सोई अपनों का करो है उनको हिसाब देने हैं। तो देखो उनने इतना अच्छो काम करो और हमने और अपने देखो जो तुलसी बाबा हैं उनने सोई कही है कि दया धर्म को मूल है और पाप मूल अभिमान और तुलसी दया न छोड़िए जब लोग

में प्राण माने भज्जा बिन्नु हरो, जब लो ई तन में प्राण है हम तो जाकत हैं, जब लो अपने भीतर से दया प्रेम के भाव कबू मिटन ने दज्जो, सबकी सेवा करो, सबकी मदद करो, सबके सुख दुख में ठाणे हो, तो कहूँ ने कहूँ कोनू ने कोनू रूप में भगवान अपने संगे सोई आउत है, अपने ऊपर सोई कृपा करत है, अपने सुख दुख में सोई खुद तो नहीं आए, अकेले हम तुम हो कोनू कोनू दोस्त भाई बंधु कोनू रिश्ते नातेदारन हो ऐसो बन के आके और अपनी मदद करत है। तो भज्जा हरो हम तो जाई के हैं, हम भी बाबई हाई कि जहाँ जौन हो जैसी जरूरत पड़े सो मदद सबकी करो, और अब नहीं हो तो चलत चलत भोले बाबा को तो भजन सुनो तना कजरी को सोई आनंद ले लूँ। और हमारे संगे देखो जी आई हैं अनिता यादव जी जी बैठी हैं सो तनक जी ने हो तो जात जाती कजरी को बोल सुना दूँ।

और भज्जा बिन्नू हरो, अब हमें सोई अबेर हो रही है, सो अब हमें सोई घरे जाने हैं और हमें देव अब आप और जाबे की इजाज़त। तो सवाई बिन्नू भैया भौजी हरन को जान की भौजी की दो ही हाथ जोड़ के राम राम और जय जवान जय किसान।

0: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार KV प्रसाद। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
3: श्रोता नमस्कार। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जो रेलवे और राजमार्ग से जुड़े हुए हैं। 13,041 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और ये दर्शाता है कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की रणनीति में सरकार निवेश को कितना महत्व दे रही है। आज इन खबरों पर हमारे साथ चर्चा के लिए हैं वरिष्ठ विशेषज्ञ KV प्रसाद। KV प्रसाद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद जी।
3: मंत्रिमंडल ने जो आज रेलवे और राजमार्ग से जुड़ी हुई परियोजनाओं के लिए 13,041 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो निवेश हो रहा है ये हमारे लिए कितना फायदेमंद है, ये क्षमता बढ़ाने में कितना लाभदायक है और आने वाले वर्षों में जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, उनको ध्यान में रखकर के अगर ये फैसला लिया गया है तो इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, कैसा असर देखने को मिलेगा?
4: अगर हम पहले भारतीय रेल की ओर जगह जिसमें काफी निवेश के बारे में अलग अलग प्रोग्राम अनाउंस किए, करीब 13,000 करोड़ के ये कैबिनेट के जो फैसले हुए, सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत में रेलवे को माना जाता है जीवन यापन के लिए, खासकर जो लोगों के आवाजाही और माल ढुलाई के लिए बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है। और जब नीतिगत और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है और हम जिस तरह से 2047 विकसित भारत का लक्ष्य साधे हुए हैं, उसमें मूलभूत सुविधाएं के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसलिए भी जरूरी है, जब तक आप एक तरफ हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा तेजी से विकसित करे और उसी की वजह से रोजगार और तमाम सारी चीजें जुड़ी होती हैं, ऐसे में रेलवे जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है उसमें काफी विस्तार की बात की है। जो 4-5 लाइन जो की है, कुछ एग्जिस्टिंग लाइन्स को 4थी लाइन 3री लाइन इस तरह बढ़ा रहे हैं। तो सबसे बड़ा ये है कि इसमें दोनों चीजें, एक तो ये है कि ये मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट जैसे कहा गया है, और एक जो सबसे बड़ा रूट है हावड़ा और चेन्नई के बीच, जो कि हम जानते हैं कि एक कोस्टल एरिया है और साथ ही साथ कई सारी, इसको हाई डेंसिटी रूट कहा जाता है क्योंकि काफी हद तक इस पे लोगों की आवाजाही और माल ढुलाई होती है।
3: प्रसाद जी, 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं की बात हुई है जिसमें लगभग 410 किलोमीटर नेटवर्क बढ़ाने की बात कही गई है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि 410 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क बिछाना कोई आसान काम नहीं है। तो आज के समय में, मौजूदा दौर की जब हम बात करते हैं, तो भारतीय रेलवे के सामने बढ़ती यात्री संख्या और माल यातायात के बीच में एक समन्वय बनाने की आवश्यकता नजर आती है। तो नई लाइनें और अतिरिक्त जो ट्रैक बनाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि इन समस्याओं का वो स्थायी समाधान दे रहे हैं हमें?
4: जी, कोशिश तो उसी तरफ रहती है क्योंकि जिस तरह से हमारे जो ट्रैफिक बढ़ रहा है, चाहे वो फ्रेट का ट्रैफिक हो या लोगों का, दोनों के लिए समस्या है। और हम ये सब जानते हैं कि भारतीय रेलवे की जो राजस्व होता है वो ज्यादा से माल ढुलाई से होता है और पैसेंजर ट्रैफिक कई खासकर नीचे श्रेणियों में तो काफी हद तक सब्सिडी सरकार उसको कंसेशन पे देती है, तो सरकार को उसमें राजस्व इतना नहीं होता और वो क्रॉस सब्सिडी के नाम पे माना जाता है। तो ऐसे में जब आप नई व्यवस्था बनाएंगे और खासकर जैसे उड़ीसा में बालासोर है, वहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट और पारादीप पोर्ट की तरफ ये इनलैंड कंटेनर यानी कि जो माल ढुलाई के लिए जो मूवमेंट है वो एक काफी आसान करेगा। इसके साथ साथ जो आसपास के वहां पे इंडस्ट्री यूनिट्स हैं, चाहे वहां सीमेंट के हों और इस तरह की चीजें हैं, उसकी तरफ भी फायदा होगा क्योंकि ये पूरी तैयारी वही है। क्योंकि ओवरऑल अगर आप इसमें देखें माल ढुलाई में, तो कई सारे क्षेत्र इसको कवर करते हैं, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे खनिज हो, चाहे वो इस्पात हो, तो कई सारी चीजें जो कि आपको जरूरी है आपकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में। और जैसे आपने कहा कि एक समन्वय बनाने की तैयारी है, वो इससे ज्यादा होगा।
3: प्रसाद जी, अपने श्रोताओं को हम ये जरूर बता दें कि खड़गपुर, भद्रक, हरिदासपुर, गुमंडी पुंडी, गुद्दूर और कटक पारादीप जैसे औद्योगिक कॉरिडोर हैं और माल परिवहन के लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। आपने भी जिक्र किया कि कोयला, लोह अयस्क, स्टील, सीमेंट कंटेनर और अनाज

0: की आवाजाही में काफी महत्वपूर्ण होंगे। आज के समय में लॉजिस्टिक की लागत घटाने पर भी सरकार काफी ध्यान दे रही है, तो ये जो परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं, जिन पर काम अब किया जा रहा है, ये कितना असर डालेंगी, कैसे ये सरकार के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगी?
1: देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे माल ढुलाई में देखा जाता है कि पहले जमाने में होता था कि आप पैसेंजर ट्रैफिक को ज्यादा देते थे और माल ढुलाई की गाड़ियों को कम प्राथमिकता मिलती थी, लेकिन अब क्योंकि प्रतिस्पर्धा के दौर में जो उत्पादक हैं वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका सामान या जो भी उनकी रॉ मटेरियल जो भी उनकी चीज है वो गंतव्य तक पहुंचे, चाहे वो अपने फैक्ट्रियों में पहुंचे या फैक्ट्री से तैयार माल जहां उनको निर्यात या आयात के लिए करना है, तो तमाम सारी चीजें जुड़ी रहती है। तो जो भी कंजेशन है, जो भी बॉटलनेक्स है, उसको कम करने के लिए जो अलग अलग लाइनों का विस्तार हो रहा है, जैसे कहीं तीसरी लाइन है वो, लेकिन मालूम है कि कुछ दिनों बाद वहां पे आपको समस्या आएगी, तो सरकार वहां चौथी लाइन की तैयारी कर रहे हैं। और कई जगह तो लाइन थोड़ा सा मतलब जैसे कहते हैं रूट कम करें, जैसे हमने देखा कि सड़क में नेशनल हाईवे में काफी कटौती कर रहे हैं कि समय बचे और वक्त बचे, जिसके साथ साथ पर्यावरण के भी अच्छा असर पड़े।
0: सरकार के मुताबिक इन परियोजनाओं से करीब 60 लाख की आबादी वाले 6,448 गांवों तक पहुंच बेहतर होगी, तो आपको लगता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे काफी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि बेहतर रेल कनेक्टिविटी होगी तो जाहिर सी बात है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और छोटे कारोबारों को आगे बढ़ाने के अवसर भी उसी अनुपात में बढ़ेंगे?
1: जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि रेल जो है एक भारत की जीवनी है, मतलब लोगों के लिए सुविधा है, लोग अपने सामान्य जीवन में जो रोज सफर करते हैं, जैसे हम दिल्ली में, हम जानते हैं कि दिल्ली के आसपास कई सारे जो शहर हैं, छोटे छोटे शहर, वहां से लोग सुबह रोज चलते हैं, दिल्ली आते हैं, यहाँ अपना कारोबार के लिए या कार्य के लिए या नौकरी के लिए आते हैं और फिर शाम को घर लौटे जाते हैं, और ठीक इसी तरह दिल्ली से भी अन्य आसपास के शहरों में। तो ये इस तरह का सुविधा और प्रांतों में भी है, लेकिन उसका विस्तार जरूरी है। जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है और बढ़ी हुई है, और अगर हम विकास चाहते हैं और जिसमें कि आप चाहते हैं कि आप विश्व में प्रतिस्पर्धा करें और आपके पास मूवमेंट आसानी से हो, लोग आसानी से आ जा सकें और सस्ते दामों में भी आ जा सके, क्योंकि आज के दौर में तो ये सब कॉम्पिटिटिवनेस की जब हम तैयारी करते हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी है, और लोगों के लिए भी बहुत सुविधा है। अगर जैसे मैंने कहा कि दिल्ली और आसपास के शहर, बॉम्बे, महाराष्ट्र जो आसपास है, जो हमारे मेट्रोपॉलिटन बड़े शहर है, वहां पे ये आम बात है कि आसपास के ग्रामीण इलाकों से और आसपास के छोटे शहरों से लोग पलायन करते हैं, दिन में अपना काम करके शाम को अपने घर लौट जाते हैं। तो इस तरह की सुविधा बढ़ेगी तो ये निश्चित तौर पे इसी और आगे बढ़ेंगे हम।
0: वैसे सरकार ने इन रेल परियोजनाओं को 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है, और श्रोताओं आपको हम ये बता दें कि इन परियोजनाओं से कुलदिहा, भीतरकनिका, पुलिकट झील और ललितगिरी जैसे पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। तो रेल संपर्क ये जो बढ़ेगा, इससे स्थानीय पर्यटन और रोजगार में किस तरह की बदलाव होने की गुंजाइश आप देखते हैं?
1: सरकार का अपना अनुमान है कि रेलवे का जब विस्तार होगा और आपके आसपास के छोटे ग्रामों में या छोटे जगहों पे जहां की रेल की सुविधा थी या बहुत ज्यादा नहीं थी, अगर जहां नहीं है वहां पहुंचाया जाए, मसलन जैसे अगर आप कहें कि जो एक साउथ में जो एक प्रोजेक्ट का है गुमेडीपुंडी और गुडूर के बीच में तीसरा और चौथी लाइन, इसमें अनुमान है कि 90 किलोमीटर की लाइन है, लेकिन इसमें यह है कि ये जो गुडूर एक शहर है वो आंध्र प्रदेश में, तो चेन्नई, विजयवाड़ा, रेणीगुंटा बहुत बड़ा जंक्शन है, चेन्नई और विजयवाड़ा तो बहुत ही बड़ा जंक्शन है, तो वहां से ये इंटरचेंज सेशन बन जाएगा। और इसके साथ साथ सरकार का अनुमान है कि वहां पे 2-3 टूरिस्ट की डेस्टिनेशन है, चाहे पुलिकट लेक हो, निलपत्तू बर्ड सैंक्चुरी हो, और जैसे सरकार ने ये भी पिछले दौर की जो हमारे यहाँ दर्शन के लिए लोग जाते हैं तीर्थ स्थलों के लिए, तो वहाँ एक वीरा स्वामी का पेरुमल टेम्पल है। तो इस तरह से ये देखिए, जब पर्यटन पहुंचेगा, चाहे वो लोग अपनी आस्था को लेकर जाएं, तो आसपास के छोटे जो कस्बे हैं वहां पे लोग पहुंचेंगे, तो रिलीजियस टूरिज्म की वजह से ये देखा गया है कि बहुत बड़ा विस्तार हुआ है और स्थानीय लोगों को उसको जरूर एक रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी आमदनी का स्रोत बनता है। और पर्यटक जब बढ़ेगा और अंदरूनी इंटरनल टूरिज्म, मतलब घर के अंदर ही लोग इधर से जाएं अलग अलग जगह, तो वो निश्चित तौर पे आर्थिक व्यवस्था में बहुत मदद करती है।
0: प्रसाद जी, अगर रेलवे के हम विस्तार की बात करें तो ज्यादा समय तो नहीं कह सकते, लेकिन पिछले 1 से 1.5 दशक के भीतर रेलवे ने काफी विस्तार किया, इलेक्ट्रिफिकेशन में काफी काम हुआ है, लाइनों के दोहरीकरण या अतिरिक्त संख्या में ट्रैक बनाने की भी गतिविधियां काफी तेज हुई हैं। मैं आपसे अगर पूछूं तो रेलवे का जो फोकस है धीरे धीरे यात्री परिवहन से कहीं आगे बढ़ रहा है, माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स पर भी बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, तो इस बदलाव को आप कितना सफल मानते हैं, और क्या हम ये कह सकते हैं कि रेलवे सड़क परिवहन से ज्यादा माल अपने नेटवर्क से खींच रहा है अब?
1: पिछले पनी 20-25 साल से ये कोशिश रही है कि रेलवे को जो प्रतिस्पर्धा मिल रही है जो सड़क यातायात से, खासकर सड़क माल ढुलाई से, ट्रक से, और उस पे कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा को कम करे, और क्योंकि रेलवे की क्षमता बहुत है।
0: बिल्कुल
1: अगर

0: एक बार ही आपने कोई 20 और 50 वैगन को, और इसीलिए आप जानते हैं को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बड़े शहरों के बीच में बनाया गया, दिल्ली मुंबई के बीच में बात की गई, उधर दूसरे वेस्ट कोस्ट में भी तैयारी हो रही है, इसलिए कि भाई आप एक पॉइंट टू पॉइंट निश्चित तौर पे, जैसे मैंने कहा आपने सामान उठाया दिल्ली से, और मुंबई में अगर पहले जमाने में चलती थी गाड़ी, एक मालगाड़ी का तो पता ही नहीं होता था कितने दिन में पहुंचेगी अपने गंतव्य पे, अगर आप प्रतिस्पर्धा के दौर में पहुंचाना चाहें कि 3 दिन में आपने कहा कि आपका सामान पहुंच जाएगा, तो तीसरे दिन पहुंचना चाहिए गंतव्य में, तभी तो आप प्रतिस्पर्धा करेंगे, तभी तो आप पहुंचाएंगे चीजों को वक्त पे। और वैश्वीकरण की जब बात हुई थी तब यही देखा गया था कि अगर आप विश्व में प्रतिस्पर्धा करेंगे तो आपके पास ये बहुत जरूरी है कि गुणवत्ता के अलावा आप समय पे अपना कमिटमेंट पूरा करें, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका एक केंद्र है।
1: श्रोताओं, बिहार में मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा के 82.57 किलोमीटर हिस्से को 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में अपग्रेड करने की मंजूरी मिली है। तो प्रसाद जी, बिहार जैसे राज्य के लिए इस परियोजना का आर्थिक और रणनीतिक महत्व तो आप किस तरह से देखते हैं? क्या इससे उत्तर बिहार में कनेक्टिविटी और व्यापारिक गतिविधियों में बड़ा बदलाव आएगा?
0: जी बिल्कुल, इसमें एक तो जो कहा जा रहा है कि मुजफ्फरनगर और सोनबरसा के बीच में जो आज की तारीख में करीब 2 घंटे लगते हैं, वो कम होकर 1 घंटे में सफर पूरा तय करेंगे। इससे ये होगा कि 3 चीजें जो हम ध्यान रखते हैं, एक तो ये है कि लोगों का खर्चा कम होगा, कम समय पे आप सड़क पे रहेंगे तो ईंधन की खपत कम होगी, साथ ही साथ पर्यावरण को लेकर भी जो समस्याएं आती है कि अधिक ईंधन फूकेगा तो हम सब जानते हैं पर्यावरण दूषित होता है, उसके लिए है। और तीसरा ये है कि आसपास जैसे कहते हैं आर्थिक गतिविधि बढ़ती है, और जो ये कनेक्टिविटी है जैसे अभी रेलवेज में हमने बात की थी, ठीक इसी तरह यहाँ एक बाबा गरीबनाथ मंदिर है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ माता जानकी का टेम्पल है सीतामढ़ी, जिसको सब काफी जिनका श्रद्धा और आस्था का स्थान है, तो उसको कनेक्ट करेगा। तो साथ ही साथ ये जो सड़क जिस परियोजना की आपने बात की है, करीब 3,500 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट है, इसमें जो पीएम की गतिशक्ति के जो बिंदु बने हुए हैं उसको भी जोड़ता है, क्योंकि एक तरह से ना समग्र विकास की बात हो रही है, क्योंकि पीएम गतिशक्ति अपना एक निर्धारित समय पे चलता है और उसको प्रधानमंत्री खुद समय समय पे उसका देखते हैं कि ताकि कोई भी बाधा हो तो उसको सब मिलके उसको सुलझाएं जल्द से जल्द, तो ये उसी दिशा की ओर कदम है।
1: प्रसाद जी, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने एक्सप्रेसवे, आर्थिक कॉरिडोर और राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार पर काफी जोर दिया। हम देख रहे हैं कि हर महीने 2 महीने में हमें ये खबर जरूर मिलती है कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार हुआ या फिर एक नया कॉरिडोर हमारे सामने है। लेकिन इनके साथ साथ एक और चीज जो ध्यान देने वाली है वो कि हाईवेज को अब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड और लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति के लिए भी तैयार किया जा रहा है। तो ये जो बदलाव हम देख रहे हैं, इसके पीछे आप क्या मानते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अन्य चीजों को ये कितना फायदा पहुंचाएगा?
0: इसमें दो पहलू हैं, एक तो आपने यहाँ गति जो हम चाहते हैं कि देखिए आज सब भागदौड़ की जिंदगी है, सब कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य करना चाहते हैं, तो जो वक्त 8 घंटे लगते थे अब दिल्ली से अमृतसर कम कर दिया है, जो अभी जो लेटेस्ट हाईवे बना है रास्ते कम किए हैं, दिल्ली चंडीगढ़ का होता था ये तो मैं नॉर्थ के बता रहा हूँ, तो और भी जिस तरह क्षेत्र है, क्योंकि एक्सप्रेस वे बनने से होता है कि आप एक तो डेडिकेटेड है तो आप गति ज्यादा दे सकते हैं, जैसे आपने कहा 80 किलोमीटर प्रति घंटा अगर आप जा सकते हैं, शहरों में तो हम जानते हैं कि 40 के 50 से सड़कें रेंगने लग जाती हैं क्योंकि इतना सारा ट्रैफिक होता है, लेकिन आप गंतव्य अगर एक नेशनल डेस्टिनेशन पहुंचे, दिल्ली से अगर आपको जयपुर पहुंचना है पहले 5 घंटे लगते थे, अगर मान के चलिए वो 3 घंटे में, तो 2 घंटे में आपका काफी काम हो जाता है, कई लोग तो सुबह जाके दिल्ली चंडीगढ़ और सुबह जाके रात को वापस आ जाते हैं, तो इस तरह से गति जब होती है तो आपको कार्य करने की पद्धति बढ़ जाती है, और जब कार्य करने की पद्धति बढ़ती है और आपके पास ज्यादा वक्त होता है अपने काम करने का, तो आर्थिक विकास में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।
1: प्रसाद जी, एक अंतिम प्रश्न है, बहुत ही कम शब्दों में आपके विचार इस पर जानना चाहूंगा। भारत अब हाई स्पीड रेल, सेमी हाई स्पीड ट्रेन, आधुनिक माल ढुलाई कॉरिडोर और बेहतर हाईवे नेटवर्क की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर 2047 को हम एक लक्ष्य मानकर चल रहे हैं तो इन सारी गतिविधियों को आपके विचार में इनका क्या योगदान रहेगा, बहुत कम शब्दों में?
0: इनका ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर आप कोई भी कार्य पूरा नहीं कर पाते। जैसे मैंने कहा फैक्ट्री में सामान तो पड़ा है लेकिन उसको आप आगे नहीं पहुंचा पा रहे तो उसका विस्तार नहीं हो पाएगा, तो ये सबसे जिसे कहते हैं मूलभूत और ढांचागत नीतिगत तैयारी है, जिसके बगैर हम अपने 2047 के लक्ष्य के लिए साधना साथ तो लिया पहुंचना कठिन होगा।
1: केवी प्रसाद जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।
3: सुर्खियों में आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में।
4: मीडियम वेव 374.5 मीटर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए शकील आजमी का लिखा गीत। संगीत दिया है रूप कुमार राठौर ने और आवाज़ KK की है और फिल्म का नाम है जहर।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मन्नापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
3: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मन्नापुरम फाइनेंस, जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
2: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल।
4: जन्नत 2 लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत केके की आवाज़ में। शब्द रचना सईद कादरी की है और संगीत दिया है प्रीतम ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मन्नापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
3: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मन्नापुरम फाइनेंस, जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
2: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल।
4: आकाशवाणी जबलपुर से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए आप सुनिए सईद कादरी का लिखा गीत तोशे सावरी की आवाज में। संगीत दिया है राजू सिंह ने और फिल्म का नाम है राज 3।

0: मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मणप्पुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
1: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मणप्पुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
0: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मणप्पुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मणप्पुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
1: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मणप्पुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
0: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मणप्पुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी जबलपुर से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी नगमे। अगला गीत हमने लिया है फिल्म बर्फी से। बोल लिखे हैं नीलेश मिश्रा ने, संगीत दिया है प्रीतम ने और आवाज़ पिपॉन और सुनिधि चौहान की है।

अभी आप फिल्मी नगमे सुन रहे थे मीडियम वेव पर। यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 हुए हैं। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी अवसंरचना सर्वोच्च प्राथमिकता। केंद्र सरकार उप ठेकेदारी मानदंडों की समीक्षा करेगी। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। ईरान ने खाड़ी देशों को अमरीका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट झटके। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक, ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमेड़ी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री तथा 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
1: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों के उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। श्री गडकरी ने बेहतर अवसंरचना सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए विस्तृत और मजबूत परियोजना रिपोर्ट DPR की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि खराब गुणवत्ता वाली DPR और अपर्याप्त भूवैज्ञानिक डेटा अक्सर लागत में वृद्धि, देरी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का कारण बनते हैं।
2: कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, उसके लिए प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल बनाकर वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो ये हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल जियोलॉजी एंड ग्राउंड कंडीशंस, ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका बहुत अध्ययन होना चाहिए। अब जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर कुछ किया तो उसका उपयोग ओवरऑल देश को होगा। बाद में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड नेचुरल हजार्ड्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, हेवी स्नोफॉल, अभी बहुत कठिन है, ये जो जिला में काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है।
1: Social media has fundamentally transformed the way citizens receive, share and respond to information. You should use social media platforms not only to inform the engaged, but also to listen, understand and respond to concerns of the people.
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जब सूचना तेजी से फैलती है तो आधिकारिक संचार में सटीकता, विश्वसनीयता और जनहित का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में वन अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वन, वन्यजीव, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाना होगा। उपराष्ट्रपति ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। झारखंड में 26 दिन से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें जेपीएससी सिविल सर्विस और जेएसएससी सीजीएल भी शामिल हैं। छात्रों ने सरकार को जांच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जांच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। छात्रों ने आज शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आभार यात्रा भी निकाली, जिसमें प्रमुख छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी शामिल हुए। देवेंद्रनाथ महतो ने 16 दिनों तक आमरण अनशन किया था। वहीं सरकार के फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। इसके विरोध में जेएसएससी सीजीएल से नियुक्त अभ्यर्थियों ने झारखंड सचिवालय और प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जताई। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास कर नियुक्ति हासिल की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने इस बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनिरका इलाके में मणिपुर के दो लोगों पर

0: पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दो व्यक्तियों ने मणिपुर के इन दोनों लोगों पर हमला किया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
1: New Delhi, the Chief Minister here, the government here.
2: केंद्र और स्थानीय सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। मेरा मानना है कि बहुत से अमरीकी पर्यटक यहाँ आकर इसकी सुंदरता को देखना पसंद करेंगे।
1: I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exists here.
0: श्री गोर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई वार्ता नहीं चल रही है और न ही निर्धारित है। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है। 4611 लोग घायल हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबिलाडो डे ला एस्प्रियेला ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। भारत ने कोलंबिया को समर्थन देते हुए पिछले सप्ताह राहत सामग्री की पहली खेप के रूप में 20 मीट्रिक टन सामग्री भेजी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त को मजबूत किया। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए हैं। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट झटके। दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लुढ़क कर 76,910 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 77 अंक यानी 0.32% नीचे आकर 24,078 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 8 पैसे कमजोर हुआ और 95.76 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। नीदरलैंड्स में पुरुष एफआईएच हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9.

0: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है सार्वजनिक बैंकों का आधुनिकीकरण, युवा ऋण और डिजिटल विस्तार पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भसीन और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
1: सरकारी बैंकों की तरफ से दो दिन पहले ही एक मंथन किया गया और उसमें तमाम मुद्दे निकलकर सामने आए और साथ ही वित्त मंत्रालय ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई और एक रूपरेखा तय हुई कि आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर को किस तरह से काम करना है। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र कुमार भसीन साहब मौजूद हैं, जो जोनल हेड हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के, और साथ ही साथ अश्विनी राणा जी भी मौजूद हैं जो पुराने बैंकर हैं। आप दोनों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नरेंद्र जी आपसे समझना चाहेंगे कि 2 अक्टूबर से जो युवाओं के लिए एक महीने का विशेष बैंकिंग अभियान शुरू होने जा रहा है, इस अभियान के जरिए युवाओं को बैंकिंग से जोड़ने की आखिर जरूरत क्यों महसूस हुई?
2: नमस्कार। तो बेसिकली जो दो दिन का जो कॉन्फ्रेंस हो उसमें जो 7 थीम थे, उन थीम में से एक सेकंड थीम था जो बैंकिंग फॉर यूथ करके था, और जो अभी इवन फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण मैम ने भी अपने इनॉग्रल सेशन में बोला कि 29% जो पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन हमारी जो कंट्री की है एंड 15-29 ईयर्स ऑफ एज के, तो जो ये लोग UPI इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बैंकिंग को समझते हैं। तो अभी जो हमारे जिस तरह के 7 मुद्दे भी हैं और जिस तरह बैंकिंग कंसोलिडेशन करके मेन पर्पस था कि 4 बड़े बैंक हो, और इवन प्रधानमंत्री ने भी इंडिपेंडेंस डे के उसमें कहा कि उसमें से एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो top 5 ग्लोबल में आए, तो अब उसी मुद्दों को लेते हुए देखा जाए तो ये कि यंग जो जनरेशन है जो बैंकिंग को समझती है और बैंकिंग प्रोडक्ट को लाती है, तो इसीलिए ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि 2 अक्टूबर से जो एक यूथ कैंपेन दैट इज अ बैंकिंग फॉर यूथ करके लाया जाए। और अभी पब्लिक सेक्टर बैंक को जरूरत है कि हम वापस कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्किल सेंटर में जाएं जहां पे वहां के लोगों को, बच्चों को, यंग जो आप कह रहे हैं कि जेन जी, इनको फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाया जाए। हालांकि प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑलरेडी कैंपस प्लेसमेंट में जाते हैं, अपना इंप्लॉयज हैं, तो उससे एक नया लाइफ साइकिल अप्रोच जो हम अभी देख रहे थे कस्टमर का, हम सोचते हैं कि जब से वो खाता खोलता है लाइफ साइकिल अप्रोच, बट अब लाइफ साइकिल की जगह हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की जरूरत है, कि ताकि ये कैंपेन का भी यही फोकस है कि जैसा ज्यादा लोग टैक्स सेवी हैं यंग पीपल, और 66% UPI ट्रांजैक्शन जो 18-29 साल के बच्चे को, क्योंकि ये मोबाइल बैंकिंग और ये बैंक में कम विजिट करते हैं तो थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, तो इसी को ये सोचते हुए कि UPI और इन बैंकिंग प्रोडक्ट्स को बढ़ाते हुए, और मेनली जो हमारा विकसित भारत 2047 का भी यही है कि स्ट्रांग बैंक बने, बड़े बैंक बने, और इसीलिए अगर देखा जाए तो इसके लिए हमें यंग जनरेशन जो आज खाता ही नहीं और अदर तरह के क्रेडिट ट्रांजैक्शन में यूज करे, तो ये पर्पस है जिससे मतलब एक नया वेव बैंकिंग इंडस्ट्री में आएगा।
1: बिल्कुल। अश्विनी जी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने एक लंबा समय दिया है बैंकिंग व्यवस्था को, तो 16 साल से ऊपर के युवाओं को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए बैंक जमीनी स्तर पर क्या क्या कदम उठाएंगे, क्या चुनौतियां हैं, और क्या आप एक कमी देखते हैं जो बैंकों की तरफ से युवाओं को आकर्षित करने के लिए अभी है और उसे आने वाले दिनों में पूरा किया जाएगा?
3: देखिए, एक अच्छा है कि भाई सरकार युवाओं को बैंकिंग के साथ जोड़ने की बात कर रही है। जैसे नरेंद्र जी ने कहा कि बैंकों के साथ युवाओं को आज जोड़ने की जरूरत नहीं है, उनको जोड़ना चाहिए था स्कूल टाइम से। स्कूल में जब बच्चा एंटर होता है उसी समय उसका अकाउंट खुले, उसकी जो फीस है उसी अकाउंट में से चली जाए, तो उसको एक फीलिंग आती है कि मैं पर्सनल बैंकिंग कर रहा हूँ। और आज का जो युवा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पहले बैंकिंग थी क्या, बैंकिंग विद स्माइल। आज क्योंकि वो बैंक जाता ही नहीं है, बहुत ऐसे युवा हैं कि खाता खोलने से 10-10 साल हो गए, वो बैंक कभी नहीं गए, वो सिर्फ ऐप से ही। लेकिन सरकारी बैंकों को उस जो जनरेशन है उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो जो एप्स हैं या टेक्नोलॉजी है उसको आज के युग में लाना पड़ेगा। प्राइवेट बैंक उसमें बहुत पहले से हैं, तो इसलिए बैंकों को उस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना होगा, और उसके लिए वैसी ही आपको ह्यूमन कैपिटल, HR जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है, वो वैसे ही चाहिए। मशीनें सिर्फ नहीं काम कर सकती, ह्यूमन कैपिटल का भी टच बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। तो मशीनें काम नहीं कर सकती और एक बैंकिंग व्यवस्था में ऐसे काम करने वाले लोग होने चाहिए जो जेन ज़ी कहें या जो उनके कस्टमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनकी बातों को समझें और उनकी उम्मीदों पर खरे भी उतरे। और नरेंद्र जी, सरकार युवाओं के लिए एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की भी बात कर रही है, ये इसकी रूपरेखा किस तरह की हो सकती है, और खासतौर पर युवाओं की अगर हम बात की जाए तो उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं इसके जरिए?
2: देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि अश्विनी जी ने सही बोला कि राइट फ्रॉम स्कूल डेज से अगर बच्चों को बैंकिंग, तो यही थीम इस जो अपना कैंपेन है।

0: कि कैंपस टू कैरियर, जो स्कूल से कैरियर और कैंपस टू कैरियर, और जो आज का जो यंग जनरेशन है वो जैसे हमारे फॉर्म्स हैं, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स हैं, लंबे लंबे फॉर्म है साइन करना, क्रेडिट, अब ये जो बच्चे आज के जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में इनमें आइडियाज होंगे, और ये यंग बच्चे एंटरप्रेन्योर और बिजनेस, अब उसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर यंग बच्चा उसका कोई क्रेडिट तो हिस्ट्री होगी नहीं, ना सिविल होगी, पहली बार लोन रहे, तो इसलिए हमें डॉक्यूमेंटेशन और क्रेडिट कोलेटरल से उनके आइडियाज, उनके कैश फ्लो, जो उनको उस चीजों को देखना पड़ेगा। और मेनली ये कि इस कॉन्फ्रेंस का जो यंग जनरेशन का एक नया इनिशिएटिव लिया जो है, और उसी से ये है कि आगे नए नए आइडियाज आएंगे, तो जो अगर इंटरनेशनल लेवल पे हमें जाना है ग्लोबली, तो यंग, क्योंकि हमारे कस्टमर भी यंग जनरेशन है, तो यंग प्रोडक्ट है, और जैसे श्री सर ने बोला कि अब कस्टमर आता ही नहीं है बैंक, तो कस्टमर आएगा नहीं, तो ह्यूमन टच, और पर ह्यूमन टच बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आर्टिफिशियल ही रहेगी, क्योंकि आर्टिफिशियल ह्यूमन जहां बैंकिंग है या कस्टमर दोनों ह्यूमन बीइंग है, तो इसलिए यंग जनरेशन को कैसे अट्रैक्ट करना है थ्रू मोबाइल, थ्रू इवन सीधा मैम ने ये भी बोला कि उसमें अट्रैक्ट करने के लिए जैसे हम लाइफस्टाइल वोचर्स देते हैं या रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं, वेलनेस है, तो इन चीजों को सारे नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, अट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि यंग जनरेशन जो अकल का जो हमारा फ्यूचर है बैंकिंग का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके,
1: बिल्कुल, ताकि भविष्य सुदृढ़ रहे, उस दिशा में ये कोशिश की जाएगी। अश्विन, एक बड़ी चुनौती ये है कि आज का यूथ इंटरनेट पे रहता है, तमाम सोशल मीडिया एप्स पर रहता है, और उसके जरिए कहा जाए तो फायदा होने के बजाय कई मौकों पे नुकसान भी हो जाता है, युवा गुमराह हो जाता है, और वो तमाम अलग अलग एप्स जिनके कोई क्रेडेंशियल्स नहीं होते हैं वहां से भी वो लोन ले लेता है, तो क्या ये कहना सही होगा कि फॉर्मल जो बैंकिंग व्यवस्था से उसे जोड़ दिया जाएगा, तो युवा चाहे पढ़ाई की बात हो, नौकरी की बात हो, बिजनेस की बात हो, या निवेश जैसे अलग अलग वित्तीय फैसले, उन जरूरतों को इन बैंकों के जरिए पूरा किया जा सकता है?
2: नहीं, बहुत अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, और उनके पास लिक्विडिटी भी है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि भाई उनको फंड्स की प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज की प्रॉब्लम हो, बस ये है कि भाई उसके अंदर उनकी समय के अनुसार अपने आप में बदलाव, ये जरूरी है। और जहां तक आप ऐप की बात कर रहे हैं, ऐप के लिए सरकार को एक बहुत सख्त कदम उठाना पड़ेगा, जैसे और चीजों के लिए उठाते हैं, मेटा है या दूसरी कोई भी एजेंसी जो भी प्लेटफॉर्म है, कि भाई इस तरह की ऐड आती ही क्यों है। अब मैं बता रहा हूं आपको, बैंक वाले कोई पेंशनर का कार्ड इशू नहीं करते, लेकिन आप देखेंगे फेसबुक का हर बैंक की ऐड आ रही है कि आप जो है पेंशनर हैं तो आप इस बैंक का अपने पेंशन कार्ड बनवा लीजिए, और लोन लेने की और इतने भ्रामक प्रचार हैं, उसके ऊपर सरकार को सख्त कानून बना के, ताकि लोग उसमें ट्रैप ना हो जाए। भाई पढ़ा लिखा युवक तो समझ जाएगा, लेकिन जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे भी बहुत युवक हैं, वो उस झांसे में ना आए, वो भी हमारी बैंकों की और सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, तो हाल ही में सरकार ने तमाम ऐसे ऐप्स को बैन किया है और इस तरह के ऐड भी बैन किए हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में इन नियम कानूनों को और सख्त किया जाए। नरेंद्र जी, इस दो दिनों के मंथन की अगर हम कहें तो उससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? क्या बैंक सिर्फ इस नई व्यवस्था के जरिए खाता खोलने पर ही उनका फोकस रहेगा, या युवाओं को लंबे समय तक अपने साथ जोड़ने की भी कोई फुल प्रूफ एक योजना, एक प्लानिंग की जा सकती है इसके जरिए?
0: नहीं, कॉन्फ्रेंस जैसे मैंने बताया कि 7 थीम थे, 7 मुद्दे थे इसमें, जिसमें डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पहला मुद्दा था, जिसमें जो कि बैंक के लिए कासा और एफडी वगैरह जो होता है उसी के बेस पर क्रेडिट होता है। सेकंड जो बैंकिंग फॉर यूथ था, फिर इन्वेस्टमेंट साइकिल, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो कि इंटरनेशनल की तरफ जाना है, तो हमें बड़े बड़े एग्रीकल्चर पे फोकस तो है ही, और इवन क्रेडिट कार्ड बिजनेस को भी रिवैम करेंगे नए तरीके से, और फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो सभी जो मुद्दों का यही था कि इसमें अब एक्शनेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, और पीपल सेंट्रिक आउटकम, मतलब कि जो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिकली आपने देखा होगा बजट फरवरी में एक हाई पावर कमेटी बैंकिंग के लिए एक बनाने की जो हुई थी, तो बेसिकली उसी का अनाउंसमेंट इवन फाइनेंस मिनिस्टर इनॉग्रेशन बोला कि आजकल में अनाउंस हो जाएगा, और उसी के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस है जिसमें 125 एमडी सीएमडी बड़े बड़े लोग आए, जो यहां पे जो डिस्कशन हुआ दो दिन का, वो एक मटेरियल रेडी हो रहा है, जो मटेरियल उस कमेटी को प्रेजेंट किया जाएगा। तो मेनली उसमें से यूथ का, जैसे आपने बताया कि यही था, एफएम का भी था कि यूथ को हमें जल्दी कैप्चर करना पड़ा, ये नहीं कि हम उनको वेट करने की जब उनकी जॉब लग जाए या फर्स्ट सैलरी अकाउंट खोले, और जैसे अश्विन जी बताया कि बैंकिंग के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट फ्रॉम द एजुकेशन लोन से लेके स्किल डेवलपमेंट, और आजकल अप्रेंटिसशिप भी आ रही है, इंटर्नशिप्स भी स्टूडेंट को दिया जाता है ताकि उनको यंग कस्टमर को एजुकेशन, फाइनेंस से लेके फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, पहला क्रेडिट, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट, ताकि वो वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा सके। और पब्लिक सेक्टर बैंक का जैसे ऑलरेडी हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांचेज है, हमारे पास एजुकेशन लोन है, तो इसी तरह एक रिस्पॉन्सिबल क्रिएट करके जो यंग कस्टमर को

अ कस्टमर फॉर लाइफ हमेशा के लिए, ताकि हम जैसे हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहते हैं, ताकि उनको एक्वायर करके और उनको एक जॉब्स मिलती हैं तो नया रोजगार बनता है, बिजनेस डेवलपमेंट होता है. तो इसलिए कैच दीज पीपल यंग जो है, वही हमारा मुद्दा इसमें. और इसी के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि जितना जल्दी हम

0: है और अपना कस्टमर वेलफेयर के ऊपर फोकस है और एक ट्रस्ट के ऊपर, क्योंकि टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी इनके ऊपर भी डिस्कशन था कि जितना जितना सेफ बैंकिंग हम इसको करेंगे, तो डाटा एनालिटिक्स की बातें भी थी। तो ये सारे जितने भी मुद्दे आइडियाज है इनको अब फॉर्मली करके जो हाई कमेटी उसके आगे प्रेजेंट करके आगे ले जाया जाएगा।
1: दूसरे दिन के इस कॉन्फ्रेंस में जो चर्चा हुई थी वो जो थीम थी उसमें एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वैल्यू चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेकर बात हुई, साथ ही प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात की गई। खासतौर पर ये वो कर्ज होते हैं जिसके तहत किसानों को, छोटे कारोबारियों को और कमजोर वर्ग को कर्ज दिया जाता है। तो आप आज के दौर में इस तरह के कर्ज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या देखते हैं जो आने वाले दिनों में इस कॉन्फ्रेंस के बाद बैंक दूर कर सकते हैं?
0: प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग में वो ये कि जो हम लोन वगैरह देते हैं उसका फिर अभी एनपीए तो काफी हमारा रिजॉल्व हो गया, जो 14.6 से 0.39 आ गया। अब प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग हो गया, एग्रीकल्चर फार्मिंग, उसमें बेसिकली रिकवरी और क्रेडिट मॉनिटरिंग का ज्यादा फोकस रहता है। तो इस कॉन्फ्रेंस में इसका भी फोकस भी किया कि एसेट क्वालिटी तो इम्प्रूव हुई है हमारी सब्सटेंशली, और एसेट क्वालिटी को फर्दर अब ये हमारा कि फोकस ज्यादा कि नंबर और टारगेट पे नहीं होना चाहिए कितने लोन करने हैं हमें, क्वालिटी लोन होने चाहिए ताकि जिस पर्पज के लिए, और फिर फॉलो अप रिकवरी और मॉनिटरिंग जो सबसे जो मेन रीजन रहता है कि एनपी की वजह से हम लोन तो दे देते हैं पर उसके बाद मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, रिकवरी नहीं हो पाती। तो इसी कॉन्फ्रेंस का ये कि इसको और लोगों को, और ये नहीं कि जब किसान या जो भी प्राइवेटी सेक्टर अप्रोच करे तो बैंक को भी टाइम टू टाइम असेसमेंट करना पड़ेगा कितना कब कब उसको लोन चाहिए या आगे उसको फर्दर ग्रोथ करना है। तो रोल काफी चेंज होने वाला है बैंकिंग का, जो क्रेडिट मॉनिटरिंग था कि एनपीए को अब एक बार कम हो गया ये नहीं कि दोबारा हो जाए, तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए फॉलो अप और थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच उसमें लानी पड़ेगी।
1: बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच लानी पड़ेगी, बैंकिंग काफी बदल गई है। तो अश्विनी जी आपसे ये समझना चाहेंगे इसी सवाल का एक एक्सटेंशन कहें, तो सरकार ने बैंकों से कहा है कि कर्ज देने के अपने लक्ष्य में किसी भी तरह की कमी न रहने दे, तो इसे सुनिश्चित करने की अगर हम बात करें तो बैंक अपने अंदर क्या बदलाव करेंगे, क्योंकि ब्रांच पहले से है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है, अब एक सिर्फ अप्रोच को बदलने की जरूरत है, तो वहां क्या बदलाव आप देखते हैं होगा आने वाले दिनों में?
2: आपने सिर्फ लोन ही नहीं देना, लोन देने के बाद उसकी फॉलो अप प्रॉपर यूज हो रहा है, उसकी इंस्टॉलमेंट आ रही है, रिकवरी है, वो चीजें भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए टारगेट ज्यादा ना फिक्स करके उसको इनिशिएट करके कि भाई हाँ भाई ज्यादातर लोगों तक वो पहुंचे, वो एक बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस, मुझे लगता है जैसे आपने एक हाउसिंग लोन के लिए, कार लोन के लिए कुछ अलग अलग ब्रांचेस स्पेसिफिक बना दी, वैसे इनके लिए आपको स्पेसिफिक ब्रांचेस और उस तरह का जो स्टाफ है वो भी रखना पड़ेगा। अब आप एक देखिए, आज गोल्ड लोन कितना पॉपुलर है, गोल्ड लोन बैंक भी करना चाहते हैं, आप उसके लिए स्पेसिफिक ब्रांचें बना दीजिए, तो उससे क्या होगा वो उस ब्रांच के अंदर उसका जो उसको स्कैन करने का कि गोल्ड ओरिजिनल है वो भी रहेगा, गोल्ड को सिक्योरिटी के तरीके से भी। तो यानी हर अब एग्रीकल्चर जो लोन है वो हर ब्रांच में तो नहीं हो सकता, तो उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपको उस तरह की वर्क फोर्स भी एडिशनल डालनी पड़ेगी अगर वहाँ आप कोई चीज को अचीव करना है, तो वो एक बहुत जरूरी है। और दूसरा जैसे डिपॉजिट की बात, मोबिलाइजेशन की, हम यंगस्टर को टारगेट कर रहे हैं लेकिन आज यंगस्टर की आदत क्या है, बाय टुडे पे टुमारो, तो वो डिपॉजिट की बात ही नहीं सोचता। तो आपको डिपॉजिट का कोई ऐसा अट्रैक्टिव प्लान लाना पड़ेगा ताकि वो अट्रैक्ट हो, पुराने एफडी और सेविंग से वो आपके पास, और डिपॉजिट के बिना बैंकिंग नहीं हो सकती भाई, आपके पास अगर फंड्स नहीं है तो आप फाइनेंस कहाँ से करो। तो आपको जो डिपॉजिट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी उन जनजी के अकॉर्डिंगली आपको बनाने पड़ेंगे, तभी आप वो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन भी कर सकते हैं।
1: जी, और एक जो क्रेडिट कार्ड को लेकर के और एक क्रेडिट व्यवस्था को लेकर के भी खास अहम चर्चा हुई, एक थीम थी उसको लेकर आपका अश्विनी जी क्या कहना है कि वो कितना जरूरी रहेगा आज के माहौल में, खासतौर पर युवाओं की बात करें तो?
2: उनकी एक सोच है बाय टुडे पे टुमारो, तो वो उनके लिए क्रेडिट कार्ड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, मतलब बैंकों के लिए भी क्योंकि वो एक टारगेट है उनके लिए, लेकिन उसके अंदर भी आपको देखना पड़ेगा कि वो उसको प्रॉपरली यूज कर रहे हैं और उसकी रिपेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आज भी आप देखोगे तो बहुत सारे बैंकों का जो एनपीए है या वो क्रेडिट के कार्ड के कारण ही है, क्योंकि वो उस तरह उसकी आप सर्विस नहीं कर पाते उसको देने से पहले, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं, अब नए भी फिर आप ले आएंगे, तो क्रेडिट कार्ड क्योंकि वो विदाउट एनी सिक्योर लोन नहीं है वो, तो उसको आप किसको दे रहे हैं? अब आप देखें कि मेट्रो स्टेशन पर भी क्रेडिट कार्ड बांट रहे होते हैं, अरे भाई उसकी क्रेडिबिलिटी तो हो कि भाई वो पे कर सके, जितनी उसकी लिमिट बना रहे हो उसकी सैलरी तो इतनी हो, तो उसको भी आपको सारी चीजों को फोकस करके उसको जो है प्रमोट और करने की जरूरत है।
1: यानी कस्टमर स्पेसिफिक लिमिट और इन सारी चीजों पर ध्यान

0: रखते हुए उसको दिया जाएगा, तो एक तरह से एनपीए पे कहें काबू
1: पाएगा। हाँ भाई, सिर्फ ये नहीं कि हाँ भाई नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड हमने इतने दे दिए, आप किन को दे रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
0: बिल्कुल, आंकड़े बढ़ाने से बात नहीं बनेगी। नरेंद्र जी, जिस तरह से डिजिटल व्यवस्था तेजी से बढ़ रही है बैंकिंग सेक्टर में, उसके साथ ही साथ साइबर फ्रॉड भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है, तो ग्राहकों को और उनके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या लगता है बैंकों की तरफ से किन नए प्रयासों की जरूरत है?
2: नहीं, ऑलरेडी इसमें काफी बैंकों ने भी, इवन गवर्नमेंट में भी, और काफी अवेयरनेस है, और साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस, इवन आरबीआई का भी आपने देखा, आरबीआई कहता है उनके वेबसाइट में, और इवन डिजिटली, तो क्योंकि आपकी बात सही है कि एक तरह हम कह रहे हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, यूपीआई बढ़ रहा है, पर उधर से साइबर फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं और तरह तरह के फ्रॉड आ रहे हैं, लाइक हमने फिशिंग है, विशिंग, ईमेल से भी ओटीपी आ गया, तो अवेयरनेस का काफी बैंक्स भी, हर बैंक अपने देखा गया है। अभी हमने अभी रिसेंटली एक बैंक का ट्रेनिंग किया, तो उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग से पहले 15 मिनट एक साइबर के ऊपर की टाइप्स साइबर डूज एंड डोंट की कैसे, तो कस्टमर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट, डिजिटल रिस्क जैसे आपने देखा कि आजकल काफी, तो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, प्लस अपना गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है I4C इंटरनेशनल, अपना कोऑर्डिनेशन सेंटर है 1930 पे कॉल करके, बट वो ये कि जितना अवेयरनेस लाएंगे जितना लोगों को, अब ओटीपी के ऊपर काफी हुआ, तो अब लोगों को ओटीपी समझ गया कि नहीं करना, बट कई बार फिशिंग ईमेल आ जाता है या कहीं मिक्स करके कोई मैसेज आ गया, तो टाइम टू टाइम हर फॉरम में, इवन बैंक्स अपनी मीटिंग में कस्टमर अवेयरनेस, इवन फ्रंटलाइन स्टाफ को भी बोलेगी हर तरह के अवेयरनेस लाए, बिकॉज जब तक हम साइबर फ्रॉड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो डिजिटल का जो हमारा बेनिफिट हो रहा है वो नुकसान में, तो इसलिए काफी बैंक, गवर्नमेंट, इवन साइबर, हर पुलिस स्टेशन भी, साइबर पुलिस स्टेशन भी जहां पे हेल्प है, कॉल कर सकते हैं आप इमीडिएटली, आप जो वेबसाइट है हेल्पलाइन साइबर सिक्योरिटी के 1930 और ये www. ये साइबर, तो साइबर सुरक्षा कवच में वहां जाके अपना आधार कार्ड और नंबर नोट कीजिए, और जो भी आपका कोई स्कैम या फेसबुक या जो भी इंस्टाग्राम हैक हुआ है, तो इसमें आजकल काफी फास्टली, और ये कि आपको जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतना जल्दी उसका समाधान मिलता है।
0: तो अश्विनी जी, आम ग्राहकों को इसमें किस तरह से भागीदारी देनी चाहिए कि वो एक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए साइबर ट्रैप में ना आए?
3: ग्राहकों को तो निश्चित रूप से क्या है कि जो जो गाइडलाइंस बैंक जो हैं इशू करते हैं टाइम टू टाइम, भाई किस तरह के, अब जैसे SMS है, तो SMS मतलब किसी बैंक के नाम का आया है अगर, और उसके आगे S लगाया तो ही वो जेन्युइन बैंक का मैसेज है, अदरवाइज अगर उसमें लास्ट एक S अल्फाबेट नहीं है तो वो नहीं है। दूसरा, उसकी जो वेबसाइट है उस पे भी आप जाते हो, या मेल है bank.in, बैंकों की आज एक ऑथेंटिकेटेड मेल है, उसके अलावा किसी को नहीं। कहीं से भी फोन आता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, कोई मैसेज आता है विदाउट एस आप उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, तो ही बच सकते हैं। उसके साथ साथ बैंकों को भी डाटा सिक्योरिटी के लिए अभी बहुत सारी चीजें RBI कर रहा है, म्यूल हंटर उन्होंने एक ऐप बना दिया, लेकिन वो म्यूल हंटर ऐप तब काम करता है जब वो फ्रॉड हो चुका होता है, उससे पहले वो अकाउंट, क्योंकि अकाउंट तो एक ऑर्डिनरी अकाउंट है, वो कब म्यूल अकाउंट बनता है, जब फ्रॉड और उसमें पैसा आ जाता है, तो उसको भी जो बैंकों का जो टेक्नोलॉजी है उसको भी और जो है अपग्रेड करने की जरूरत है कि भाई कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो फ्रीक्वेंटली हो रही है, क्योंकि ब्रांच में बैठा, कई बार लोग कहते हैं कि ब्रांच मैनेजर जिम्मेवार है, ब्रांच मैनेजर को पता ही नहीं, क्योंकि सारा कुछ सेंट्रल सर्वर से जो ट्रांजैक्शन है वो मूव होती है, तो वहां पर इतनी ज्यादा उसको आपको अवेयरनेस चाहिए कि वो आपके पास वो टेक्नोलॉजी चाहिए, वैसे स्टाफ चाहिए। अब बैंक में क्या है कि बैंक में जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं उनको भी आप जनरल इम्प्लाई की तरह ट्रांसफर कर देते हो, जो एक ट्रेंड होता है, तो कम से कम जो टेक्नोलॉजी और के साथ लोग हैं वो रेगुलर उस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में रहें, ताकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो काम आ सके, उनको जनरल बैंकर इम्प्लाई मत समझिए, तभी जाके आप कर सकते हैं, नहीं तो नए नए लोगों को लाते रहेंगे, क्योंकि आप उसको आउटसोर्स भी नहीं कर सकते। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो, और दूसरा ये जो सारी चीजें आई है, जो बात वहां पर हुई है बहुत अच्छी है, और जब ये हाई पावर कमेटी बनेगी तो मेरा ये सुझाव है हाई पावर कमेटी को अलग अलग ग्राउंड रियलिटी के लोगों से बात करके उसके अंदर बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी भी जानना उस कमेटी के लिए बहुत जरूरी है।
0: नरेंद्र जी, 2 दिन की बैठक में 7 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, तो अब इन चर्चाओं को जमीन पर लागू करने के लिए अगला कदम बैंकों की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या होगा?
2: सरकार का यही मैंने बताया कि जो जितने भी डिस्कशन हुए तो जैसे एफएम ने बोला कि जितना भी मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा हुआ उसी सारे मुद्दों को एक कंसोलिडेट करके जो अब नेक्स्ट जो मीटिंग होगी जो हमारा बेसिकली इन 7 दिनों का जो अब निचोड़ देखें तो बेसिकली वही है कि टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट के ऊपर बात हुई कस्टमर

0: ऑथेंटिसिटी का रहेगा कि अल्टीमेटली देखो डिजिटल हो या साइबर सिक्योरिटी से बचाना तो मेनली कस्टमर सेंट्रिसिटी और कस्टमर इम्प्रूवमेंट के ऊपर ही है. तो कोलैबोरेशन मैसेज है यहाँ पे कॉमन मैसेज कि आईटी और डिजिटल ये सबको एक और मेनली डिपॉजिट मोबिलाइजेशन तो जैसे अश्विनी सर ने बोला कि बैंक के लिए इम्पोर्टेंट है उसी के बेस पे और यूथ बैंकिंग को जो हम ऐड करेंगे तो उससे हमारा जो एक नया वेव उसमें आ जाएगा. और बट अल्टीमेटली देखा जाए तो क्वेश्चन यही उठेगा कि पब्लिक सेक्टर नंबर ऑफ ब्रांचेज है उनका स्केल काफी बड़ा है टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो ये कि अब हम लार्जर बैलेंस शीट्स के ऊपर तो फोकस अब धीरे धीरे हमारा मूव हो रहा है तो और बैंक्स को थोड़ा एजाइल होना पड़ेगा थोड़ा डिजिटल के साथ सेफ एंड सिक्योर. और नेक्स्ट जो इंडिया का नेक्स्ट फेस ऑफ ग्रोथ इसी के ऊपर है क्योंकि अगर हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं तो अगर हमें बड़े बैंक बनाने हैं विद बेस्ट कस्टमर सर्विस बेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट तो आई थिंक ये नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि जो भी यहाँ पे दो दिन के डिस्कशन हुए हाई पावर कमेटी के लिए एक ऐसा मटेरियल बनेगा. और जैसे अश्विन सर ने कहा कि डाउन द लाइन रियलिटी से जरूर जुड़ी है क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि जो आम कस्टमर होता है वहां तक उसको बेनिफिट नहीं पहुंच पाता तो दैट इज इम्पोर्टेंट है. और जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो बैंकर कस्टमर के पास पहुंचता है मतलब डोर स्टेप बैंकिंग है तो वहां पब्लिक सेक्टर बैंक में भी थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि ये नहीं कि वेट करना कि कस्टमर ब्रांच में आए तो हम एज अ बैंकर ऑल्सो वी कैन कस्टमर को वहां पे अवेयरनेस है और ऑन द स्पॉट डेमोन्स्ट्रेट करके चीजें बतानी ज्यादा जरूरी होंगी.
1: लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि हालांकि निजी बैंक की तरफ से भी अच्छा काम हो रहा है और सरकारी बैंक की तरफ से लेकिन सरकारी बैंक का जब दायरा बढ़ेगा तो लोगों का बैंकिंग व्यवस्था की तरफ भरोसा भी और ज्यादा मजबूत होगा ये भी इस पहल के जरिए देखने को मिलेगा.
0: हाँ देखिए दोनों ही क्योंकि पब्लिक सेक्टर सरकारी बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसमें और प्राइवेट सेक्टर ने जो एक नया यंग जनरेशन और इनके प्रोडक्ट्स और क्योंकि वहां पे है कि स्टाफ भी यंग है कस्टमर भी यंग है तो एक माइंडसेट और वो बात होती है. बट आई थिंक दोनों को मिलकर ही प्राइवेट सेक्टर बैंक तो रहे ही है क्योंकि जितने भी हमारे सरकारी बैंक है 100 साल 118 साल कोई 120 तो वो तो हमारा रहेगा. बट जब दोनों साथ में काम करेंगे तो नेचुरली ग्रोथ तो उसमें आएगा बैंकिंग में.
1: एक अहम बदलाव अगर हम बात करें इस कॉन्फ्रेंस के बाद में तो क्या बैंकिंग सेवा में किस तरह का बदलाव हमें दिखेगा आने वाले दिनों में.
0: बदलाव देखिए अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का काफी मुद्दा इसमें रहा क्योंकि डिजिटली जितना अब हम डाटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग तो अभी ये है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अब रुकेगा नहीं ये क्योंकि अभी अगर 30 साल पहले देखा जाए तो मैनुअल बैंकिंग से हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो डिजिटल है तो फिर यंग जनरेशन है तो अगर उस दोनों को देखा जाए तो डिजिटल बैंकिंग अब धीरे धीरे बढ़ेगी और उसको कैसे हम सिक्योर कर सकते इसलिए साइबर सिक्योरिटी जो डिफरेंट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है ईमेल क्वेश्चनर है अवेयरनेस है तो डिजिटल तो हमारा फ्यूचर है. इवन फॉर्मर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी एक लास्ट कॉन्फ्रेंस में बोला था कि भाई फ्यूचर इज मनी इज नाउ डिजिटल ही है उसके बैक नहीं जा सकते हम तो सीबीडीटी है या डिजिटल करेंसी या आरटीजीएस यही हमारे ऐसे है जो अब डायरेक्टली धीरे धीरे बैंकिंग का बेस बनेंगे.
1: अश्विन जी 2047 तक सरकार भारत को एक विकसित देश बनाने की बात कर रही है तो इस लक्ष्य में आप सरकारी बैंकों की सबसे बड़ी भूमिका क्या देखते हैं.
2: देखिए सरकारी बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है क्योंकि सरकारी बैंक जो है उनका एक जो कस्टमर बेस है वो भी एक वाइड है और वहीं प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक पर्टिकुलर क्लास को जो है सर्व करते हैं तो यहाँ पर और उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है. और उसके अंदर मैं बार बार इसलिए ये कहता हूँ कि अब जैसे आप कह रहे हैं कि यूथ को अट्रैक्ट करना है 2 अक्टूबर से कर रहे हैं तो अब यूथ को अप्रोच करने के लिए वैसा ही माइंडसेट चाहिए. अगर आप उस माइंडसेट के साथ जाएंगे उस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे उस झील के साथ जाएंगे जो उनसे बात कर सकता है तभी आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो. उसके लिए वैसा आपका माइंडसेट चाहिए और वैसे ही आपके पास वर्क फोर्स भी चाहिए.
1: नंदन जी जो एक नए तरह के वर्क फोर्स और नए स्वरूप की बात की जा रही है तो आपको क्या लगता है क्या नए प्रोडक्ट्स बैंक लेकर के आ सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने एक लंबा दौर देखा है बैंकिंग व्यवस्था में बदलाव का. पहले बैंक सिर्फ कैश जमा करने और देने का काम करते थे फिर वहां पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की भी एंट्री होती है और अब उसका स्वरूप लगातार बढ़ता जा रहा है तो आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है क्या नए तरह के प्रोडक्ट किस तरह के प्रोडक्ट्स दिखाई दे सकते हैं जो लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो.
0: देखिए बैंकिंग प्रोडक्ट्स अगर इस पर आरबीआई देखे तो हमारे वो ट्रेडिशनल वो ही है, सेविंग है, करंट है या फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट. बट अभी जो यूथ जो अगेन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है यंग जनरेशन, क्योंकि डिपॉजिट में अगर हम 3-4% की बात करें या 6-7% की, तो वो फिर यंग जनरेशन रिस्क थोड़ा ज्यादा ले सकते, तो इसलिए मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट में जाते हैं. तो वहां पे

0: उनको अपना म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, और बैंक्स के कई बैंक्स ने टाइप भी किया हुआ है कि म्यूचुअल फंड हो गए आपके, यूनिट प्रोडक्ट जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस, जहाँ की थोड़ा सा रिस्क है, बट उसके साथ जो यंग जनरेशन है या जो नया कस्टमर हमारा जो बैंकिंग में आएगा, उनको थोड़ा सा मार्केट के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करने का, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट, तो बेसिकली न्यू प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, जैसे यूनिट लिंक इंश्योरेंस या FD के साथ है, या आप जैसे रेकरिंग डिपॉजिट की जगह आप सिप्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, हर महीने आप 1000 करते हैं, वो मार्केट के उतार चढ़ाव देखते रहे अल्टीमेटली। तो यही है कि अब जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, बैंकिंग कस्टमर भी यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि डिपॉजिट पे अब कस्टमर कम होते जा रहे हैं, बिकॉज लोग म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या यूनिट लिंक इंश्योरेंस या इन चीजों के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन हमें बनाने पड़ेंगे, कॉम्बो प्रोडक्ट जिसे कह सकते हैं, जैसे अब जनरल इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, PPF वगैरह, तो अब हर तरह का उसमें एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बनाना पड़ेगा। अब जो आज का जो बैंकर है वो खाली बैंकर नहीं है, अब कस्टमर के साथ वेल्थ क्रिएशन है कि अगर 1,00,000 रुपया देता है तो उसको कैसे डिवाइड करेगा, तो अब थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानर के रूप में बैंकर को बनाना पड़ेगा यंग जन पीपल को, क्योंकि जब जैसे जैसे एज यंग होते हैं तो लोग रिस्क है, उसके बाद फिर हमारे पास पेंशन प्लान है, तो एक बार जो कस्टमर अकाउंट खोलता है, यंग जनरेशन एजुकेशन लोन से लेकर सैलरी अकाउंट से धीरे धीरे फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, तो इन्हीं कॉम्बो प्रोडक्ट्स को ऐसा बनाना पड़ेगा जो अट्रैक्टिव हो, या जिनको उनको लगे कि ये उनके बैंक के साथ जुड़ा रहेगा तो आगे उसको। और बेसिकली अगेन पब्लिक सेक्टर बैंक नंबर ऑफ ब्रांचेस हमारे पास काफी हैं, हमारा रीच काफी है, तो इन्हीं को देखते हुए कि अगर ट्रस्ट है बैंक के ऊपर है और हमारा रीच है, तो मॉडर्न बैंकिंग का कि ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंस्टीट्यूशन बन सकता है, और यही हमारा 2017 का मुद्दा भी है कि हमें टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट बैंक बनाने।
1: और एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे ये भी चाहेंगे कि एक तरह से फाइनेंशियल हिस्ट्री भी एक यंग एज से देश के लोगों की तैयार होने जा रही है, तो उससे किस तरह के फायदे लोगों को मिले?
0: फायदे तो देखिए, जितना जल्दी अगर हम बैंकिंग से जुड़ते हैं, जितना जल्दी हम अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उतना ही फायदा होता है। तो इसीलिए मैडम ने बोला कि सीता मैम ने कि हम कॉलेजेस में जाएंगे, वहां पे बच्चों के हैबिट्स बनाएंगे, सेविंग्स वगैरह होगा, तो धीरे धीरे उनका बैंकिंग इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो इसी ये नए प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, प्लस डिजिटल है और थ्रू डाटा एनालिटिक्स हम जो क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग करते हैं, तो इन सबको इकट्ठा लेके चलेंगे तो आई थिंक हमारा डिपॉजिट भी बढ़ेंगे, और एक जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन और सभी के जितने सभी का खाता हो, जितने लोग बैंकिंग में आएंगे और उतने ही प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे।
1: श्री जी, आपसे एक सवाल का जल्दी से जवाब चाहेंगे कि अगर इस कॉन्फ्लुएंस का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा बताना हो, जो आम लोगों, युवाओं और किसानों के लिए सीधे फायदेमंद हो, तो वो क्या होगा?
2: वो ये है कि बैंकिंग को 2047 में किस रूप में हम देखना चाहते हैं, मतलब वो सभी जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे यूथ है, चाहे एग्रीकल्चर है, ट्रेडर है, MSME है, सबकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए और सबको सर्व करने वाला बैंक चाहिए। तो वो दोनों तरफ से है, मतलब वैसा ही आपको कस्टमर बेस चाहिए और वैसा ही ये चाहिए।
1: बिल्कुल, तो अब देखना होगा सरकारी बैंक या तमाम बैंकिंग व्यवस्था इन चीजों को किस तरह से अमलीजामा पहनाती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सार्वजनिक बैंकों का आधुनिकीकरण, युवा ऋण और डिजिटल विस्तार पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भसीन और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।
5: मीडियम वेव 374.5 मीटर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर, ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग किरवानी। इनके साथ तबले पर संगत की है शफाकत अहमद खान ने।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग किरवानी। इनके साथ तबले पर संगत की थी शफाकत अहमद खान ने। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। पेश है फरमाइशी फिल्म संगीत। कार्यक्रम है मन भावन। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के पहले गीत की फरमाइश हमें भेजी है गोटेगांव से योगेश कुमार चौरसिया, संगीता चौरसिया, दिव्यांश कुमार चौरसिया, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा, पिंडरई मंडला से कमला प्रसाद शर्मा, कृपाल पटेल, कबीर जैन, संजय जैन, सुमित कुमार जैन, मोहम्मद मराली और वरुण जैन, और महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया और केशव पटेल। इन सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए हेमंत कुमार की आवाज़ में प्यासा फिल्म का गीत। शब्द रचना साहिर लुधियानवी की है और संगीत दिया है सचिन देव बर्मन ने।
1: जाने वो कैसे लोग थे जिनके

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म कश्मीर की कली से। गीत लिखा है SH बिहारी ने, संगीत दिया है OP नैयर ने और आवाज मोहम्मद रफी की है। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है कालका से शुभचंद्र बजाज, चंद्रमोहन, इंद्रमोहन बजाज, बिट्टा बजाज, मोहाली पंजाब से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, पटियाला से बत्ता परिवार और मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश, खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप और बेबी आरजू, और गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज

0: प्रमोद, रोहित और मोहित, इन सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये नगमा।
1: ये चांद सा रोशन चेहरा।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है हम सब उस्ताद हैं। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है बिलहरी बड़खेरा से संतोष ठाकुर, काशी तिवारी, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल बढ़े, शेख मुनीर, ग्राम परुआ से रामकुमार लोधी, संजयपुरी, बेलड्री से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल, अर्जुन और धीरज, नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, गाजीपुर से ही अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और आरू साहू, जतुका किशनपुर से आलम दिलकर, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज, गणेशपुर से वकील राही, फिरोज आलम, नाज प्रवीण और अर्श बाबू, इन सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए ये गीत।

दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, पिपरिया से दुर्गाराम साहू, सागर से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक, तन्वी गौहर और जयपाल यादव, पन्ना से कौशल किशोर, संगीता, हर्षित,

एवं वैभव मिट्टू, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राशि पारस तपस्या, करिश्मा कामले और राखी, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी, सदर जबलपुर से लखन राही, लक्ष्मी राही, अंकिता राही, सिद्धार्थ राही और सृष्टि राही, कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली, इन सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत दिया है सचिन देव बर्मन ने और फिल्म का नाम है आराधना।

अगले गीत की फरमाइश हमें भेजी है ग्राम दरचुरा से ददवा साहू, भूरी साहू, रेखा, मोतीलाल साहू, बेमेत्रा से भरतलाल सिन्हा, लव कुमार, लक्की सिन्हा, बेमेत्रा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा, हेमलता सारथी, कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रजकांत सारथी, भाटापारा दतरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, मगर लोड छत्तीसगढ़ से पूनूराम साहू, राज तेजेश्वरी राहू, राजश्री राजवीर और इनके परिवार के सदस्य, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभैया, राधिका गजभैया, बेबी अनिष्का और तन्मय, और रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक। इन सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में गुलजार का लिखा गीत। संगीत दिया है आर डी बर्मन ने और फिल्म का नाम है नमकीन।

कार्यक्रम के अंतिम गीत की फरमाइश हमें भेजी है। रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश और ऋषि, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, बर्गीनगर जबलपुर से रविंद्र गत्रे, सुभाष गत्रे, दिगंबर गत्रे, राजेश गत्रे, शिवम, शुभांग और सृष्टि, और नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले। इन सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का गीत आशा भोंसले की आवाज़ में।

0: इसके साथ ही फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजे हैं। समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का, 3rd एंड 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुम्मीडी पुंडी गुदूर की 3री और 4थी लाइन, कटक पारादेव की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की

0: अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से दो वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के चौथे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों की उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर में अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमरीका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। नीदरलैंड्स के अम्स्टेल्फेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम आज 206 रन पर आउट हो गई। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट छटके थे। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The Union Cabinet today approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the Union Cabinet, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said, with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
2: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक, ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said the government's foremost priority is to provide